सुप्रभात, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 12, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:49 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, लीजिए सुनिए चिंतन।
1: एक बेर सुमंतक नामक क्यों श्रेष्ठी भगवान बुद्ध सँ प्रश्न कलकनि, प्रभु मनुष्य सुखी कोना रहि सकै छै? भगवान बुद्ध उत्तर देलखिन, सुखी रहब बड़ सोझ अछि, बड़ सरल अछि, कामना के त्याग कऽ दिय अहाँ सुखी रहब। सुमंतक पुछलकनि, प्रभु कामना के त्याग कऽ देने तऽ कर्मों के त्याग भऽ जतैक, आ जँ कर्मे नहि कयल जतैक तऽ संसार यात्रा कोना पूर्ण हेतैक? भगवान बुद्ध ओकर शंकाक समाधान करैत कहलखिन, कामनाक त्यागक अर्थ कर्मक त्याग नहि थिक,

0: कामनाक त्याग भेल महत्वाकांक्षा लुलुपता आ संग्रह करक प्रवृत्तिक त्याग। कर्म सँ विरति कोना संभव अछि? संसारी जीवधारी के कर्म तो करहि पड़तैक, किंतु ओ कर्म कामना रहित हेबाक चाही। जतबा सँ संसार यात्रा सुगमता पूर्वक चलैत रहे ततबाक लेल प्रयास करक चाही, ताहि सँ अधिक लेल नहि। भगवान बुद्ध कोनो नव गप नहीं कहलखिन। श्रीमद् भगवत गीता निष्काम कर्मक आदेश दे छे। कर्म आ फल प्राप्तिक सोझ संबंध छे। निष्काम कर्म के निहार कर्म फल सँ सर्वथा निर्लिप्त रहे छे आ तैं सुखी सेहो रहे छे। जखने कर्म संगे कामना के योग भऽ जाय छे तखने दुखक आरंभ सेहो भऽ जाय छे। सुखक आधार संतोष के मानल गेल छे। संतोषी व्यक्ति सुखी होइ छे। संतोष रहित व्यक्ति कतबो संपत्तिक स्वामी क्याक न भ जाओ, सुख ओकरा लेल आकाश कुसुम सदृश मनल रहै छे। तैं कहल गेलैय, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। महात्मा कबीर जखन कहै छथि, साईं उतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, तो ओ प्रकारांतरे श्रीमद् भगवत गीता आ भगवान तथागतिक उक्ति के दोहरबै छथि। महान दार्शनिक गेराल्ट कहने छथि, संतोष निर्धन व्यक्ति के निजी बैंक थिकैक, जाहि में प्रचुर धन सतत भरल रहै छैक। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अहुना जब विचार कयल जाय जे संतोषी निर्धन आ असंतुष्ट धनवान में वास्तविक धनवान के, तो उत्तर हैत संतोषी निर्धन। कोना? धनवान के जतेक होइ छैक ओकर लालसा ओहिना बढ़ले जाय छैक। ओ स्वयं के सतत अभावग्रस्त पबै अछि। संपन्नताक मध्य ओ विपन्नता सँ आक्रांत रहै अछि। दोसर दिस निर्धन व्यक्ति के धनक कोनो लालसे नहि होइ छैक। ओकरा जतबा छैक ताहि सँ तृप्ति छैक। एहि प्रसंग में महात्मा सुकरातक उक्ति विचारणीय अछि। एक बेर महात्मा सुकरात अपना शिष्य लोकनि सँ कहने रहथि, संतोष ईश्वर प्रदत्त संपदा थिक आ तृष्णा अज्ञानक असुर द्वारा थोपल गेल निर्धनता।
1: श्रोता सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। समय हो चला है किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी बातों का। जी हाँ, कृषि चर्चा।
1: आजुक कृषि चर्चा का संग हम आशुतोष कुमार झा। किसान भाई लोकन, आजुक दिन कृषि चर्चा के विषय है धानक उन्नत खेती के संबंध में। अपना सबक देश एक कृषि प्रधान देश है और धान देशक सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसिल में एक आधुनिक कृषि तकनीक सब, उन्नत किस्म, संतुलित पोषण, वैज्ञानिक पटौनी और समुचित फसिल प्रबंधन का अपनिया धानक खेती के बेसी लाभदायक बनाओल जा सकित है। आजुक आवश्यकता ऐ बातक है जे किसान पारंपरिक खेती के संग ही

0: उन्नत कृषि तकनीक के अपनिया कम लागत में बेसी उत्पाद प्राप्त करत। खेतक समतलीकरण और उचित जल निकासी के व्यवस्था से उत्पाद बढ़ेबा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करत। किसान भाई लोकन उन्नत खेती के शुरुआत नीक गुणवत्ता वाला प्रमाणित बीया के चयन से होत। किसान भाई अपन क्षेत्रक जलवायु और मौसम के अनुसारे उन्नत आ रोग रोधी किस्म के चयन करत। स्वस्थ और उपचारित बीया के प्रयोग से अंकुरण नीक होत और फसिल रोग सबसे सुरक्षित रहत। नर्सरी तैयार करत समय बीज उपचार पर अवश्य ध्यान देवक चाहिए, जाहि से प्रारंभिक अवस्था में रोग सभक प्रकोप कम भ सके। धानक रोपाई सही समय पर केनाय अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतया 20-25 दिनक स्वस्थ पौध के रोपाई करवा से नीक परिणाम प्राप्त होत। पौध के बीच उचित दूरी रखवा से हुनका पर्याप्त रौदा हवा और पोषक तत्व भेटत है, जाहि से बेसी कला निकलत और उत्पाद बढ़त। किसान भाई लोकन उर्वरक सभक संतुलित उपयोग धानक उन्नत खेती के महत्वपूर्ण आधार है। माटिक जांच करा ओकरे अनुसारे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास आ सूक्ष्म पोषक तत्व सभक प्रयोग करबाक चाहिए। रासायनिक उर्वरक संग ही संग गोबर के सरलाह खाद कंपोस्ट और हरियर खाद के उपयोग कला से माटिक उर्वरा शक्ति बनल रहत और संगे संग उत्पादन में वृद्धि सेहो होइत अछि। धानक खेती में जल प्रबंधन बेसी महत्वपूर्ण अछि। लगातार खेत में बेसी पानि भरि कऽ रखनाय आवश्यक नहि होइत अछि। आवश्यकता के अनुसारे पटौनी केनाय संगहि खेत में जल स्तर के उचित प्रबंधन करवा से पानिक बचत होइत अछि और पौध के जड़ के विकास सेहो नीक होइत अछि। किसान भाई लोकनि जल संरक्षण के आधुनिक तकनीक सबके अपनिया खेत के लागत कम कैल जा सकत। किसान भाई लोकनि खर पतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निकौनी कमौनी केनाय बहुत बेसी आवश्यक है। आवश्यकता पड़वा पर अनुशंसित खर पतवार नाशी के उपयोग कृषि विशेषज्ञ के सलाह के अनुसारे करवाक चाहिए। खर पतवार सब पर समय रहते नियंत्रण कला से पोषक तत्व सबक प्रतिस्पर्धा कम होइत अछि और उत्पादन सेहो बढ़त अछि। धानक फसिल में तना छेदक पात लपेटक भूरा फुदका विभिन्न प्रकारक रोग के प्रकोप हेबाक संभावना रहत अछि। ताहि कारणे नियमित रूप से खेत के निरीक्षण करबाक एटा चाही। फसिल पकवा पर समय पर कटाई केनाय सेहो ओतबे आवश्यक अछि। कटाई के बाद धान के नीक तरहें सुखा कऽ सुरक्षित स्थान पर भंडारित कोलबाक चाहिए। यदि किसान भाई वैज्ञानिक खेती उन्नत बीया संतुलित पोषण उचित पानिक प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीक सबके अपनियाबत तो कम लागत में बेसी उत्पाद प्राप्त कऽ आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सकें। एक संग आजुक कृषि चर्चा के तह विराम दैत आशुतोष कुमार झा के विदा देल जाओ। नमस्कार।
1: किसान भाई सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज विषय था धान की उन्नत खेती। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे आशुतोष कुमार झा। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय सुबह के 6 होने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आप सुनेंगे।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त

0: पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा।
2: आशय के सूजन के प्रमुख कारण है गर्भावस्था या पुरैन यानी प्लेसेंटा के टुकड़ों का रह जाना, या पुरैन के पॉलिप या गर्भाशय के पॉलिप का हो जाना, या गर्भाशय में पस, खून, पानी का जम जाना, या ट्यूमर यानी फाइब्रॉइड या कैंसर का होना। फाइब्रॉइड उन ट्यूमर को कहते हैं जिनमें कैंसर नहीं होता है। गर्भावस्था को छोड़कर गर्भाशय के सूजन का सबसे प्रमुख कारण यही है। इसमें गर्भाशय में मांस और फाइब्रस टिश्यू दोनों बढ़ जाता है और ये गर्भाशय के मांस में ही होता है। आमतौर से 5 से 30 की संख्या में पाए जाते हैं और एक फाइब्रॉइड यानी मायोमा को छोटे आकार

इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं। समय हो चला है भक्ति संगीत के हमारे इस कार्यक्रम वंदना का। आइए इस कार्यक्रम का आरंभ समूह स्वर में गाए इस देश वंदना से।

स्वर्ग से प्यारी मेरी माँ। समूह स्वर में आप सुन रहे थे ये देश वंदना। भक्ति संगीत का हमारा ये कार्य

कहते हैं जिस तरह सूरज की किरणें अंधकार और कोहरे को दूर कर देती है, चारों तरफ उजाला फैला देती है, उसी तरह हमारे मन में विकार रूपी अंधकार, भय चिंता रूपी कोहरा, ये सब स्वतः ही दूर हो जाते हैं जब हम अपने आराध्य के पावन नाम का जाप करते हैं। कहते हैं जिनके नाम लेने से ही हमारे रोग शोक और कष्टों का नाश हो जाए, ऐसे कृपालु भगवान का नाम कभी निष्फल हो सकता है क्या?

कहते हैं जो सब में है, सब में इस सांस रूप में है, जीवन रूप में है, वही तो शिव है। शिव अर्थात कल्याण। भय, रोग, शोक और चिंता से मुक्ति का ही तो दूसरा नाम शिव है। ये शिव नाम की कृपा सब पर बनी रहे। भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा।

भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे वंदना। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव

ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में रामचरित मानस गान। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, जानकारी प्राप्त कीजिए आज हमारे इस केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। सुबह 10 फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम होगा। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 से 11 के बीच। दोपहर 12:30 समय होगा महिलाओं के लिए हमारे कार्यक्रम नारी संसार का।

दोपहर 1:10 पर श्रोता सुनेंगे देशभक्ति गीत। अपनी ही चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद। आज आप सुनेंगे दोपहर 1:15 से।

0: श्रोताओं, आज की हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा तरुण कुसुम। आज शाम 6:10 पर आप सुनेंगे हफ्तावार जायजा। महाकवि की रचनाएं विद्यापति गीत आज आप सुनेंगे शाम 6:15 से। गाम घर कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:30 और खेती गृहस्थी किसान भाई सुनेंगे अपना ये कार्यक्रम शाम 7 बजे से। शाम 7:52 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। साहित्य के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 8:15 ये समय होगा हमारे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का। अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आज आप सुनेंगे रात 10 बजे से। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना, रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हां श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप अपनी रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं आज ही यानी शुक्रवार 3 जुलाई 2026 दोपहर 3 बजे से 4:30 के बीच। इस समय सुबह के 6:55 होने ही वाले हैं। अब संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित

0: स्वस्य आधारस्तम्भेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां सम्बद्ध हितानाञ्च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इण्डो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुं आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एस पी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला 20-20 विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजक और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना

0: और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार
1: मिथिला।
0: नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छी मणिकांत झा,
1: साथी में हूँ मनोज। आप तमाम श्रोता को मनोज का प्यार भरा नमस्कार। साथी मणिकांत जी आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार मनोज जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब करी छी सुविचार सा।
1: जरूर, एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती है। ये विचार हैं गौतम बुद्ध के।
0: और जहन सुविचार सुन ले छी तकरा बाद उनटोबे छी इतिहासक पन्ना। इतिहासक पन्ना में अजुका तिथि अर्थात

0: था 3 जुलाई, क्या विशेष रूप से जानल जाइए ते पर एक नज़र।
1: आज ही के दिन 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। 2004 में रूस की मैरिया शारापोवा महिला विंबलडन चैंपियन बनी थी। 2005 में महेश भूपति और मैरी प्रियवर्स ने विंबलडन टेनिस के मिश्रित युगल खिताब जीते थे। 2006 में कैरेबियाई द्वीप पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की थी। और आज के दिन जन्मे महान व्यक्ति, 1969 में दिगेंद्र सिंह महावीर चक्र से सम्मानित वीर भारतीय सैनिक का जन्म हुआ था। 1979 में आरती सिंह राव भारतीय निशानेबाज हैं का जन्म हुआ था। 1897 में हंस मेहता भारत के प्रसिद्ध समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविदी का जन्म हुआ था। और आज हम लोग मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस।
0: तो इच्छल आजुक इतिहास, और आजुक इतिहास में जे एकटा मुख्य दिवस के चर्चा कलूँ मनोज जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ई एहन दिवस हमरा सबके मनबे पड़े, वो तो स्वतः संज्ञान में हेबाक चाहिए सब गोटा के, जे प्लास्टिक जे से सबक लेल बहुत हानिकारक है, और खास कर प्लास्टिक के जे बैग है वो, किया तो पर्यावरण के प्रदूषण के दिस अगर ध्यान दी तो प्लास्टिक के जे अपशिष्ट है से बहुत बेसी हानि पहुँचबे पर्यावरण के। तो हमरा सबके एक दिवस के अवसर पर संकल्प लेबाक चाहिए जे प्लास्टिक मुक्त हमरा लोकन भ जाए, प्लास्टिक बैग कम से कम कैरी बैग जे करिका उजरा ललका पन्नी में तरकारी किनै छी, तीमन किनै छी, आकि कोनो चीज बाजार से अनै छी, ओहि से मुक्त भ जाए और घर से अपन झोड़ा लक विदा होए, झोड़ा लक जाए और बाजार से सामग्री कीन के आनी, कम से कम अजुका दिन तो संकल्प लय सकै छी कि न।
1: सही बात है कि जो जिस चीज़ से हमें हानि पहुंचाता है वो चीज़ को हम लोग दूर करें, और ख़ास करके दिवस है तो कम से कम आज के दिन भी उस चीज़ पर अमल करना चाहिए। हम
0: कार्यक्रम में आगा बढ़े छी और सुने छी मैथिली सुगम संगीत।

0: उम्मीद करते हैं कि ये गाना सभी श्रोताओं को जरूर अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ चलते हैं जहां हम सबों को इंतजार रहता है। जी हाँ, अपने आस पड़ोस की गतिविधियां संस्कृति पर डालते हैं नज़र, यानी कि हाल चाल लेकर के उपस्थित हैं मणिकांत जी।
1: नमस्कार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलन है जो भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री विधायक आ शीर्ष लोक नीचा स्तर तक के अधिकारी के विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करत। ओ निर्देश दिलन है कि भ्रष्टाचारी के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई आ आर्थिक अपराध इकाई सीधे कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री कहलन कि भ्रष्टाचारी के चिन्हित कऽ हुनक जब्त कयल गेल परिसर में विद्यालय खोलल जायत। ओ कहलन जे ट्रिपल टी ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी आ ट्रस्ट से बिहार भ्रष्टाचार मुक्त बनत, एहिसँ सुशासन के सेहो मजबूती भेटतै। मुख्यमंत्री काल्हि ज्ञान भवन में बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस एवं बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह के शुभारंभ कऽ रहल छलाह। संगे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के नव लोकक अनावरण लोगों के अनावरण सेहो कऽ रहल छलाह। राज्य सरकार देशी विदेशी पर्यटक लोकनिक भ्रमण के दौरान घरेलू माहौल देवाक योजना पर काज शुरू कऽ दलक है। एकरा लेल पहिल बेर होम स्टे योजना लागू कयल जा रहल है। एहिसँ स्थानीय स्तर पर रोजगार सेहो बढ़ि जायत। राज्य मंत्रिपरिषद के मंजूरी के बाद पर्यटन विभाग विस्तृत कार्य योजना बनाबऽ में जुटि गेल है। बिहार के सब जिला अस्पताल के 15 अगस्त से पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करवाक तैयारी शुरू भ गेल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घोषणा

0: आ स्वास्थ्य मंत्री निशांत के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग राज्य के सब 36 जिला अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेबाक प्रक्रिया तेज कर देलक है। एकरा अंतर्गत आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक के तैनाती, आधुनिक जांच उपकरण के उपलब्धता आ आन जरूरी संसाधन के व्यवस्था सुनिश्चित कयल जा रहा है। आइ धरि ऑनलाइन आवेदन द कऽ मधुबनी और दरभंगा जिला के कुसियार उत्पादक किसान सकड़ी आ दरभंगा रैयाम सकड़ी सहकारी चीनी मिल समिति के प्राथमिक सदस्य बनि सकै छथि। एकरा लेल काल्हि मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सँ ऑनलाइन वेबसाइट वेब पोर्टल पर शुभारंभ कयल गेल। सहकारिता विभाग द्वारा विकसित बनायल गेल एहि वेब पोर्टल पर जाकर किसान ऑनलाइन आवेदन कऽ सकै छथि। सदस्य बनवला किसान के गन्ना उत्पादन के लेल आवश्यक सामान के संग तकनीकी मार्गदर्शन, माइट परीक्षण आ कृषि एवं गन्ना विकास सँ संबंधित सरकारी योजना के लाभ भेट सकत। बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सँ लऽ कऽ मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक में 846 फार्मासिस्ट के पदस्थापना कयल गेल। मौसम पूर्वानुमान में आइ कहल गेल जे दरभंगा लग पास के आसमान में बादल छायल रहत, साँझ में वर्षा के संभावना सेहो बनि रहल है। आजुका अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहबाक संभावना है। हालांकि एखन भोरे भोर करगर रौद उगल है। पीएम श्री प्लस टू उच्च विद्यालय पर्री के प्राचार्य के सभाकक्ष में स्थानीय सांसद सह लोकसभा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के मौजूदगी डॉक्टर में विद्यालय के प्रबंध समिति के सदस्य सह बिरोल वीडियो अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैसार आयोजित भेल। बैसार में डॉक्टर ठाकुर के संग डीओ बीओ बिहार राज्य शिक्षा आधारभूत संरचना निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य अधिकारी, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि आ शिक्षाविद के संग नवहर संख्या में बुद्धिजीवी शिक्षाविद एवं छात्र छात्रा अभिभावक लोकन उपस्थित छलाह। दशक से बेसी से बंद पड़ल रैयाम चीनी मिल के फिर से शुरू करबाक कवायद तेज भ गेल। एकरा लेल डीएम कौशल कुमारक अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमिटी के गठन कयल गेल। एहि कमिटी में केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा के सेहो सदस्य के रूप में नामित कयल गेलन है। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।
0: हालचाल में पुनः अपने स्वागत है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करवाक, अवैध अतिक्रमण हटेबाक, अनधिकृत पार्किंग के प्रभावी नियंत्रण स्थापित करवा के तथा हाईवे पेट्रोलिंग व्यवस्था के सुदृढ़ बनेबाक उद्देश्य से दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं SSP जगन्नाथ रेड्डी के संयुक्त अध्यक्षता में काल्हि बैसार कयल गेल। एहि में जिलाधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनार एवं सड़क पर कयल गेल अवैध अतिक्रमण तथा अनधिकृत पार्किंग के ततेक तत्काल हटेबाक निर्देश देलनि। भाजपा जिला दरभंगा पश्चिमी के दिस से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वां स्मरण पक्ष के अवसर पर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन कयल जायत। ई कार्यक्रम आई दुपहरिया में 2 से जिला कार्यालय पर हैत। कार्यक्रमक जानकारी दैत भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी कहलन जे एहि सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कोयला एवं खान मंत्रालय सतीश चंद्र दुबे उपस्थित रहता। ए अवसर पर सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, अशोक यादव, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता सहित विधायक एवं विधान परिषद के अनेक सदस्य उपस्थित रहता। कुशेश्वर स्थान के विधायक अतिरेक कुमार काल्हि कुशेश्वर स्थान दोनों प्रखंड में अलग अलग शिविर में 54 दिव्यांगजन

0: के बीच बैटरी चालित ट्राई साइकिल के वितरण को हरी झंडा देखा कर उनका रवाना कलन। दरभंगा समाहरणालय सभागार में कल बीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ जिलाधिकारी कौशल कुमार, सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, डीडीसी स्वप्निल एवं मुखिया संघ के अध्यक्ष राजीव कुमार झा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचयात्मक मिलन समारोह विश्वविद्यालय के नरगोना परिसर स्थित जुबली हॉल में आयोजित कयल गेल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी छलाह। एहि अवसर पर शिक्षक संघ दिससँ कुलपति के अभिनंदन कयल गेल। उम्हर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी के अध्यक्षता में विद्वत परिषद के बैसार हाइब्रिड मोड में आयोजित कयल गेल। कुलपति के आवासीय सभा कक्ष में आयोजित एहि बैसार में सर्वसम्मति से कैटा महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल। बैसार में विद्युत परिषद के गत 24 जून के संपन्न बैसार के निर्णय के संपुष्टि सेहो कयल गेल। एहि संग आजुक हालचाल संपन्न भेल।
1: और डालते हैं कुछ लोकल अपडेट पे नजर। बात करें अगर विमान की तो 9:30 पे हैं मुंबई के लिए, 11:30 पे हैं दिल्ली के लिए, 12:25 पे कोलकाता के लिए, 12:50 पे दिल्ली के लिए, 1:35 पे मुंबई के लिए, 3:00 हैदराबाद के लिए, 4:35 पे दिल्ली के लिए। अगर रेल की बात अगर करें तो 8:15 पे हैं नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट। दोपहर 12:33 पे हैं पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस। आज शाम 7:00 नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। बिजली पानी के लिए अगर नगर निगम में पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर के निगम में नियंत्रण कक्ष में फ़ोन कर सकते हैं, जिसका नंबर है 62027774 पे शिकायत कर सकते हैं। बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के नंबर हैं, शहर के नंबर इस प्रकार हैं 77 63 81 87 77, ग्रामीण इलाकों के लिए हैं 92 64 45 64 12 पर, और बेनीपुर के लिए है 76 33 99 78 31 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: तो अब हम चाहब एक बेर अहाँ मौसम पर में सेहो नजर घुमाबी।
1: जरूर। पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 1 से 5 जुलाई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अवधि के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक, वज्रपात तथा तेज हवा चलने की संभावनाएं हैं। विशेष रूप से 1 से 3 जून के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में मध्य वर्षा हो सकती है। 1-2 स्थान पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। वर्षा की इस गतिविधियों के चलते तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आने का अनुमान है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 31 से 33 सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि बेगूसराय जिले में अधिकतम तापमान अपेक्षाकृत अधिक होकर के 35 से 37 तक पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान 22 से 26 के बीच रहने का अनुमान है। सुबह में सापेक्ष आर्द्रता 80 से 85% तथा दोपहर की सापेक्ष आर्द्रता 35 से 40% के आसपास रहने की संभावनाएं हैं। पूर्वानुमान के अवधि में हवा मुख्यतः पूर्वा दिशा से 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावनाएं हैं।
0: तो इछल मौसम संबंधी जानकारी आ कार्यक्रम में आगा बढ़ी तो बिना कोनो लाई लपटाई के अगर गीत दिस बढ़ी तो नीक लागत।
1: हाँ,
0: गीत में एकटा अद्भुत आकर्षण है जे केहनो लोक के अपना दिस अटका लिए तो वो लोक हंसत हुए आ कि वो लोक कनैत हुए, वो लोक प्रसन्न मुद्रा में हुए कि अवसाद में हुए, लेकिन गीत जहन बजै छै, संगीत जहन बजै छै तो लोक ओहि दिस आकर्षित भेटा जाइए। तो से एहन आकर्षण के केंद्र के हमरा लोग

0: मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, बगावत की है तुम्हारे लिए। तो ये सुंदर सनक फिल्म संगीत एखन हमरा लोग सुन रहा छो और कार्यक्रम में आगा बढ़ी और चर्चा करी अपना देश पर। अपन देश जे भारत देश है से आदिकाल से एक अलग पहचान संपूर्ण देश दुनिया में बनेने है और एखन जे विकसित भारत है विकास के पथ पर चल देने है। वो भारत जो हमारे आधुनिक भारत विकास के दिस चल रहा है ओकर तब बातें कुछ अलग छे। सब दिशा में अहाँ के लागत जे विकास के जे गति छे से बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं भारत विश्व के सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों में से एक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ था, लेकिन आज भारत वैज्ञानिक प्रौद्योगिक शिक्षा कृषि उद्योग और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। यही कारण है कि आधुनिक भारत विकास की पट्टी पर तेजी से आगे बढ़ रही है। देखा जाए तो सबसे पहले यदि हम आधारभूत संरचना की बात करें तो देश में सड़क पुल रेलवे लाइन मेट्रो रेल और हवाई अड्डा का तेजी से विकास हुआ है। गांव को शहर से जोड़ने के लिए नई सड़क बनाई जा रही है, इससे व्यापार परिवहन और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यदि बात करें डिजिटल की तो डिजिटल ने क्रांति ला दिया है, भारत के विकास को नई गति की दी है। आज मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग शिक्षा स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को तकनीकी रूप सशक्त बनाया है। ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल लेन देन ने लोगों को का जीवन आसान कर दिया है।
0: बहुत रास आमूल चूल परिवर्तन जैसे से भ चुकल से आधुनिक भारत में और दिन प्रतिदिन नव नव अन्वेषण नव नव क्रियान्वयन से चल रहा है और नव नव तकनीक के उपयोग कऽ हम सब आगा बढ़ रहल छी। तो ई आधुनिक भारत जे विकास के पथ पर चढ़ गेल है ओ शीघ्र विकसित देश के रूप में सामने में आबि जात, ई हमरा लोकनिक अभिलाष है आ उम्मीद है जे ई अभिलाष के पूर्ति सेहो शीघ्र हैत कि नहीं।
1: हाँ।
0: आई शुक्र है और मनोज जी शुक्र दिन का हमरा लोकन गांधी कथा के अंक सेहो सुनी छी तो हमर श्रोता के भी बात के इंतजार रही छन। तो बिना कोनो विलंब केने अभी आजुक एहि अंक के सुनी गांधी कथा।

गांधी कथा में प्रस्तुत है गांधी जी के संस्मरण। सन 1929 का वर्ष समाप्त होने और 1930 का वर्ष प्रारंभ होने पर कांग्रेस ने भारतवर्ष की आज़ादी का झंडा फहरा दिया और गांधी जी को अपना अगुआ बनाकर पूर्ण स्वाधीनता तथा अंग्रेजी हुकूमत से संबंध विच्छेद की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया और नमक कानून उल्लंघन के साथ आंदोलन की शुरुआत कर दी। लंदन में 12 नवंबर 1930 को पहली गोल मेज परिषद की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस पर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू सहित 20 से अधिक अन्य कांग्रेसी नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया। इस पर गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से

झंडा फहरा दिया और गांधी जी को अपना अगुआ बनाकर पूर्ण स्वाधीनता तथा अंग्रेजी हुकूमत से संबंध विच्छेद की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया और नमक कानून उल्लंघन के साथ आंदोलन की शुरुआत कर दी। लंदन में 12 नवंबर 1930 को पहली गोलमेज परिषद की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस पर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू सहित 20 से अधिक अन्य कांग्रेसी नेताओं को बिना शर्त रिहा कर दिया। इस पर गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से भेंट करने के लिए पत्र लिखा। इरविन और गांधी जी की पहली मुलाकात 17 फरवरी, दूसरी मुलाकात 18 फरवरी और तीसरी मुलाकात 19 फरवरी को ही। 1 मार्च को इरविन और गांधी जी की फिर मुलाकात हुई जो काफी देर तक चली और आपसी वाद विवाद के बाद 5 मार्च की सुबह गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद सरकार ने उसे भंग कर दिया। इस बार गांधी जी को नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन से फिर चर्चाएं करनी पड़ी। मामला तय होने के बाद दूसरी गोलमेज परिषद हुई जिसमें कराची के कांग्रेस अधिवेशन ने अपने प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी का चयन किया। गांधी जी 12 सितंबर को लंदन पहुंचे और 5 दिसंबर तक वहीं रहे। वे दिन के 24 घंटों में से 21 घंटे सरकारी तथा गैर सरकारी गतिविधियों में व्यस्त रहते थे लेकिन गोलमेज परिषद असफल रही। परिषद ने एक अल्पसंख्यक समिति नियुक्त की जिसमें 6 अंग्रेज, 13 मुसलमान, 10 हिंदू, 2 मजदूर प्रतिनिधि, 2 सिख, 2 अछूत, 2 भारतीय ईसाई, 2 भारत प्रवासी अंग्रेज, 1 पारसी, 1 एंग्लो इंडियन और 4 महिलाएं रखी गई। महिलाओं को छोड़कर सभी ने पृथक निर्वाचन की मांग की लेकिन गांधी जी ने पृथक निर्वाचन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वाधीन भारत में सभी भारतीय भारतीयों को भारतीय की तरह मत देंगे। भारत को 1930-31 में जो आंशिक स्वाधीनता प्राप्त हुई वह गांधी जी, इरविन और ब्रिटिश मजदूर सरकार के प्रयत्न का ही परिणाम थी। लेकिन इरविन जा चुके थे और अक्टूबर 1931 में रैमजे मैकडोनाल्ड की मजदूर सरकार के स्थान पर मैकडोनाल्ड के ही नेतृत्व में अनुदार दल की प्रधानता वाला दूसरा मंत्रिमंडल बन गया था। सर सैमुअल होड़ को भारत का राज्य सचिव घोषित किया गया। यह नई ब्रिटिश सरकार भारत की आजादी की भावना पर आघात करने लगी। फलस्वरूप 28 दिसंबर को गांधी जी बंबई पहुंचे और दूसरे ही दिन भेंट करने की इच्छा से वायसराय को टेलीग्राम भेजा। जब वायसराय मिलने को तैयार नहीं हुए तो गांधी जी ने उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के विषय में सूचित किया। तत्पश्चात 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया और सरकार ने सारी कांग्रेसी संस्थाएं बंद करके सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। जेल में गांधी जी अपने कपड़े स्वयं धोते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे और खूब किताबें पढ़ते थे। जेल में ही गांधी जी ने समाचार पत्र में पढ़ा कि भारत के लिए प्रस्तावित नए ब्रिटिश संविधान में न केवल पहले की भांति हिंदुओं तथा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा बल्कि नीची जाति के हिंदुओं के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा। गांधी जी उन लोगों के लिए अलग से मतदाता सूची के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्होंने 11 मार्च 1932 को भारत सचिव सैमुअल होड़ को एक पत्र में लिखा कि हरिजनों के लिए अलग मतदाता सूची के विरोध में वे आमरण अनशन करेंगे। 17 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री

रैमजे मैकडोनल्ड ने पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी। दूसरे ही दिन गांधी जी ने रैमजे मैकडोनल्ड को लिखा, मैं आपके इस निर्णय का विरोध करता हूं। इसके लिए मैं सोडा और नमक के साथ या खाली पानी के सिवा किसी भी प्रकार का भोजन न लेकर आमरण उपवास की घोषणा करता हूं। 20 दिसंबर 1932 को गांधी जी ने अंतिम बार भोजन किया, जिसमें उन्होंने नींबू का रस, शहद और गर्म पानी लिया। करोड़ों भारतवासियों ने प्रार्थनाएं की और 24 घंटे का उपवास रखा। 20 सितंबर को हिंदू नेतागण राजगोपालाचारी, सप्रू, घनश्याम दास बिरला, राजेंद्र प्रसाद आदि बंबई के बिरला भवन में एकत्र हुए। उस समय हरिजनों के प्रतिनिधि डॉक्टर सोलंकी तथा डॉक्टर अंबेडकर थे। पहले तो गांधी जी हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थानों के भी विरोधी थे, परंतु बाद में वे सहमत हो गए थे। अंबेडकर ने इसका विरोध किया। इस आपत्ति से निपटने के लिए सप्रू ने 20 सितंबर के सम्मेलन में एक योजना पेश की, जिसे अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया।

गांधी कथा एखन हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ। आओर एकटा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना रेडियोके बाद श्रोताके साथ। जी हाँ, एहि कार्यक्रमके 12वां अंक रवि दिन 5 जुलाई 2026 के दुपहरिया 2:30 प्रसारित होयत। एहि कार्यक्रमके लेल आइ अपने रेडियोसँ जुड़ि कऽ अनुभव हमरा साझा करी आ रेडियो कखन अहाँके जीवनमे आयल, कखन एकटा रेडियो श्रोता बनि गेलहुँ, जखन अहाँ रेडियो सुनै छी तऽ अहाँके केहन लगैए, एहि सब बातके लेल आइ रिकॉर्ड करा सकै छी अपन फोन कॉल्स 3 जुलाई अर्थात आइए दुपहरिया 3 बजेसँ 4:30 बजे के बीच। हमर फोन नम्बर तऽ अहाँके बुझले अइ, तकरा बादो एक बेर दोहरबै छी, 9430029353 9400029353। एहि फोनपर फोन करू।

0: अपन बात हमरा सबके बीच में साझी करू। कार्यक्रम संबंधी सूचना संपन्न भेल। देखू श्रोतागण, धियापुता के विकास जे होइ छै, पढ़ाई लिखाई जे होइ छै, तो ओकर पहिल पाठशाला घर होइ छै। घर में माँ पहिल गुरु होइ छथिन, पहिल शिक्षिका होइ छथिन। और किताब के पढ़ के दिस अगर बच्चा उन्मुख भऽ गेल तो ओकरा में बुझू जे विकास के गति तेज भऽ जाइ छै कि नहीं।
1: हाँ हाँ, और कहा जाता है कि पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। तो इसे हम अच्छे मित्र होते हैं तो उसके लिए आदत हमें डालना चाहिए। ज्ञान बढ़ाती है, बल्कि व्यक्ति के विचार और व्यवहार को भी व्यक्तित्व का बढ़ाने में काम आता है।
0: तो पुस्तक के दिस आदत लगेनाए, ओकर लत लगेनाए, ओकर अभ्यास केनाए धियापुता के जे छै से आवश्यक छै। और से धियापुता में की होइ छै तऽ नकल करय के आदत बहुत जबरदस्त होइ छै। अगर अहाँ घर में किताब लऽ कऽ बैसबै और किताब पढ़बै तऽ अहाँ के बच्चा सेहो अहाँ के देखा देखी किताब पढ़त। आ अपने अगर अहाँ मोबाइल देखैत रहबै आ बच्चा के कहबै जे किताब पढ़ किताब पढ़, तो जे बाल बोध है, जे अबोध है, ओ अहाँ के बातक मोजर नहीं करत। ओकरा लगतै जे नहि, हमरो मोबाइले देखनाइ जरूरी है, हमरो किताब पढ़ से बढ़िया मोबाइल देखना है। तैं धियापुता के अभ्यास लगेबा के लेल, ओहि संगे ओकरा पाइट लगेबा के लेल अपनो जे छै से ओहि दिस उन्मुख रह पड़त। और किताब तो जना मनोज जी कहला जे मनुष्य के सबसे नमहर संगी है, तो ओहि संगी के किया छोड़बै। किताब पढ़ित रही, किताब उनटबैत रही, धियापुता के सेहो किताब दिस आकर्षित करबैत रही। मनोज जी, गपशप में जे छै से कार्यक्रम के समय लग जा रहल है, आ अपना सबके एकटा गीत सेहो श्रोता तक पहुँचेनाइ अइ, तऽ आप बिना विलम्ब के सुंदर सनक एहि फिल्म संगीत के आनंद लऽ लेल जाए कि नहीं।
1: जरूर।

0: तेरे कारण तेरे कारण मेरे साजन। बहुत सुंदर ई फिल्म संगीत एखन हमरा लोकन सुन रहल छलौं। आब आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रमक समय सेहो सम्पन्न भऽ रहल है, तऽ आजुक एहि अंकसँ मणिकांतके
1: और मनोज को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: मिथिला।

श्रोता सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हां श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई सन 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, रिकॉर्डिंग करा सकते हैं आप अपने अनुभव अपनी बातों को हमारे साथ। रिकॉर्डिंग का समय याद रखें, आज ही यानी शुक्रवार 3 जुलाई सन 2026 दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। रेडियो के बाद श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 5 जुलाई सन 2026 दोपहर 2:30 पर। इस कार्यक्रम में अपनी बातों को रिकॉर्ड कर

मंगवाने के लिए आप हमारा ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9430029353, यानी 9430029353। कार्यक्रम संबंधी ये सूचना समाप्त हुई।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
6: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
5: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारे, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय सुबह के 8 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

0: दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री

0: बस से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15-27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाये रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच

0: कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ते की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers, and financiers of the reprehensible act to be brought.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हमनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और बीसीसीआई ने अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने पाकिस्तान से फैलाई जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़राए आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली

0: टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का एक हिस्सा है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारत जापान मुश्तरका इक्तसादी फोरम से खिताब करने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि भारत और जापान ने इक्तसादी तहफ़ मसनू जहानत AI दिफा और सेहत से मुतालिक शोबों में दस्तखत किए हैं। भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तोसी कर रहा है। अगले साल भारत में रिफाइनरी की सलाहियत 300 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के इस बयान को आज के अखबारात ने नुमाया किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुल्क भर के बैनुल अक्वामी हवाई अड्डों पर एबोला वायरस की जांच के लिए AIR सुविधा पोर्टल 2.0 का किया आगाज। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबरे आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। और स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंटरप्रेस चैनल है, मीडियम वेव।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
5: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
4: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
5: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
4: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। और मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज और उच्च स्वास्थ्य संस्थान में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अनावश्यक रेफरल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और इसके लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौधरी ने अस्पतालों में नर्सों की पदस्थापना पर विशेष ध्यान देने और उन्हें यथासंभव उनके गृह जिलों में पदस्थापित करने पर विचार करने के भी निर्देश दिए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रदेश में विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। पटना के अधिवेशन भवन में योजना की औपचारिक शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी मजदूर को आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिया गया तो सरकार उसे अपने कोष से बेरोजगारी भत्ता देगी। उन्होंने कहा कि अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी को 255 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये रोजाना कर दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि अकुशल मजदूरों का मस्टर रोल बंद होने से 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि पर 0.05% प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मनरेगा की अव्यवस्थाओं और खामियों को दूर करने के मकसद से विकसित भारत जी रामजी योजना को लाया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को फायदा मिलेगा।
1: जिस तरीके से मनरेगा को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया गया था, ये तमाम चीजों को खत्म करने की सोच के साथ और सही में जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना से जोड़कर इसका लाभ मिले, इस सोच के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लंबे समय से इस योजना पे कार्य हो रहा था, इसको लाया गया है, इसको लागू किया गया है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसका लाभ भी देश की एक बड़ी आबादी को देखने को मिलेगा।
0: इस बीच केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात कर राजगीर में दो युवकों की हत्या और आरा में भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की जानकारी दी। श्री पासवान ने इन मामलों में निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का आग्रह किया है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके लिए स्वयं सृजित राजस्व जुटाने को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी उपयोग के लिए व्यावहारिक रणनीतियों का आदान प्रदान करने का मंच भी प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने केंद्र सरकार से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 1,120 करोड़ रुपए की मांग की है। श्री तिवारी ने इस संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य के लिए विशेष बजट के आवंटन से विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को

0: और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि गंगा नदी का कायाकल्प एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच लगातार सहयोग से यह महती कार्य किया जा सकता है। गंगा नदी के लिए बनाई गई एम्पावर्ड टास्क फोर्स की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री पाटिल ने यह बात कही। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अब तक 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित लागत वाली 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 363 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 21,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। राज्य निर्वाचन प्राधिकरण ने 37 पैक्स चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार 6 जुलाई को प्राथमिक कृषि साख समिति स्तर पर प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 8 जुलाई को जिला सहकारिता पदाधिकारी की ओर से सूची निर्वाचन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। दावा आपत्ति और अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया 23 जुलाई तक पूरी होगी। इधर पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उपचुनाव में 3,79,000 मतदाता भाग लेंगे। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि उपचुनाव के लिए पटना सदर के भूमि सुधार उप समाहर्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। उपचुनाव के लिए 6 से 13 जुलाई तक नामांकन लिए जाएंगे। मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कल से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यगत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है।
2: दिनांक 3 जुलाई, राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के

0: जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर मॉनसून की सक्रियता से पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, बक्सर, सारण, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर के अधवारा में सबसे अधिक 86.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीवान का जीरादेई सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रेलवे बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी है। बोर्ड के अनुसार 4098 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इधर बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट पद की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 28 जुलाई को होगी। निगरानी जांच ब्यूरो ने शिक्षा विभाग के वेतन सत्यापन कोषांग में तैनात अवर सचिव अमोद मिश्रा को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इधर पटना पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन और GST के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, कई पासबुक, 6 लाख से अधिक नकद और 7 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। शिवहर जिला प्रशासन ने शिवहर थानाध्यक्ष सहित जिले के 4 थानों में नए थानाध्यक्ष पदस्थापित किए हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने नव पदस्थापित पुलिस कर्मियों को 24 घंटे के अंदर योगदान देने का आदेश दिया है। शेखपुरा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 333A बरबीघा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का काम आज से शुरू हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण से यातायात संचालन, सड़क सुरक्षा और आम जन की परेशानियों को दूर करने के मकसद से यह कार्रवाई की जा रही है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 105 ग्राम मादक पदार्थ भी बरामद किया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट से भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा बिहार। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, विधायक और अफसर नपेंगे। दैनिक जागरण ने राज्य में टोल टैक्स से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सड़कों की चौड़ाई के अनुसार लगेगा टोल टैक्स, अब तक 50 सड़कें चिन्हित। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, बांकीपुर से जनसुराज के पीके खुद लड़ेंगे चुनाव, भाजपा से नीलू रेस में सबसे आगे। प्रभात खबर लिखता है, नीट JEE में बोर्ड परीक्षा के अंकों पर मिल सकता है 50% तक वेटेज। आज अखबार का शीर्षक है, पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की होगी TB स्क्रीनिंग। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अगस्त से अनुमंडलीय और जिला अस्पताल से उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। और मौसम विभाग ने आज पटना सहित प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर।

रहिए आकाशवाणी दरभंगा। कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

और शुक्रगुजारी एक दूसरे के बहुत करीब पाए जाते हैं। जहाँ इंसान कनात पसंदी अख्तियार करेगा, वहाँ शुक्रगुजारी भी आ जाएगी। मजहब इस्लाम में इस बात की बार बार ताकीद की गई है कि एक इंसान को अपने हुसूल जिंदगी के लिए हमेशा शुक्रगुजार और कनात पसंद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जिसमें शामिल हो गई उसके लिए ज़िंदगी पुरसकून और आसान हो जाती हैं। आज की चकाचौंध जिंदगी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में सरगर्दा हैं, सुबह और शाम उसी जद्दोजहद में गुजर जाती है। ऐसी सूरत हाल में कभी कभी इंसान हलाल व हराम की तमीज़ भी भूल जाता है। कुरान में हलालन तैयबन का जिक्र आया है और अपने रब का शुक्र अदा करने की हिदायत भी है। कनात की लगवी मानी किस्मत पर राजी रहना है और सूफिया की इस्तलाह में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों के ना होने पर भी राजी रहना कनात है। हजरत मोहम्मद बिन अली तरमजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कनात यह है कि इंसान के किस्मत में जो रिस्क लिखा है उस पर उसका नफ्स राजी रहे। अगर तंगदस्ती होने और हाजत से कम होने के बावजूद सब्र किया जाए तो उसे भी कनात कहते हैं। कनात की तफसीली तारीफ यूं है, हर वो शख्स जिसके पास माल ना हो और उसे माल की जरूरत हो और उसकी हालत यह हो कि माल में रगबत की वजह से उसके नजदीक माल का होना ना होने की निस्बत ज्यादा पसंदीदा हो, लेकिन ये रगबत इस हद तक ना पहुंची हो के हुसूल माल के लिए भाग दौड़ करे, बल्कि अगर बासानी हासिल हो तो खुशी से ले ले, और अगर हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़े तो छोड़ दे। इस हालत को हजरत सैयदना साद बिन आबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्वजल परहेजगार कनात पसंद और गुमनाम बंदे को पसंद फरमाता है। कुरान के मुताबिक कनात मोमिन की पहचान है। सब्र, शुक्र और परहेजगारी कनात के जुज्व हैं। एक मोमिन हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ने अपनी नेमत उसे जितनी मकदार में अता की है उस पर वो कायम रहता है और ज्यादा की तवक्का नहीं रखता है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है और जिसे चाहता है नाप कर देता है, और बहुत को तंगदस्ती, डर, भूख और कारोबार में खसारे के जरिया आजमाइश लेता है। लिहाजा एक मोमिन हर आजमाइश पर खर्रा उतरता है। हर इंसान के दिल में जलन और हसद मौजूद होता है और वो दूसरों की खुशहाली, दौलत और वसायल को देखकर खुद भी उन वसायल के हुसूल के लिए कोशा रहता है। ये ख्वाहिश कभी कभी गलत सूरत अख्तियार कर लेती है और वो दुनियावी आसाइश के हुसूल के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने लगता है। उसे जायज़, नाजायज़, हलाल, हराम और सही व गलत का होश नहीं रह जाता। कुरान इंसान के उस जज्बे पर तंबीह करते हुए कहता है, और हवस मत करो जिस चीज में बढ़ाई दी अल्लाह ने एक को एक पर। सूरह निसा 32 नंबर। कुरान कहता है कि अल्लाह कुछ लोगों को दुनिया में ज्यादा रिस्क, माल, दौलत, जायदाद और वसाइल अता करता है तो उसमें इसकी मसलहतें हैं। वो लोगों को माल व दौलत से आजमाता है जिस तरह कुछ लोगों को भूख और अफलास के जरिया से आजमाता है। लिहाजा दूसरों को देख कर रौनक, दुनिया और आसाइश के हुसूल के लिए परेशान रहना हमाकत है। कुरान कहता है, तेरे रब की दी हुई रोजी बेहतर है और बहुत बाकी रहने वाली। सूरह ताहा 131 पेज नंबर। कनात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और औलिया इकराम की मुबारक सौगात है। हर मुसलमान को चाहिए कि इस सौगात को हासिल करे, कनात से अल्लाह अज़्वजल का महबूब बने, उसकी रजा पाने, कब्र व हशर में आसानी फराहम करने और जन्नत में ले जाने वाला काम करे। किताब निजात दिलाने वाले अमाल की मालूमात सफा नंबर 77। कनात का जहन बनाने और उसे अख्तियार करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। कनात के फजाइल पर मुश्तमिल 6 रिवायत मुलाहजा हैं। उस शख्स के लिए जिसे इस्लाम की तरफ हिदायत हासिल हुई, उसकी रोजी बकदरे कुफायत है और उस पर वो कनात करता है। अल्लाह अज़्वजल के नज़दीक एक पसंदीदा बंदा वो है जो अपनी रोजी पर कनात अख्तियार करे। जब उसके अज्ज़ा हासिल हो जाएंगे तो कनात भी खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। कनात 3 चीज़ों से मुरक्कब है, अमल, सब्र और इल्म। पहली चीज़ अमल है, यानी मईशियत में इतदाल और ख़र्च में कुफायत अख्तियार करना। जो शख्स कनात में बुजुर्गी चाहता है उसे चाहिए कि कम खर्च करे। हदीस पाक में रिशाद है, यानी तदबीर से काम लेना निस्फ़ मईशियत है। दूसरी चीज़ सब्र है कि बंदा अपने नफ्स पर सब्र करे और ख्वाहिशात को कम करे ताकि वो किसी दूसरे हाल में भी हाजत की वजह से परेशान ना हो। तीसरी चीज़ ये इल्म है कि वो इस बात को जान ले कि कनात में इज्जत है जबकि

तमाम जिल्लत ही जिल्लत है, बस यूं हर्ष से जान छुड़ा ले और कनात को पाले। शुक्र की तारीफ, शुक्र के लगवी माने एहसान की शनाख्त और नेकी करना। इसी तरह दूसरों को उनकी तशवीक करने को शुक्र कहा गया है। इस्तलाह में शुक्र की तारीफ खुदा की नेमत को याद करना और उनका दिल जबान व अमल से इजहार करने को शुक्र कहा गया है। कुरान करीम में शुक्र के मुतालिक बहुत सी आयत है जिसमें फरमाया गया है कि जिंदगी दी ताकि शुक्र अदा करो, और कभी फरमाया कि तुम्हें आँख कान दिल दिए लेकिन फिर भी शुक्र करने वाले कम हैं। औसाफ खुदाबंदी यह है कि वो शाकिर भी है और मशकूर भी, और कई बार इंसान को हुक्म दिया कि शुक्रगुजार बने, और जो लोग शुक्र नहीं करते या कम शुक्र करते हैं उनसे नाराजगी का इजहार भी किया और फरमाया कि शुक्र करने का फायदा यह है कि तुम्हें फायदा पहुँचता है। शुक्र करने वाला इंसान कभी शैतान के जाल में नहीं फंसता, और शैतान ने खुदा से कहा मैं सबको गुमराह करूंगा और हर तरफ से इंसान के पास आऊंगा लेकिन उनमें तेरे शुक्रगुजार नहीं होंगे। हाँ, ना शुक्र इंसान ही शैतान के जाल में फंसता है, जैसा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नेमत का शुक्र करने वाले और ना शुक्रे के लिए इम्तिहान बताया था। अल्लाह ने शुक्रगुजारी को मुख्तलिफ नेमत, चाहे मादी हो या मानवी, इंसान के रूही और जिस्मी रशद के लिए करार दिया है, और ऐसा ना करने वाला इंसानियत और आदमियत का मुखालिफ है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल शुक्र मफरूज, शुक्र करना वाजिब है। शुक्र की हकीकत नेमतों का इजहार करना है, और इसी तरह कुफरान नेमत इजहार ना करने में है। नेमत के इजहार से मुराद उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना और नेमत देने वाले की जबान से तारीफ करना है। रागिब अस्फहानी ने शुक्र की तारीफ में कहा है कि शुक्र इबारत है नेमतों का इजहार कुफर के मुकाबले में, इसी तरह नेमत को भूल जाना और छुपाना है। जब वो नेमत के समुन्द्र में चले जाएं और मादी हवाले से उन्हें कोई कमी ना हो तो उस वक्त वो कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे कहा जाए कि ठीक है, ये भी शुक्र है, लेकिन कामिल और हकीकी शुक्र नहीं है, बल्कि ये शुक्र का एक मर्तबा है। इसीलिए तो रिवायत और आयत में शुक्र के मुरातिब बयान हुए हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं बहुत कम बंदे शुक्र करते हैं, इसलिए हमेशा अपने जिस्म और सेहत के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को हमेशा आजमाता है, देखना चाहता है कि बंदा कितना शुक्र करता है। इसलिए हमें चाहिए के ज्यादा से ज्यादा शुक्र करने का लफ्ज अपनी जबान पर कायम कर ले। इंसान के पास ये ताकत है कि वो अपने खालिक से राजो नियाज कर सकता है और गिड़गिड़ा के ये कह सकता है कि अल्लाह ताला मैंने गलत किया, तू करीम है, मुझे बख्श दे, मैंने हमेशा तेरी नेमतों की कद्र नहीं की और मैं जिन नेमतों के काबिल ही नहीं था लेकिन तुमने लुत्फ व करम से वो मुझे अता की। अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना ही शुक्र है। इंसान को हमेशा अपने अल्लाह की नेमतों का शुक्र गुजार होना चाहिए, जैसा कि कुरान में भी जिक्र है शुक्र करने वाले कभी शैतान के जाल में नहीं फंसते। इसकी अतात में शामिल है जैसे नमाज का पढ़ना, रोजा रखना और लोगों की खिदमत करना है। ना शुक्र पस्त लोग हैं, और हक ये बनता है कि उनसे नेमतें सल्ब कर ली जाएं, जैसा कि कुरान ने भी उनका ठिकाना जहन्नम बताया है। क्योंकि ऐसे लोग नाशुक्र गुजार तो होते ही हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी अपना साथी बना लेते हैं। बेहतरीन रास्ता शुक्र करने का यह है कि ईमान का मजबूत होना। शैतान को भी एक बहुत बड़ी रुकावट कहा गया है कि जिसकी वजह से हम शुक्र अदा नहीं करते हैं। इंसान को चाहिए कि बुराइयों से बचे और अल्लाह के शुक्र गुजार बंदों में हो जाए, ताकि नेमत का इजाफा हो और उनकी वजह से कमाल तक जा पहुँचे। ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि अक्सर लोग जब चाहते हैं कि खुदा का शुक्र अदा करें तो वो चाहते हुए या ना चाहते हुए बुखल से काम लेते हैं, और यही उनकी जहालत की दलील है। शुक्र की मकदार औलियाए इकराम अलैहिस्सलाम से सीखना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब असीरों का काफिला करबला से चलता है तो कोफो शाम में उन बच्चों से सवाल किए जाते हैं। इस तरह जब फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल किया गया तो जवाब में फरमाती हैं कि ऐसी हालत में भी वो अल्लाह का शुक्र करती हुई नजर आ रही हैं। हमें चाहिए कि हम भी ऐसी हस्तियों को अपने ऊपर नाफिज करें और उनकी तरह शुक्र अदा करें। हम भी कहीं अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के कतरों के बराबर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, शहदा के खून के बराबर अल्लाह का शुक्र, हर सांस आह के बराबर अल्लाह का शुक्र करने से अल्लाह ताला भी उसी तरह हमें सवाब अता करेंगे। शुक्र अदा करने की कैफियत और मकदार को समझना है तो अमीरुल मोमिनीन से सीखें। फरमाते हैं कि खुदाया हम्द फकत तेरे लिए है, हर

0: उस चीज पर जो तुम चाहते हो और हर उस चीज पर जो तुमने अता की और हर उस चीज पर जिसमें तुमने आफियत बख्शी और हर उस इम्तिहान में के जिसमें तुमने मुब्तला किया। ऐसी हमद की जिसमें तेरी रजाइयत और अफजल तरीन हमद तेरे लिए है। हजरत अपने इस नूरानी कलाम में हमें सिखा रहे हैं कि हम जब चाहते हैं कि कहीं अल्हम्दुलिल्लाह फकत अपनी नेमतों के लिए ना हो बल्कि दूसरों की नेमतों के लिए भी अल्लाह की तारीफ करें।
1: अभी आप समाअत फरमा रहे थे बातें जिनसे जिंदगी सवरती है के तहत कनात और शुक्रगुजारी के मौजू पर यह मकाला मकाला निगार थीं रेशमा नाज। सामईन, जिंदगी को अनमोल बनाने की तीसरी और सबसे अहम बात दूसरों की खिदमत करना है। जिंदगी उस वक्त बामानी बनती है जब हम अपनी ज़ात से बाहर निकलकर दूसरों के लिए कुछ करें। किसी का दुख दूर करना, किसी को इल्म देना, किसी की मदद करना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये सब वह आमाल हैं जो जिंदगी को अनमोल बना देते हैं। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वह है जो दूसरों के लिए मुफीद हो। तो आइए सामीन, अब समाअत फरमाएं नातिया कलाम। पेश कर रहे हैं मोहम्मद परवेज़ अख्तर।

मुझको उस प्यारी हवा से इश्क है, मुझको उस प्यारी हवा से इश्क है। दम में जब तक दम।

तेरी चौखट से मैं उठ जाऊं ये मुमकिन ही नहीं, जब तलक मिल नहीं जाता मुझे सदका तेरा। अभी आप समाअत फरमा रहे थे नातिया कलाम, पेश कर रहे थे मोहम्मद परवेज़ अख्तर। सामईन, ज़िंदगी को अनमोल बनाना है तो अपनी सेहत का ख्याल रखना, तालीम का उसूल, अखलाकियात की पासदारी और ख़ानदान के साथ कीमती वक्त गुजारना भी ज़िंदगी को संवारने के अहम ज़राए हैं। आप अपनी सलाहियतों को पहचानें और उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें। जो लोग अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं वह ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं।

इस मुख्तसर वक्त को हमें इस तरह गुजारना चाहिए कि जब हम दुनिया से जाएं तो लोग हमें दुआ के साथ याद करें। अपने अमाल को ऐसे करें कि वह दूसरों के लिए मशाल राह बने। नेकियां कमाएं, लोगों के दिलों में जगह बनाएं और अपनी ज़िंदगी को एक रोशन मिसाल में तब्दील करें।

0: आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं। आकाशवाणी दरभंगा से ये समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म धन दौलत के इस गीत से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और आशा भोसले।

जीना क्या अजीब प्यार बिना, सच में धन दौलत के बिना तो जिंदगी कट सकती है लेकिन प्यार के बिना नहीं। प्यार भरे फिल्मी गीतों के इस सुहाने सफर में एक बार फिर आप हैं हमारे साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। धन दौलत फिल्म का वो गीत हम आपको सुनवा रहे थे जिसे गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने। लीजिए इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में बनी ये फिल्म है शागिर्द।

तुम्हें हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदा दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

बड़े मियाँ दीवाने शागिर्द फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे का गाया हुआ। गीत रचना हसरत जयपुरी की थी। प्यार भरे फिल्म गीतों के सुहाने सफर में एक बार फिर हैं आप हमारे साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम जारी है, मगर उससे पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना।

रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हां श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई सन 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, अपने अनुभव अपनी बातें हमारे साथ साझा करें हमारे इस कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। 5 जुलाई सन 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होने वाले हमारे इस कार्यक्रम के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग आज ही यानी शुक्रवार 3 जुलाई सन 2026 दोपहर 3 से 4:30 के बीच की जाएगी। जी हां श्रोताओं, आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग आज ही यानी 3 जुलाई सन 2026 दोपहर 3 से 4:30 के बीच की जाएगी। अपने फोन कॉल्स रिकॉर्ड करवाने के लिए हमारा ये मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 9430029353 यानी 9430029353। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय याद रखें, रविवार 5 जुलाई दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम संबंधी यह सूचना समाप्त हुई। और अब आइए ना प्यार भरे फिल्मी गीतों के सुहाने सफर को आगे बढ़ाते हैं। सुनवाते हैं आपको सोनू निगम और सारिका कपूर का गाया ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा, सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। लीजिए इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं, आशा भोसले का गाया हुआ। गीत रचना शहर यार की है, संगीत खयाम का, फिल्म का नाम उमराव चांद।

सच में दिल तो चाहता है कि सुकून की छांव में बस बैठे रहे, जहां कोई गम ना हो, कोई तकलीफ नहीं। उदित नारायण और अलका याग्निक को आप सुन रहे थे, ये फिल्म थी लावारिस। अपने सुनने वालों को हम याद दिला दें, आकाशवाणी दरभंगा से आज दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे अपनी ही चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और आज रात 10 से आप सुनेंगे पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय याद रखें, आज ही रात 10 से 11 के बीच। इस कार्यक्रम में अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गानों को सुनने के लिए हमारे ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9430029353, यानी 9430029353। प्यार भरे फिल्मी गीतों का हमारा ये सुहाना सफर जारी है दोस्तों। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को सुनिए, फिल्म का नाम है सिंदूर। गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत। फिल्म का नाम है नया दौर। गायक कलाकार मोहम्मद रफी।

जावेद अख्तर का लिखा है कि गीत हम आपको सुनवा रहे थे। फिल्म थी नगीना, गायक कलाकार थी कविता कृष्णमूर्ति। प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये सुहाना सफर अब बिल्कुल अपने मंजिल के करीब आ चुका है दोस्तों। इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म वारिस।

लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह को आप सुन रहे थे। ये फिल्म थी वारिस। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारे ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सवा के कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विश्वमोहन भट्ट का मोहन वीणा, राग देश आलाप, विलंबित द्रुत रचना, तीन ताल।

0: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। अभी आपने सुना विश्व मोहन भट्ट को, इनसे आपने अभी सुना मोहन वीणा, राग देशालाप, विलंबित द्रुत रचना तीन ताल।
1: बड़े इरादों का घर है बनाना, तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। अरे सुरेश, बड़े कन्फ्यूजियाए दिख रहे हो।
2: रवि भैया, पक्का घर बनवाए खातिर कौन सा सीमेंट चुने समझ ही नहीं आ रहा।
1: अल्ट्राटेक और का
3: भैया, अल्ट्राटेक ही क्यों?
1: बाबू घर बना रहे हो, फिल्म का सेट

0: नहीं, एक ही मौका मिलेगा।
1: सही बोले भैया,
0: इसीलिए चुनो सिर्फ अल्ट्राटेक, देश का नंबर एक सीमेंट। तो याद रहे, घर एक मौका है, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक, अल्ट्राटेक। बड़े इरादों का घर है बनाना, तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। अरे सुरेश, बड़े कन्फ्यूजिया दिख रहे हो।
2: रवि भैया, पक्का घर बनवाए खातिर कौन सा सीमेंट चुने, समझ ही नहीं आ रहा।
0: अल्ट्राटेक और का
1: भैया, अल्ट्राटेक ही क्यों?
0: बाबू घर बना रहे हो, फिल्म का सेट नहीं, एक ही मौका मिलेगा।
1: सही बोले भैया,
0: इसीलिए चुनो सिर्फ अल्ट्राटेक, देश का नंबर एक सीमेंट। तो याद रहे, घर एक मौका है, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक, अल्ट्राटेक।
3: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट, अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स।
4: बात घर की।
5: मोहम्मद शमी जी अब शीघ्र ही गांव में अपना घर बनवाने जा रहे हैं और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का विचार रखते हैं, और इसका सही तरीका आपसे जानना चाहते हैं इंजीनियर बाबू।
6: शमी जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप रिचार्ज पिट बनवा सकते हैं। सबसे पहले रिचार्ज पिट के लिए निचली जगह पर एक गड्ढा खुदवाइए। गड्ढा लगभग 1 से 2 मीटर चौड़ा हो और 2 से 3 मीटर गहरा। फिर इस गड्ढे को पत्थर, बजरी और मोटी रेती से परत दर परत भरवाएं।
4: बात घर की।
3: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट, अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स।
4: बात घर की।
5: मोहम्मद शमी जी अब शीघ्र ही गांव में अपना घर बनवाने जा रहे हैं और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का विचार रखते हैं, और इसका सही तरीका आपसे जानना चाहते हैं इंजीनियर बाबू।
6: शमी जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप रिचार्ज पिट बनवा सकते हैं। सबसे पहले रिचार्ज पिट के लिए निचली जगह पर एक गड्ढा खुदवाइए। गड्ढा लगभग 1 से 2 मीटर चौड़ा हो और 2 से 3 मीटर गहरा। फिर इस गड्ढे को पत्थर, बजरी और मोटी रेती से परत दर परत भरवाएं।
4: बात घर की।
0: बड़े इरादों का घर है बनाना, तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना।
7: रवि भैया, बहुत मेहनत की, पर लोग कहते हैं कि हमसे परिवार की देखभाल में कसर रह गई।
0: अपनों के खातिर तो शहर काम ढूंढने गए थे।
7: जी भैया, अपनी कमाई से आज परिवार के लिए घर बनवा रहे हैं।
0: और देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक चुनकर तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो।
7: सही कहा भैया।
0: जेब्बार, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक, अल्ट्राटेक।
5: बड़े इरादों का घर है बनाना,
0: तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना।
1: रवि भैया, शहर में मेहनत करके गांव में अपना घर बनवा रहे हैं और लोग बातें बना रहे हैं।
0: कैसन बात बिरजू?
1: यही कि घर बनाने की जिम्मेदारी पिताजी पे डाल, हम शहर फुर हो जाएंगे।
0: फुर तो लोग होंगे तुम्हारा ये घर देखकर, जिसे अल्ट्राटेक से बनवा कर तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो।
1: सही बोले भैया।
0: घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक, अल्ट्राटेक।
8: बिहार में फिर एक बार देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक लेकर आया है एक अनूठा पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, जिसमें सम्मानित होंगे बिहार के ऐसे मुखिया जो अपना बड़ा इरादा और अटूट हौसला से गांव बनाकर देश बढ़ा रहे हैं।
9: मुहिम में भाग लेने के लिए 8686518888 पर मिस्ड कॉल दें।
10: अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
9: गांव का निर्माण कर जो दे रहे हैं देश की प्रगति में योगदान, अल्ट्राटेक करता है ऐसे मुखियाओं का समर्थन और सम्मान। 2023 में बिहार में शुरू की गई अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया को बढ़ाते हुए 2026 में एक बार फिर देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ऐसे सभी मुखियाओं को सम्मानित करने जा रहा है जो अपने बड़े इरादों और मजबूत हौसलों से गांव बनाकर देश को बढ़ा रहे हैं। ई मुहिम में भाग लेने के लिए 8686518888 पर मिस्ड कॉल दें।
10: अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
3: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट, अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स।
4: बात घर की।
11: नमस्कार रवि किशन जी, हम पंकज कुमार बोल रहे हैं।
5: नमस्कार पंकज जी, सवाल पूछिए अपना।
11: हम आपसे समझना चाहते हैं कि घर बनाने के लिए सही जमीन का चुनाव कैसे करें।
5: चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं।
6: घर बनाते वक्त जमीन सड़क से पर्याप्त ऊंचाई पर होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि घर की कुर्सी यानी प्लिंथ की ऊंचाई सड़क से कम 2 फीट हो, और उसके बाद ही उस पर घर का निर्माण किया जाए। साथ ही उस जमीन पर पानी और बिजली की पूरी सुविधा होनी चाहिए।
4: बात
3: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट, अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स।
4: बात घर की।
5: नमस्कार, मैं रवि किशन। अमित प्रकाश जी ने पूछा, ये जानना चाहते

0: देंगे क्या घर के निर्माण के लिए उनको नक्शा बनवाने की जरूरत है?
1: इंजीनियर बाबू से जवाब सुनते हैं।
2: नक्शा बनवाने से घर की सही प्लानिंग होगी, जिससे कल को आप तोड़ फोड़ के खर्चे से भी बचेंगे। साथ ही नक्शे से जमीन का सही इस्तेमाल भी होगा और बजट बैठाने में आसानी भी।
3: बात घर की।
4: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स।
3: बात घर की।
5: नमस्कार,
6: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है, तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भू परपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण

0: रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।
1: जी
0: धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका, जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?

0: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
1: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
0: ये किसी खुदरे से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
1: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष।
1: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण

0: जाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भोज वृक्ष।
0: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
0: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
0: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर लीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?

0: आशा है श्रोता मित्रों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
1: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: लेकिन आज श्रोताओं आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
0: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और यह देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना।

0: वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
2: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
3: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का इस सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
3: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वो राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
5: अलख निरंजन।
6: ए साधु बाबा।
5: अब अच्छा,
6: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
5: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
6: क्या?
5: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
6: है?
5: हाथी, घोड़े,

0: तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: बहुत बड़ी फौज है।
0: और नहीं तो क्या बच्चा। अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
1: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
0: अच्छा,
1: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
0: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
1: बिल्कुल है।
0: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
1: उसका भी इंतजाम है।
0: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
1: देखो, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
0: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं। बदन सिंह रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: आश्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
8: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजने ही वाले हैं। ये वक्त है फिल्म संगीत का और इस समय आप सुनते हैं कुछ नए फिल्मी गाने। तो कार्यक्रम में हमने पहला गाना लिया है

ऑपरेशन मेफेयर का गीत अभी आप सुन रहे थे अंतरा भट्टाचार्य की आवाज़ में। गीत लिखा था अन्यमन मजुमदार ने और संगीत निर्देशन सेवी का। अब सुनिए फिल्म काकुड़ा का ये गीत गुलराज सिंह एवं अदिति पॉल की आवाज़ों में, जिसे बोल दिया है मनोज यादव ने और संगीत गुलराज सिंह का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म गदर 2 का गीत। विशाल मिश्रा और नीति मोहन, शैल अख्तर एवं शहनाज अख्तर की आवाज़ों में। शहीद कादरी के बोल थे और संगीत दिया था मिथुन ने। इसके पहले जो हमने आपको गीत सुनवाया था वो फिल्म था हाउसफुल 5, जिसे गाया था मधुवंती बागजी एवं सुमंतु मुखर्जी ने, कुमार के गीत, और संगीत दिया था व्हाइट नॉइज कलेक्टिव्स ने। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुट्टी से, जिसे गाया है अवधूत गुप्ते ने, संगीत विशाल भारद्वाज का और बोल गुलजार के।

लापता लेडीज, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में, जिसे लिखा था प्रशांत पांडे ने और संगीतबद्ध किया था राम संपत ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं

फिल्म लापता लेडीज का ही एक और गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में, जिसे शब्दों से सजाया है स्वानंद किरकिरे ने और धुन बनाई है राम संपत ने।

फिल्म भोला का गीत अभी आप सुन रहे थे वी प्रॉक की आवाज़ में। संगीत निर्देशन रवि वसरूर का था। इसी गीत के साथ फिल्मी संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कुछ और नए गाने आप सुन सकेंगे हमारी दूसरी सभा में शाम 5:40 पर। प्रस्तुत है बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार। नारी संसार को लेकर आज प्रस्तुत हैं आपकी रेडियो दोस्त रजनी।

नमस्कार श्रोता बहनों, स्वागत है आपका कार्यक्रम नारी संसार में, और मैं हूँ रजनी, आपकी रेडियो सखी। बहनों, आज भी हम विभिन्न रोचक विषयों के साथ उपस्थित हैं, और अंत में खास टिप्स में होगी कुछ खास जानकारी आपके लिए। और हाँ, कार्यक्रम के बीच बीच में मनोरंजन के सागर में गोता भी लगाएंगे और सुनेंगे कुछ नए पुराने नगमे। तो बहनों, कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार। बहनों, आज हम एक ऐसे विषय से अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे जो केवल प्रकृति से नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य, परिवार और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। बहनों, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए और भोजन के लिए उपजाऊ भूमि, ताकि अन्न उपज सके, फल प्राप्ति हो सके। यह सब हमें प्रकृति देती है और प्रकृति ही हमारा सबसे बड़ा धन है। लेकिन आज यही प्रकृति संकट का सामना कर रही है। लगातार पेड़ों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, धुएं से भरी हवा और प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं। गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है, वर्षा का समय बदल रहा है, बारिश पहले से कहीं कम हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। मतलब सब कुछ उलट पलट हो रहा है और नई नई बीमारियां भी बढ़ रही है। यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं बल्कि मानव जीवन का भी संकट है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में महिलाओं की भूमिका बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक महिला परिवार की, अपने बच्चों की पहली शिक्षिका होती है। वह अपने बच्चों को स्वच्छता, जल संरक्षण, पेड़ पौधों से प्रेम और प्रकृति का सम्मान करना सिखा सकती है। यदि हर घर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता होगी तो पूरा समाज बदल सकता है, पूरी हरियाली छा सकती है और पर्यावरण शुद्ध हो सकता है। जरा सोचिए, यदि हमें शुद्ध हवा ना मिले, पीने के लिए स्वच्छ पानी ना मिले या खेतों में अच्छी फसल ना हो तो हमारा जीवन कितना कठिन हो जाएगा। आज भूजल स्तर नीचे जा रही है और जंगल लगातार कम हो रहे हैं। चापाकलों में अधिकतर जगहों पे पानी नहीं आ रही है। अगर 10 साल पहले, 5 साल पहले तक जहाँ पर पानी आ रही थी वहाँ पे बोरवेल गराना पड़ रहा है, वहाँ पे समर सेवर लगवाना पड़ रहा है। ये कतई पर्यावरण के लिए अच्छी बात नहीं है। इन सब का अत्यधिक

सबसे अधिक प्रभाव परिवार पर ही पड़ता है और परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं के कंधे पर होती है। तो बहनों, एक महिला केवल घर ही नहीं संभालती बल्कि वह आने वाली पीढ़ी का निर्माण भी करती है। बच्चा सबसे पहले माँ से ही सीखता है। यदि माँ उसे बचपन से ही पेड़ पौधा से प्रेम करना सिखाए, पानी की बचत करना सिखाए और स्वच्छता बनाए रखना सिखाए, यानी उनके आदतों में ये समाहित करे, तो वही बच्चा बड़ा होकर के एक जिम्मेदार नागरिक बनता है और हमारा समाज, हमारा राष्ट्र अच्छा बनता है। हम सब मिलकर अपने घर से ही पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है जल संरक्षण। बहनों, पानी का नल खुला न छोड़ें। पानी का जितना ही आवश्यकता है उतना ही खर्च करें। वर्षा जल को बचाने का प्रयास करें, वर्षा जल संरक्षण का प्रयास करें। घर में पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और बच्चों को भी इसकी आदत डालें। पर्यावरण संरक्षण में का दूसरा कदम है पेड़ लगाना। हर परिवार यदि साल में एक या दो पेड़ भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो कुछ ही वर्षों में हमारा वातावरण काफ़ी हरा भरा हो जाएगा। हमारी प्रकृति हरी चादर ओढ़े नजर आएगी और शुद्ध शुद्ध वायु हमें प्राप्त होगी। ये जो पर्यावरण संकट उभर रहा है वो पीछे हटेगी। प्लास्टिक का उपयोग भी कम करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े का थैला साथ रखना चाहिए। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से बचना चाहिए, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा बल्कि पशु पक्षी का जीवन भी सुरक्षित बनेगा। घर और आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, न कि घर साफ करके हम रोड पे कचरा फेंक दें या आसपास के जल स्रोतों को गंदा करें। ये कतई अच्छी बात नहीं है। इस सब का ख्याल हमें रखना होगा और हमें आगे की पीढ़ी को संतरण करना होगा। घर और आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ रखना ही होगा। कूड़े कचरे को जहाँ तहाँ नहीं फेंकें। यदि संभव हो तो गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें, अलग अलग प्रबंधन करें। ऊर्जा की बचत करें। आवश्यकता न होने पर पंखे, बल्ब और अन्य बिजली के उपकरण बंद कर दें। ऊर्जा की बचत भी पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण कदम है। पानी की एक एक बूंद कीमती है तो एक एक बूंद मिसयूज ना करें। बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाएं। प्रिय श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण को का रक्षा केवल सरकार का ही काम नहीं है, यह हम सभी का परम कर्तव्य है। जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तभी हमारी धरती हरी भरी और सुरक्षित बनेगी। याद रखिए, प्रकृति हमें जीवन देती है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी आने वाली पीढ़ी की भी रक्षा करेगी, हमारी भी रक्षा करेगी और हमें शुद्ध वातावरण मिलेगा। इन्हीं संदेशों के साथ इस विषय पर अपनी बातचीत को विराम देती हूँ और आगे और भी बातचीत होगी विभिन्न विषयों पर। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम बगीचा में पिरोया हुआ ये प्यारा सा नगमा।

तो कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फोन कॉल शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर नोट करें, 9430029353। सूचना समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
2: आइए इंजीनियर बाबू से सुनते हैं कि घर बनाते समय हमें विशेष कर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
3: घर बनाने से जुड़ा कोई भी फैसला सोच समझकर और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर लें। अपनी जमीन के लीगल डॉक्यूमेंट्स की जांच एक जानकार वकील से अवश्य करवाएं। घर के निर्माण का बजट सोच समझकर प्लान करें। राजमिस्त्री या ठेकेदार का चुनाव लोगों की सुनकर ना करें, उनका किया हुआ काम देखकर करें। ढांचागत मटेरियल जैसे कि सीमेंट की गुणवत्ता से कोई समझौता ना करें।
1: बात घर की।
0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
4: नमस्कार रवि किशन जी, हम नीरज तिवारी बोल रहे हैं।
2: नीरज जी, स्वागत करते हैं आपका हमारे शो पर। अब सवाल पूछिए।
4: रवि किशन जी, हमारे इलाके में नदी से रेती मुश्किल से मिलती है। ऐसी परिस्थिति में नदी की रेती का इस्तेमाल करने की जगह और कोनो विकल्प है क्या?
2: चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं।
3: नदी की रेत की जगह आप क्रश्ड स्टोन सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड सैंड साफ होती है नदी की रेत की तरह, इसमें क्ले, मिट्टी और दूसरी गंदगियां नहीं होती।
1: बात घर की।
2: बड़े इरादों का घर है बनाना।

0: बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। अरे सुरेश, बड़े कन्फ्यूजियाए दिख रहे हो।
1: रवि भैया, पक्का घर बनवाए खातिर कौन सा सीमेंट चुने समझ ही नहीं आ रहा।
0: अल्ट्राटेक और का?
2: भैया अल्ट्राटेक ही क्यों?
0: बाबू घर बना रहे हो, फिल्म का सेट नहीं, एक ही मौका मिलेगा।
2: सही बोले भैया,
0: इसीलिए चुनो सिर्फ अल्ट्राटेक, देश का नंबर एक सीमेंट। तो याद रहे, घर एक मौका है, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक, अल्ट्राटेक।
3: बहनों, विज्ञापन के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। माँ बच्चों की परवरिश में अहम भूमिका निभाती है, ये तो हम सभी जानते हैं, और बच्चों का खान पान का खास ख्याल भी रखती हैं, उसे अच्छे संस्कारों से पोषित भी करती हैं, अच्छी अच्छी आदतें सिखाती हैं, बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी सिखाती हैं। ये माँ का परम कर्तव्य है। सही शून्यता, दया भावना और परोपकारिता का पाठ भी माँ अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, ताकि वो आगे चल के अच्छे नागरिक बने। बच्चे के अच्छे संगति हो, इसका तो खास ख्याल माँ को रखना होता है, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसे ही उसके संस्कारों पर असर होता है। इसलिए बच्चों की परवरिश में माँ की अहम भूमिका मानी जाती है। तो आइए इसी विषय पर हमारी रेडियो सखी आरती से यह वार्ता सुनते हैं, जानते हैं इनके विचार बच्चों की परवरिश में माँ की भूमिका के बारे में।
4: नमस्कार, मैं आरती। हम माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता के पास रहते हैं, उनके करीब होते हैं और हर बात उनसे साझा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ने लगती है, वे अपने दोस्त और स्कूल कॉलेजों में व्यस्त हो जाते हैं। साथ ही बच्चे माता पिता से अपनी बात शेयर करना भूल जाते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं, और कभी कभी तो बच्चे अभिभावक से बातें भी छुपाने लगते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो बच्चे झूठ भी बोलने लगते हैं। ऐसे में हर माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों से दोस्ती का रिश्ता बनाए। श्रोताओं, जब बच्चे अपने माता पिता को दोस्त समझने लगेंगे तो बच्चे उनसे हर तरह की बातें शेयर करेंगे। इससे होता क्या है कि बच्चों की झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। श्रोताओं, अगर बच्चे गलती करते हैं तो समझाए, डांटे नहीं। दोस्तों, बच्चे की बात बात पर गलती निकालने और डांटने की बजाय आराम से समझाए, ताकि बच्चे गलतियों से सीखे। और इस बात का ध्यान रखे, जब आप किसी गलती पर बच्चे को डांटने के बजाय उसकी बात समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे वो भी प्रयास करेगा कि अगली बार गलती ना हो। दोस्तों, बच्चों के साथ हमेशा प्यार से पेश आए। बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें क्या अच्छा होता है और क्या बुरा, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है। ऐसे में हम अभिभावक का फर्ज होता है उन्हें समझाना, उन्हें सही रास्ता दिखाना। हम अपने बच्चों को सही रास्ते दिखाए, उन्हें सावधान करें कि वो उन्हें इस लायक बना दे कि अपने दोस्त सोच समझकर चुने और सही दोस्त का चुनाव करे। श्रोताओं, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। जी, बच्चों को अच्छी परवरिश देते समय अभिभावक खास तौर पर कुछ बातों का भी ध्यान रखें। श्रोताओं, सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे संगत में रहे।
3: अभी आप हमारी रेडियो सखी आरती को सुन रहे थे, बच्चों की परवरिश में माता पिता की भूमिका के विषय पर। आइए अब हम कुछ और बातचीत करें।

बहनों, समय बदल रहा है और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, अपनी पहचान बना रही हैं। वे विद्यालयों में पढ़ रही हैं, कार्यालयों में काम कर रही हैं और व्यवसाय भी चला रही हैं, सेना में देश की सेवा भी कर रही हैं और विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ यह भी आवश्यक है कि वे अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक और आत्मविश्वासी रहे। आत्मरक्षा का अर्थ केवल मार्शल आर्ट या लड़ना नहीं है। आत्मरक्षा का पहला कदम है सजग रहना, यानी आत्मरक्षा का गुण सीखना सभी महिलाओं के लिए जरूरी है, खासकर लड़कियों के लिए, टीनेजर्स के लिए। आपके आसपास के वातावरण पर ध्यान देना और किसी भी संदिग्ध स्थिति को पहचानना और समय रहते सही निर्णय लेना भी आत्मरक्षा का हिस्सा है। यानी कि प्रेजेंट ऑफ माइंड को एक्टिव रखना भी आत्मरक्षा है। और सिक्स सेंस जो औरतों में अधिक होता है, बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो यही है जो सजग रहना। जब एक महिला आत्मरक्षा सीखती है तो उसके भीतर केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक साहस से कर पाती है। आत्मरक्षा सीखने के कई सरल तरीके हैं। कराटे, जूडो, ताइक्वांडो जैसे विद्याओं का प्रशिक्षण लिया जा सकता है। मोबाइल फोन में आपातकालीन नंबर सुरक्षित रखें। परिवार को अपनी यात्रा की जानकारी दें, लोकेशन शेयर करें। अनजान स्थानों पर जाने से सतर्क रहना चाहिए और किसी परेशानी पर तुरंत मदद मांगने में कोई संकोच ना करें। लेकिन एक बात और उतनी ही महत्वपूर्ण है, महिलाओं की सुरक्षा केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें अपने बेटों को भी यह सिखाना होगा कि महिलाओं का, बेटियों का सम्मान करना और सच्ची शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, यदि आपके घर में बेटी है तो उसे केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिलाइए, और बेटा है तो बेटा को शिक्षित करिए और संस्कार, अच्छे संस्कारों से पोषित करिए। महिलाओं के प्रति सम्मान देना सिखाइए। उसे यह विश्वास दीजिए कि, और बेटियों को यह विश्वास दीजिए कि वह सक्षम बने, मजबूत है, सक्षम है और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार रखती है। तो अपने सपनों को अवश्य पूरा करें बेटियाँ, और वह सशक्त बनकर। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम महिलाओं को सम्मान, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेंगे, अपने बेटियों को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, अपने बेटों को भी संस्कारों से पोषित करेंगे ताकि वह महिलाओं लड़कियों का सम्मान करे, एक ऐसा समाज बनाने में अपना योगदान देंगे जहां हर बेटी बिना भय के अपने सपनों को पूरा कर सके। तो ये तो थी हमारी छोटी सी बातचीत, और आइए अब कार्यक्रम में खास टिप्स की बात हो जाए। खास टिप्स में आज घरेलू उपचार की बातें करेंगे। बहनों, सर्दी खांसी में अदरक, तुलसी और शहद का सेवन करना फायदेमंद रहता है। इससे सर्दी खांसी की समस्या से छूमंतर हो जाती है। गले की खराश होने पर गुनगुने पानी में नमक डाल करके गरारे करने से खराश की समस्या से निजात मिलती है। हल्की चोट या सूजन पर बर्फ की सिकाई करना चाहिए, इससे चोट में राहत मिलती है। जलने पर प्रभावित स्थान पर ठंडा पानी डालें और एलोवेरा जेल लगाएं, इससे राहत मिलेगी। पेट दर्द या गैस होने पर अजवाइन और काला नमक का सेवन करना फायदेमंद है। इसी तरह बहनों, सिर दर्द की समस्या हो तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और कुछ देर आराम करें, इससे सिर दर्द की समस्या से निजात मिलेगी। कमजोरी महसूस होने पर पौष्टिक भोजन और प्रचुर मात्रा में मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, इससे कमजोरी दूर होती है और मजबूती आती है। त्वचा की देखभाल के लिए एलोवेरा जेल और बेसन का लेप लगाएं या दही का भी लेप

लगा सकते हैं, इससे त्वचा की समस्या से निजात मिलेगी। और इस साथ ही साथ व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, अपना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, प्रचुर मात्रा में पानी पीते रहें। तो ये तो थी घरेलू उपचार की बातें। आइए चलते चलते सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

बहनों, इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम में और ठहरने का हमें यहाँ की जो घड़ी है हमें इजाज़त नहीं दे रही है। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनों का, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।

0: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार। श्रोताओं, समय हो चला है हिंदी समाचार का, तो सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय

0: पिना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर।

प्रादेशिक समाचार जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे दिन के 2 बजे 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे पटना केंद्र से। रोजगार सूचना हम आपको सुनवाते हैं 2:10 पर।

2:30 पर आप एक बार पुनः आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। इस समय आप सुनेंगे कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे।

हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 5:40 पर। इस समय आप सुनेंगे कुछ नए फिल्मी गाने। हफ्तावार जायजा आप सुन सकेंगे शाम 6:10 पर। 6:15 पर आप आनंद ले सकेंगे विद्यापति गीत का।

कार्यक्रम मैथिली संवाद आप सुन सकेंगे शाम 6:25 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे नन्हा मुन्ना राही 6:30 पर। खेती गृहस्थी, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 7:00। 7:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। 7:47 पर आप सुन सकेंगे जिले की हलचल हमारे पटना के।

7:52 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्मी गीतों का। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुनते हैं रात्रि 8:15।

रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे साहित्य पर आधारित कार्यक्रम साहित्य की। इसके सूत्रधार होंगे अमलनाथ ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा। हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण समय होगा रात्रि 10:00।

तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से, सुनिए देशभक्ति गीत।

आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त नूतन। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रमों को अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है न्यूज ऑन AIR ऐप। चलिए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म जब जब फूल खिले से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनने वाले हमारे श्रोता हैं झंझारपुर लंगरा चौक से हरेराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी। गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी। लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली फलना झा। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। तो सुनिए अपना पसंदीदा गीत फिल्म जब जब फूल खिले का, ये गया आपके रेडियो सेट पर।

अगली चिट्ठी हमारे पास आई है, फिल्म जॉनी मेरा नाम का गीत सुनने के लिए। आवाज लता मंगेशकर की, बोल इंदिवर के, और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं नाहर मंटोला से कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाविर अली, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद जाहिद अली, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण। तो सुनिए ये गीत।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है फिल्म धरती के इस गीत की, इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल राजेंद्र कृष्ण के और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा है इनामत टोल भगवतीपुर पंचायत से नूतन सहनी

चन सहनी, बबीता सहनी, कोमल सहनी, नाव्या सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी, संतोष कुमार सहनी, रासो देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी, एस के सहनी। इसी गीत को पटेल नगर मलोट पंजाब से सुनने वाले हमारे श्रोता हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावेल पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति, प्रयाग चौधरी।

फिल्म धरती कागिद अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कार्यक्रम में अगली चिट्ठी आई है फिल्म मुगले आजम के गीत के लिए। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। नरहन एस्टेट फुटानी चौक से भाई फटफटिया झा, फुलेश्वरी देवी, फूल कुमारी फोकली झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा। बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार अमरेंद्र, वंश प्रसाद। गोविंदपुर धनबाद से शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ, हसन इमाम। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म मुगले आजम का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया है नौशाद ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आप भी अपनी पसंद हमें लिख सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी फरमाइश को पूरा करें और हर वो एक गीत आपको सुनवाएं जो आप सुनना चाहते हैं। तो आप हमारा पता नोट करें, आपकी फरमाइश कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। हमारा पिन नंबर है 846004। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आशा से, जिसे सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साविल पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी गणेश मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे, नारायण भाऊ खर्चे, नाज मंजिल मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख, कलेर बिहार से मोहम्मद आशिफ खान, बेगम निकहत परवीन, नूरमहल मेहसौल से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अविहा नाज, अरहान बाबू, समझा बाबू, मुजम्मिल बाबू, आरजेजे बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और असमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सारिमपुर बक्सर से राज एसटी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म आशा का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे शब्दों से सजाया है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में अगली चिट्ठी हमारे पास आई है टावर चौक आशापुर से। प्यारे लाल मनोहर, अमर लाल मनोहर, दुलारे लाल मनोहर, सुंदर लाल मनोहर, प्रेम लाल मनोहर, लेवाखेल मोहल्ला चांदूर विश्वासे, नारायण भाऊ विठ्ठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा शोरना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, वंदना नगर एयरपोर्ट रोड से गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश।

से पूजा बबीता शोभा रेखा रघुवंशी स्वाति प्रयाग चौधरी परी लालती खर्चे गणेश कार्तिक नारायण भाव खर्चे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म आंखें का ये गीत जिसे लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज में गाया है और साहिर लुधियानवी ने शब्द दिए हैं। रवि का संगीत निर्देशन।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है फिल्म प्रतिज्ञा के इस गीत की, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बोल आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तनेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फा

फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खर्चे, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, धनक्ष आरू साहू,

0: करती है।
1: फिल्म प्रतिज्ञा का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का हमारा ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, समय हो चला है प्रादेशिक समाचार का, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में मुख्य रूप से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों

0: पर चर्चा की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा हो रही है। युवा कार्यक्रम विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में एसोचैम, फिक्की, सीएआईटी और सीआईआई सहित प्रमुख उद्योग निकायों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत पारिस्थितिकी तंत्र से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उद्योग और माय भारत के बीच सहयोग से युवाओं की इस ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद मिलेगी। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है। इस कमेटी में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, इक पदाधिकारी और जिला संपर्क पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह समिति चीनी मिल को फिर से चालू कराने के उपायों का आकलन करेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे अधिक 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 31 पर एक बालू लदा हाईवा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से हुई लूट कांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टे, 1 देशी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसोना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक और भारी मात्रा में शराब के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर मंडल कारा में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में कैदी द्वारा आत्महत्या की जाने की बात सामने आ रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव में भूमि विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने एनएच 327 ई को जाम कर प्रदर्शन किया। समस्तीपुर जिले के तलसिंह सराय थाना क्षेत्र के चकलोमान गांव से पुलिस ने लूट के मामले में 7 साल से फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से लूट के मामले में एसटीएफ की टीम ने मधुबनी जिले के पंडोल से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक

0: 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शर्फुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। वजारत पंचायती राज आज नई दिल्ली में रियासतों के पंचायती राज वजरा के कौमी वर्कशॉप का इनेकाद कर रहा है। पंचायती राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह की सदारत में मुनक़िद वर्कशॉप में खास तौर से सुलेमी मालियाती कमीशन की सिफारिशों पर बहस की जा रही है। हमारे नामानिगार ने बताया कि वर्कशॉप के दौरान वजारत मालियात के अखराजात महकमा के जरिए जारी सुलेमी माली कमीशन के देही मकामी बल्दियात ग्रांट्स को लागू करने के रहनुमा उसूल पर बहस जारी है। महकमा यूथ प्रोग्राम ने आज नई दिल्ली में माय भारत के लिए सनती तंजीम कॉन्फ्रेंस मुनक़द की। कॉन्फ्रेंस में एसोचैम, फिक्की, CAIT और CII समेत अहम सनती अदारों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद सनती दुनिया के बहीखाहों को माय भारत सिचुएशनल मिशनरी से वाकिफ कराना और सनती तंजीम कारपोरेट और अवामी जुमरे के अदारों को इस पहल में शामिल होने के लिए मदु करना था। मरकजी वजीर खेल डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सनत और माय भारत के बीच तआवुन से नौजवानों की इस तवानाई को कौमी तरक्याती अहदाफ की तरफ रहनुमाई में मदद मिलेगी। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने आला सतही जायजा कमेटी की तश्कील की है। इस कमेटी में क्यूटी के रुकन असेंबली मुरारी मोहन झा, जिला कोऑपरेटिव अफसर, जिला एग्रीकल्चर अफसर, गन्ना अफसर और जिला राबता आमा अफसर को मेंबर बनाया गया है। ये कमेटी चीनी मिल को फिर से चालू कराने की तदाबीर का जायजा लेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल रास्ते से शुरू हो गई है। पूरे मुल्क से लाखों अकीदतमंद 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। अकीदतमंद लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर वाके अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश की पेशगोई जताई है। इस दौरान तेज हवा के साथ बर्फबारी की भी वार्निंग जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे ज्यादा 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना हलका के तहत NH 31 पर बालू से लदा एक हाईवा ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चे समेत 3 अफराद की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना इलाके में कस्टमर सर्विस सेंटर से हुई लूटपाट का खुलासा करते हुए 5 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान एक जराइम पेशा ने पुलिस पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पांव में गोली लगी। गिरफ्तार मुलजमीन के कब्जे से 2 देसी कट्टे, 1 देसी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में इस्तेमाल की गई 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अररिया जिले के जौकीहाट थाना हलका के तहत सिसौना गांव में पुलिस ने छापामारी करके 105 ग्राम नशीली अशिया, स्मैक और कसीर मकदार में शराब के साथ 2 जराम पेशों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर डिवीजनल जेल में बंद एक कैदी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इब्तदाई जाँच में कैदी के जरिए खुदकुशी की जाने की बात सामने आ रही है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज एवं न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुनिए रोजगार सूचना।

बैंक ऑफ इंडिया ने 779 पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 30/6/2026 है और अंतिम तिथि 20/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल और अधिकतम उम्र सीमा 45 साल। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है bankofindia.bank.in। SBI 2026 इसने अपने पदों की संख्या 1500 बताई है। 1500 पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 18/6/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 8/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल, अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in। रेलवे RRB टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2026 के लिए 6557 पदों की रिक्तियां हैं। इसकी आवेदन करने की शुरू होने की तिथि है 30 जून 2026 और अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 30 साल। भारत संचार निगम में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की नियुक्ति की कुल पद है 100। आवेदन शुरू होने की तिथि 4 जून 2026 और आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई यानी कि आज 2026। न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 23 साल। सूचना समाप्त हुई।

0: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 2:15 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: वेनेजुएला को मानवीय सहायता 30 की, भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश वाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव

0: तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुर

0: शामिल है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। एक बार पुनः हम उपस्थित हैं सदाबहार फिल्मी गीतों के साथ। सुनिए फिल्म तेरे नाम का ये गीत अलका याग्निक के स्वर में, जिसे शब्द दिया है समीर ने और संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का।

किशोर कुमार एवं कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर इंडिया का गीत। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत हम आपको

सुनवाएंगे फिल्म सड़क का, अनुराधा पौडवाल एवं कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत समीर एवं सुरेंद्र साथी के, और संगीत दिया है बॉबिन भट्ट ने। इससे पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। जी हां श्रोताओं, इस कार्यक्रम का 12वां अंक रविवार 5 जुलाई 2026 को दोपहर 2:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम के लिए आप रेडियो से जुड़े अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए, जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है, और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फ़ोन कॉल्स शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 से 4:30 के बीच। हमारा फ़ोन नंबर नोट करें,

करते हैं। रेडियो कब आपके जीवन में आया, कब आप एक रेडियो श्रोता बन गए? जब आप रेडियो सुनते हैं तो कैसा लगता है? और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने फ़ोन कॉल्स शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर नोट करें, 9430029353, 9400029353। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा।

फिल्म नीरजा में अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान को। गीत लिखा था प्रसून जोशी ने और संगीत निर्देशन विशाल खुराना का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दुल्हा मिल गया से। स्वर दिया है श्रेया घोषाल ने, बोल मुदस्सर अजीज के और संगीत निर्देशन जतिन ललित का।

श्रेया घोषाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आशाएं में। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया था प्रीतम ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे शाम 5 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे मैं बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हूँ अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ
0: जी,
1: मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशंस करती हूँ
0: जी। ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया, ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है
0: जी।
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलते मुझे अच्छा लगता है
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया
0: जी।
1: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं
0: जी। रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात करके।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी
0: जी जी। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो हो रही हूँ, गुजरात से।
0: आलिया बानो गुजरात से?
1: हाँ
0: जी। आलिया बानो कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: टंकी नवाते पड़ती हूँ और घर पर ही रहती हूँ, घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है।
0: हाँ वो तो है
1: ना।
0: जी जी, ये तो सहयोग परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये मुझे जी,
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना मेरी अम्मी, वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सबसे कल, मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ जाना है कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाई तरफ ये है दाई तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है, मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे के पास से जो बात कर रही हूँ ना, ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ, हमारा एक माले का घर है ना वहाँ कर रही हूँ
0: जी,
1: तो मैं नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
0: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब?
1: अपने आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना किस तरह जाना है किस तरह से आना है किस तरह आना है तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस तरह से लेती हैं?
1: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ।

0: वैसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ, लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती।
1: देखिए
0: जिस हाल में रखे उस हाल में ले लेना चाहिए।
1: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है। आपकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
0: मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का।
1: अंदाज फिल्म का
0: है ना
1: जी।
0: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
1: बिल्कुल, चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ।
0: क्या बात,
1: शायरा हूँ
0: जी।
1: जी कवित्री हूँ, मेरी किताब भी है लहरी कशिश, मेरा पेन नेम है लहरे।
0: पेन नेम है आपका लहरे?
1: लहरे। और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरी कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी
0: जी,
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में, तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
0: जी।
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं,
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये
1: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हो, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी,
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है, किनारा भी तुझमें, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हर दम, नींद ही तो टूटती है हर दम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत
1: प्यारा।
0: हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी, और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है, मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ।
0: अच्छा, यानी टिफिन सर्विस।
1: घर में खाना बनाने को जाती, मैं रोटी बनाती सिर्फ, चार पांच घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे जाके
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती।
0: अच्छा।
1: फिर बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर देती हैं कि आप जाकर
1: करने वाले हैं ना यहाँ पे।
0: जी,
1: टीचर है तो टीचर क्या है, सब काम करती मैं।
0: जी, और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो जाती हैं। जी
1: हाँ, बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
0: जी
1: नीच कमाते बस, ज्यादा करके भी अपने तबियत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ, तो भाई की ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और सकारात्मक सोच रख के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती हैं।
1: मैम, मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहना शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें

0: कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथ इंडियन फिल्म का कौन सा भी गीत सुना।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल।

0: था। आप बताइए
1: जी
0: क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है, अभी गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम,
0: जी हम आपकी खुशी
1: बयां
0: को,
1: नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: जी। सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म।
0: जी
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, ईयर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ, एक तरह से गृहिणी हूँ।
0: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादा।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, ये पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ हमेशा
0: जी
1: जिंदगी में
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन से सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही हैं वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ
0: वैष्णवी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन से सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही हैं वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: सेवेंथ
0: की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी, मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो हाँ। सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती
1: हाँ।
0: हैं? क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है। खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ हाँ
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा।
1: हाँ।
0: तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। तो विजय जी अपने बारे में कुछ बताइए।
0: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
1: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं।
0: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
1: तो विजया जी मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
0: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
1: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
0: और की। इतना उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
1: क्योंकि आप टीचर,
0: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
1: जी,
0: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
1: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
0: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं
1: जी,
0: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं
1: जी,
0: इतना तोड़ डालते हैं कि ता उम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते
1: जी।
0: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है
1: जी।
0: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें
1: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारी सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
0: नहीं ठीक है, तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख
1: जी।
0: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा
1: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए,
0: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्धर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं
1: जी। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
0: ममता फिल्म का रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
1: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से दी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर।
0: जी शांति जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ, घर ही रहते हैं कुछ
0: जी
1: नहीं। हाँ।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना?
1: हाँ।
0: जी, घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आपको?
1: और मैम, मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है?
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से, सुनती रहती, काम भी करती रहती।
0: हाँ, तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना?
1: हाँ जी जी
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए निकाह पिक्चर का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288। 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
1: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा, वो उस अंधेरे की आदी थी। वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो।

पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहां तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहां लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहां की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहां पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती। किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी मां को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां मां बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हां, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहां वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहां मुझ पाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती है।

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर सिंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाते। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहां खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आंच महसूस करती और इस आंच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी, लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां। नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें, चंदा ने हुंकारा भरा। हाँ, ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया, उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा, उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ, थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक, प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती, राग रंग में मन नहीं लगता, तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ, ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागू थी, उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने

आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमन

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फली रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा हर औरत एक बुत ही तो है, महज मुस्कुराती हुई। क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

इस वक्त आकाश की याद में है बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरजते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा, तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी प्रकृति ही प्रेम?

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहां जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में, वो सोचने लगता है। स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भ्रम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है।

कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है, उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं, उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी। उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी।

आकाश, ये बुत देख रहे हो ना, ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत, ऐसा गला कहां से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी

हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा? कैसा किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं? वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी दूसरी यानी सांध्यकालीन सभा। सभा की शुरुआत में सुनते हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत तरुण कुसुम।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम तरुण कुसुम में। श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो मित्र भवेश। स्वीकार करें मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं कुमकुम झा के गाए इस देवी गीत के साथ।

श्रोता अभी सुन रहे थे विवासिना को। उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को ये महेशवाणी पसंद आया होगा। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं वन संरक्षण के बिना पर्यावरण संतुलन तो खतरे में है ही, दिन ब दिन हमारा जीवन भी आसान नहीं रहने वाला है। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06272224181 एवं 9430029353। समय याद रखें रविवार 5 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे ममता ठाकुर को। अगली प्रस्तुति विभासिना के स्वर में।

हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।

शारदा सिन्हा के गाए इस प्रस्तुति के साथ ही घड़ी की सुई अब इशारा करते हुए कि आप श्रोताओं से कार्यक्रम तरुण कुसुम में आज के अंक से विदा लेने का वक्त हो चुका है, तो दीजिए आज्ञा अपने रेडियो मित्र भवेश को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

निहाल ताउरो को अभी आप सुन रहे थे फिल्म रक्षाबंधन में। इरशाद कामिल के लिखे इस गाने को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने।

किसी का भाई किसी की जान। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे कमाल खान और पलक मुच्छल की आवाजों में। शब्बीर अहमद के लिखे इस गाने को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

बैड बॉय फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, पायल देव, राज बर्मन और आकृति मेहरा की आवाजों में। शब्बीर अहमद के लिखे इस गाने को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने।

0: बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा, अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ों में। फिल्म संगीत पुनः आप सुनेंगे शाम 7:52 पर। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारे सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के

0: के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र।

अब श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे संध्या 6:10 पर हफ्तावार जायजा। विद्यापति गीतों का समय होगा संध्या 6:15 पर। इसके तुरंत बाद हम आपको सुनवाएंगे मैथिली संवाद संध्या 6:25 पर। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे हमारा सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे नन्हा मुन्ना राही, खेती गृहस्थी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00।

कुछ फिल्मी गानों का आनंद आप लेंगे शाम 7:52 पर। इसके तुरंत बाद रात 8:15 पर समय होगा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहाट का।

साहित्य की का प्रसारण समय होगा रात 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, वन संरक्षण के बिना पर्यावरण संतुलन तो खतरे में है ही, दिन ब दिन हमारा जीवन भी आसान नहीं रहने वाला। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान, मारवाड़ी कॉलेज

दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06-272-222-481 एवं 943-00-29-353। समय याद रखें, रविवार 5 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है हफ्तावार जायजा।
1: सामीन आदाब, पेश है हफ्तावार जायजा। गुज़श्ता हफ्ता मिथिला और कोसी के खित्ते में मजहबी, समाजी, सकाफ़ती और तरक्याती सरगर्मियों के एतबार से खासा अहम रहा। एक जानिब यौम आशूरा के मौके पर हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को याद किया गया, तो दूसरी जानिब पंचायत विकास दिवस, पल्स पोलियो मुहिम, ख्वातीन के इस्तेहकामकारी, देही तरक्की और सकाफ़ती विरासत से मुतालिक मुतअद्दद प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया गया। सबसे पहले जिक्र यौम आशूरा का। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में यौम आशूरा की रसूमात अकीदत व एहतराम के साथ इख्तिताम पज़ीर हो गईं। देही तरक्की और पंचायती राज इदारों को मजबूत बनाने के मकसद से गुज़श्ता हफ्ते में पंचायत विकास दिवस मनाया गया। दरभंगा की मरकज़ी तकरीब हयाघाट ब्लॉक के आनंदपुर सहोरा मिडिल स्कूल में मुनाकिद हुई, जिसमें बिहार के वज़ीर बराए सड़क तामीरात और ज़िला के इंचार्ज वज़ीर कुमार शैलेंद्र और वज़ीर बराए जंगलात व माहौलियात रामचंद्र प्रसाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि गाँव की तरक्की में पंचायती राज इदारों का किरदार नहायत अहम है और मकामी सतह पर अवामी शिरकत से ही तरक्याती मंसूबों को मुअस्सर अंदाज में नाफिज किया जा सकता है। इधर मधुबनी के झंझारपुर ब्लॉक की महिनातपुर पंचायत से इस प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस मौके पर वजीर लेशी सिंह ने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध भारत का ख्वाब उसी वक्त शर्मिंदे ताबीर हो सकता है जब पंचायतें तरक्की की मरकजी धारा से जुड़ें और हुकूमती स्कीमों का फ़ायदा मुअस्सर अंदाज में गाँव तक पहुँचे। सीतामढ़ी और शिवहर में भी पंचायत विकास दिवस के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। सीतामढ़ी की मथुरा पंचायत सरकार भवन में खिताब करते हुए ज़िला मजिस्ट्रेट रिची पांडे ने कहा कि ख़वातीन की इस्तेहकामकारी से ही ख़ानदान, समाज और पंचायत मजबूत हो सकते हैं। देही तरक्की और रोज़गार के फ़रोग के लिए मधुबनी के लदनिया ब्लॉक और दरभंगा ब्लॉक की शीशो पंचायत में विकसित भारत योजना के तहत वर्कशॉप और तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। मुकर्ररीन ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए पंचायतों का किरदार नहायत अहम है और तरक्याती मंसूबों के नफाज में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाना होगा। समाजी बेदारी के मैदान में भी कई काबिल ज़िक्र सरगर्मियाँ देखने को मिलीं। सुपौल की 11 पंचायतों और सीतामढ़ी के 17 ब्लॉकों में जीविका दीदियों ने प्रभात फेरी निकालकर मंशियात से पाक समाज का पैगाम दिया और आवाम को नशे के मुदिर असरात से आगाह किया। सेहत आम्मा के शोबे में गुज़िश्ता हफ्ते 5 रोज़ा पल्स पोलियो मुहिम जारी रही, जो 2 जुलाई को मुकम्मल हुई। दरभंगा, मधुबनी और दीगर अजला में लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव की हिफाजती खुराक पिलाई गई। मधुबनी ज़िला में 6.49 लाख का हदफ पूरा किया गया। सकाफ़ती और रूहानी सरगर्मियों के तहत समस्तीपुर के रोसरा वाक़े संत कबीर मठ में संत कबीर जयंती मनाई गई। मुकर्ररीन ने कहा कि संत कबीर ने ज़ात पात, ऊंच नीच, मजहबी ज़ाहिरदारी और समाजी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए मोहब्बत, इंसानियत, सच्चाई और खैर सगाली का पैगाम दिया। तकरीब के दौरान भजन कीर्तन और कबीर वाणी का पाठ भी किया गया। इधर 30 जून को बाबा नागार्जुन के आबाई गांव

0: विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना शारदा सिन्हा और सूर्यनारायण यादव को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे मैथिली संवाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। पंचायती राज मंत्रालय आइ नव दिल्ली मे राज्य सभक पंचायती राज मंत्री लोकनिक राष्ट्रीय कार्यशालाक आयोजन कयलक। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहक अध्यक्षता मे आयोजित कार्यशाला मे मुख्य रूप सँ 16वां वित्त आयोगक सिफारिश पर चर्चा भेल। हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे एहि कार्यशाला मे वित्त मंत्रालयक व्यय विभाग द्वारा जारी 16वां वित्त आयोगक ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान के लागू करबाक दिशा निर्देश पर चर्चा भेल। युवा कार्यक्रम विभाग आइ नव दिल्ली मे माई भारत लेल उद्योग संघ सम्मेलनक आयोजन कयलक। सम्मेलन मे एसोचैम, फिक्की, सीएआईटी आ सीआईआई समेत प्रमुख उद्योग निकाय भाग लेलक। एहि कार्यक्रमक उद्देश्य उद्योग जगतक हितधारक के माई भारत पारिस्थितिक तंत्र सँ परिचित करायब आ उद्योग संघ, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के एहि पहल मे सम्मिलित हेबाक लेल आमंत्रित करबाक छल। केंद्रीय युवा कार्यक्रम आ खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहलनि जे उद्योग आ माई भारतक मध्य सहयोग सँ युवा सभक एहि ऊर्जा के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य दिस निर्देशित करय मे मदति भेटत। दरभंगा जिलाक बहादुरपुर प्रखंड मे 385 एकड़ भूमि पर नव औद्योगिक क्षेत्र विकसित कयल जायत। एहि वास्ते भूमि चिन्हित कयल गेल अछि। मध्य निषेध मंत्री मदन सहनी दरभंगा मे आयोजित एक कार्यक्रम मे ई जनतब देलनि। ओ कहलनि जे औद्योगिक क्षेत्र विकसित हेबा सँ निवेश के बढ़ावा भेटत आ स्थानीय स्तर पर रोजगारक अवसर सृजित होयत। दरभंगाक रैयाम चीनी मिल के फेर सँ चालू करबाक लेल जिलाधिकारी कौशल कुमारक उच्चस्तरीय समीक्षा समितिक गठन कयलनि। एहि कमिटी मे केवटीक विधायक मुरारी मोहन झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, ईक पदाधिकारी आ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सदस्य बनाओल गेल छथि। ई समिति चीनी मिल के फेर सँ चालू करबाक उपाय लेल आकलन करत। मौसम विभाग आइ प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे आंशिक वर्षा हेबाक पूर्वानुमान व्यक्त कयलक अछि। एहि क्रम मे तेज हवाक संग ठनका खसबाक चेतावनी सेहो जारी कयल गेल अछि। पछिला 24 घंटा मे मुंगेर सदर मे सबसँ बेसी 20.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कयल गेल। भागलपुर जिलाक भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक बालू लादल हाईवा ट्रक अनियंत्रित भऽ कऽ सड़क कात झुग्गी झोपड़ी पर उनटि गेल। एहि दुर्घटना मे दू बच्चा समेत 3 गोटेक मृत्यु भऽ गेलनि, जखनकि 1200 बेसी व्यक्ति घायल छथि। घायल सभ के उचित इलाज लेल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि। सीतामढ़ीक पुलिस रीगा थाना क्षेत्र मे ग्राहक सेवा केंद्र सँ भेल लूटकांडक खुलासा करैत 5 आरोपी के गिरफ्तार कयलक अछि। पुलिस सूत्रक अनुसार गिरफ्तारीक क्रम मे एक अपराधी पुलिस पर फायरिंग कऽ भागबाक प्रयास कयलक, जकर

जवाब में पुलिस द्वारा कयल गेल कार्रवाई में ओकर पैर में गोली लागल। गिरफ्तार अपराधी लोग सँ दू देशी कट्टा, दू कारतूस आ लूट में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद कयल गेल। दोसर दिस वैशाली आ समस्तीपुर जिलाक सीमा क्षेत्र स्थित बंगरा थाना क्षेत्रक बलगांव में अपराधक योजना बना रहल किछु अपराधी के पुलिस खेहारलक। एहि क्रम में एक अपराधी पुलिस पर गोली चला देलक, जकर जवाब में पुलिस द्वारा चलाओल गेल गोली सँ एक अपराधी घायल भ गेल। मामला में दू अपराधी के गिरफ्तारी भेल अछि। दरभंगा में पछिला दिन एक आभूषण दोकान में भेल लूटक मामला में एसटीएफक दल मधुबनी जिलाक पंडौल सँ एक आरोपी के गिरफ्तार कयलक अछि। एहि मामला में एखन धरि 14 अभियुक्तक गिरफ्तारी भ चुकल अछि। ओतहि समस्तीपुर जिलाक दलसिंहसराय थाना क्षेत्रक चकलोमान गाम सँ पुलिस एक लूटक मामला में 7 साल सँ फरार एक आरोपी के गिरफ्तार कयलक अछि। मैथिल ब्राह्मणक विश्व प्रसिद्ध वैवाहिक निर्धारण स्थल सौराठ सभा में आई वर आ कन्या पक्षक दिस सँ 7 सिद्धांत कराओल गेल। काल्हि सँ शुरू भेल ई सभा 12 जुलाई धरि आयोजित कयल जायत। सहरसा जिलाक सलखुआ थाना में थानाध्यक्षक साठगांठ सँ दलाली करय वाला दलाल के गिरफ्तार कयल गेल अछि। एहि मामला में कोशी प्रक्षेत्रक DIG कुमार आशीष 10 पुलिसकर्मी के निलंबित कऽ देलनि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घर अंतर्गत नन्हा मुन्हा राही सुननिहार समस्त श्रोतागण का आशुतोष कुमार झा दिस स्वागत आ नमस्कार। संगे ही नमस्कार देवू भाई।
1: नमस्कार नमस्कार आशुतोष भाई। संगे समस्त श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार।
0: यो उजका दिन तो बेहाल के नहीं है गर्मी से।
1: हयो अहाँ ठीक कहे ते दुआरे देख रहा टप टप अहाँ के पसीना चू रहा।
0: गमछा रखने छी तैयो देखियो तो पंखा का सुनवाई नहीं लग रहा है।
1: देखियो मासे एहन है मास में जो आशुतोष भाई जो सचेत भ के नहीं रह अखिनका जो समय है ना कखनो में कखनो ठंडा तो कखनो गर्मी आ जो उतार चढ़ाव जो हो माने तापमान के
0: ठीक है
1: जे स्वास्थ्य के लिए बड़े अहाँ के क्षति पहुँचा सकते
0: ते
1: दुआरे सचेत भ के रहू जागरूकता भ के रहू जो कतो जा रहल छी त छतरी के व्यवहार करू।
0: निश्चित रूप से और संगे संग हम इहो कहब जखन भोज भात बेसी भ रहल छे त कनी खेनाइयो पर ध्यान देना है आवश्यक छे। मास एहन अछि जे अहाँ के हम त देख रहल छियनि बच्चा के काहिठम गेल रहौं कहैत रहथिन जे पेट जे है से गर्मी आयल अछि। मतलब अपना सबके खान पान एहन हेबाक चाही जे अपना सबके शरीर भीतरों से ठंडा महसूस करे।
1: ठीक है कहलो आशुतोष भाई। ओना देखियो हे तनि भोज भात में लोग देखे छियन जे श्रोता लोकन के तनि बेसी से बेसी सोह तनि डोज लो ले छथिन लेकिन समय के अनुकूल अखनका जो समय है ना जे समय के अनुकूल हमारा लोकन के भोजन लेबाक चाहिए। जना अखन मौसमी तिमन तरकारी भेल मौसमी फल फूल हरी भेल दही भेल दही के छाँच भेल एकर सबके जो छे हमारा लोकन के खास कर व्यवहार लेबाक चाहिए। ककड़ी भेल तरबूजा भेल
0: बस यह गप हम कह चाहे छी जे गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहबाक लेल संतुलित और पौष्टिक भोजन के सेवन केनाय आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीबी नेबो पानी छाछ नारियल पानी और जे ताजा फल का रस हुए ओकर पेय के सेवन सेहो करी। तरबूजा खरबूजा खीरा ककड़ी एहन मौसमी फल आ तरकारी के अपना सबके भोजन में अब

0: से शामिल करी। खाली बस या बहुत बेसी जे भूजल हुए तरल हुए और मसालादार भोजन से एखुनका समय में बची, संगे संग स्वच्छ और ताजा भोजन अपनिया, संगे ही नियमित खान पान का आदत जे है ओकरो विकसित क के अपना सब गर्मी के दुष्प्रभाव से बच सके।
1: आशुतोष भाई ठीक है कहलो है, संग संग जो है हमारा लोकन का जे मौसम के अनुकूल जे तेल मसाला से बचबाक चाही, ज्यादा तेलगर मसालादार भोजन सेवन नहीं करी, तो ई सब जहन स्वास्थ्य निक रहत तखने अहाँ कोई काज करे में मनो अहाँ के लगत। आशुतोष भाई आई हमारा लोकन गप सप करब, एक हमारा लोकन जे आई धियापुता के कार्यक्रम ल के आबे छी, तो आई कार्यक्रम में आई हमारा लोकन जे गप सप करब जे ऑनलाइन परीक्षा के लेल जे धियापुता अपन पाठ्यक्रम के कोना तैयारी करथिन, जैसे उनका जो छे लक्ष्य के जो छे
0: प्राप्ति आसानी से भ सकन। ठीक है कहलो हूँ, एखुनका समय में तो अपना सब देख रहल छी जे ऑनलाइन परीक्षा लगातार भ रहल अछि और अइ में जे छे से एकर पाठ्यक्रम केना नीक हुए जैसे कि अपना सबके परीक्षा बढ़िया जाए और अपना सबके सफलता भेटे, एकर तैयारी देवू भाई अपना सबके प्रारंभे से करो पड़त
1: छे ना। तै दुआरे पाठ्यक्रम पर ध्यान देबाक देना सबसे महत्वपूर्ण काज है। सटीक अध्ययन, डिजिटल उपकरण सदखन अभ्यास से धियापुता के निक रिजल्ट प्राप्त भ सकत है। अल आशुतोष भाई जे धियापुता के सदखन प्रयास करते रहबाक चाही
0: सदैव सदैव।
1: हाँ हाँ, जेना पाठ्यक्रम के विश्लेषण परीक्षा से पहिने सबटा पाठ्यक्रम के निक जका समझबाक चाही, बुझबाक चाही, जे विषय में अहाँ कमजोर छी ओहि विषय में बेसी
0: बेसी जोर समय देबाक एकदम ठीक कहलहुँ हँ। जे हमरा अहाँ के कमजोर स्थिति अछि, विषय अछि, ओहि पर अपना सब विशेष रूप से ध्यान दऽ सकै छी, कियाकि अपन कमजोरी तो अपने बेसी बुझबे नहि। और देवू भाई वर्तमान समय में अपना सब देखै छी जे शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी के महत्व लगातार बढ़ि रहल अछि नहि, और अहाँ कहबे कयलहुँ हँ जे डिजिटल माध्यम के विस्तार के संगे ही संग ऑनलाइन परीक्षा के चलन सेहो तेजी से बढ़ल है। चाहे विद्यालय स्तर के परीक्षा हो, प्रतियोगिता परीक्षा हो या कोनो प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन, ऑनलाइन परीक्षा आब विद्यार्थी के लिए एकटा सामान्य प्रक्रिया बनि गेल अछि। एहन में केवल परीक्षा देनाइए पर्याप्त नहीं अछि, बल्कि नीक सफलता प्राप्त करबाक लेल विद्यार्थी के अपन निर्धारित पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देनाइ सेहो आवश्यकता छनि, कियाकि ऑनलाइन परीक्षा में सफलता के सबसे पैघ आधार नियमित अध्ययन और पाठ्यक्रम के पूर्ण तैयारी अछि।
1: ठीक है कहलहुँ हँ, संग संग जो है समय सारणी के सेहो हमरा लोकनि के ध्यान रखबाक चाही।
0: ठीक है कहलहुँ,
1: ओहिला एकटा रूटीन बनाबी आ पाठ्यक्रम के अध्ययन करैत काल टेलीविजन सोशल मीडिया से दूर रहबाक चाही,
0: दूरी बना कर राखी,
1: ओतबे नहि ध्यान को विचलित करे वाला तत्व से सेहो दूर रहबाक
0: निश्चित, जे कोनो चीज हमरा अहाँ के ध्यान के विचलित कऽ सकैत अछि ओहि सबटा से दूरी तो कनी बनबैये पड़त।
1: संग संग सक्रिय शिक्षण, तनाव मुक्त वातावरण और समय प्रबंधन के हमरा लोकन के खास कऽ के ध्यान रखबाक चाही। आशुतोष भाई बेर रह त फेर आगू गपशप करब, मुदा लै छी छोट सन विराम।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। परुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था, पहले हम लोग वो काम किए। इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
4: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत

0: आभार प्रकट करते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: क्षणिक विराम के बाद श्रोता लोकन के एक बेर फिर स्वागत छन नन्हा मुन्हा राही में। बड़ा निक गप कह रहा छो अपना सब जे ऑनलाइन परीक्षा में सफलता केना प्राप्त करी, तेकर सफलता का सबसे पैघ आधार अपना सब गप में कहबे के लिए जे नियमित अध्ययन और पाठ्यक्रम का पूरा तैयारी है। कई एक बेर दिबू भाई विद्यार्थी ये सोच कर लापरवाही कह दे छे जे ऑनलाइन परीक्षा अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन वास्तव में ऑनलाइन परीक्षा में समय का सही प्रबंधन, विषय के गहीर समझ और जल्दी से जल्दी निर्णय लेवाक क्षमता बहुत बेसी महत्वपूर्ण होइत अछि। ताहि कारणे प्रत्येक विद्यार्थी के परीक्षा के तिथि से पहले पूरा पाठ्यक्रम का व्यवस्थित अध्ययन करवाक चाही।
3: ठीक है कहलो आशुतोष भाई, जे समय प्रबंधन जो छे ना परीक्षा के घड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण,
2: बहुत बेसी
3: ताहि दुआरे परीक्षा काल के समय जे प्रबंधन विशेष रूप से जे धियापुता के रखबाक चाही, संग संग ओहि लेल जो छे सामने में घड़ी रख कर मॉक टेस्ट हल करबाक चाही, ताकि परीक्षा काल में समय के कमी नहीं भ सके।
2: बहुत निक अहाँ कहलहुँ हँ जे ऑनलाइन परीक्षा में समय के विशेष महत्व होइत अछि, ताहि कारणे विद्यार्थी के मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और पिछला वर्ष के जे प्रश्न पत्र का अभ्यास अछि ओहो करबाक चाही। एहिसँ प्रश्नक प्रकार, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास में वृद्धि होइत अछि।
3: होइ छै कि धियापुता के देखे छन कि एकटा क्वेश्चन में लागल रहै छथिन, यहाँ समय बीतल जाय छै, उधर वार्निंग घंटी के सेहो जो छै घंटी लग जाय छै, ओहन में होइ छै कि आन जो क्वेश्चन हम बनाए ओहो में जो छै से मगर जो छै त्रुटि आबि जाय छै,
2: त्रुटि आबि जाय छै, छूट जाय छै,
3: आ जहन छुटला के बाद बहुत रास जो छै मन में तनाव होइ लगै या।
2: ठीके कहलौं यौ देवू भाई, केवल पढ़नाइए पर्याप्त नहीं छै, बल्कि एकरा बेर बेर पुनरावृत्ति करनाय सेहो आवश्यक छै। एहिसँ विषय के नीक समझ अपना सब में विकसित होइत अछि और परीक्षा के समय अपना सब के उत्तर मुन सेहो पड़ि जाइए ने।
3: हाँ, हाँ।
2: लगातार ई नहि कि ई विषय के तैयारी भऽ गेलै, अरे ढेर समय छै तो दोबारा तिबारा चौबारो पढ़ि सकै छी ने।
3: संग संग जे छै समय कहलौं ने, समय प्रबंधन सबसे बड़ी पैघ चीज छै कि हमरा लोकन के समय के अनुकूल, समय के सारणी के अंतर्गत जे छै हमरा लोकन के जो छै कोनो
2: बान्हल जे छै ओकरा अंतर में रह के काज
3: करबाक चाही, कि कते समय में हमरा कते क्वेश्चन जो छै
2: बना सकै छी,
3: हम द सकै छी, ई चीज के विशेष रूप से जखन ध्यान रखब
2: तखन
3: अवश्य अछि जे नीक रिजल्ट आयत
2: और सफलता अपना सबके भेटबे करत। और संगे संग पाठ्यक्रम के तैयारी अपना सब करबे करै छी, एकरा संग तकनीकी तैयारी सेहो ओतबे आवश्यक अछि। देबू भाई, परीक्षा से पहले ये सुनिश्चित कह ली जे मोबाइल, लैपटॉप व कंप्यूटर सही ढंग से काज कर रहा है कि नहीं, इंटरनेट कनेक्शन स्थिर है कि नहीं, डिवाइस पूरा तरह चार्ज हो और आवश्यक ऐप या ब्राउजर पहले से तैयार हो। देवू भाई, परीक्षा के समय तकनीकी समस्या हेवा पर अनावश्यक तनाव उत्पन्न भऽ जाइत अछि, जैसे प्रदर्शन जे है सेहो प्रभावित होइए, विद्यार्थी के डर भऽ जाइ छै ने, और बहुत काल अपना सबके बैसऽ पड़ैए, एहि दुआरे स्वास्थ्य का ध्यान रखनाय सेहो परीक्षा के तैयारी के एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा अछि। पर्याप्त नींद ली, पौष्टिक भोजन करी, नियमित रूप से पानि पीबैत रही और देर राति तक जगवा और अंतिम समय में बहुत बेसी पढ़ाई करवा से बची। ई नहि कि बड़ बेसी काल तक अपना सब लगातार पढ़ित रह गेलौं, नींद आबैया ओकरा रोक लेलौं, तो ऐसे अपना सब को याद हो जाए।
3: स्वास्थ्य पर जो
2: स्वास्थ्य का ध्यान दी, मानसिक स्थिति के ध्यान दी, जे थाकल नहीं छी तखने मुन ओकरा स्वीकार करत की।
3: आ जो आई तरह हमारा लोकन आशुतोष भाई जहन धियापुता इस तरह परीक्षा के तैयारी करथिन,
2: निश्चित
3: माने किताब के जो छै माने सतखन कीड़े बन गेलै सेहो नहीं,
2: एकदम नहीं,
3: माने हर एक दू घंटा पर जो छै ओकरा ब्रेक देबाक सेहो चाही, तन घूम लेबाक,
2: नियमित अंतराल पर अपना सबके सबटा काज करबाक चाही और संगे संग ऑनलाइन परीक्षा के दौरान ईमानदारी और अनुशासन के पालन केनाय सेहो बहुत बेसी आवश्यक अछि। कोनो प्रकार का अनुचित साधन का प्रयोग नहीं केवल नियम का उल्लंघन है, बल्कि ई विद्यार्थी के नैतिक विकास पर सेहो नकारात्मक प्रभाव देत है। अपन मेहनत और ज्ञान का आधार पर परीक्षा देनाइए जे है ओ सत सफलता का मार्ग है। अभिभावक आ शिक्षक के सेहो एकटा महत्वपूर्ण भूमिका होइ छै, ओ बच्चा के सकारात्मक वातावरण प्रदान करत, अनावश्यक दबाव हुनका सब पर नहीं बनो देथिन और समय समय पर हुनकर उत्साह वर्धन सेहो करैत रहबाक चाही और सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से विद्या

विद्यार्थी अपन क्षमता के अनुरूप उत्कृष्ट प्रदर्शन कऽ सकै छथि। देवू भाई, अंत में हम यह कहब जे ऑनलाइन परीक्षा में सफलता के कोनो शॉर्टकट नहीं है। नियमित अध्ययन, पाठ्यक्रम के गहीर तैयारी, समय प्रबंधन, निरंतर अभ्यास, तकनीकी सजगता और आत्मविश्वास सफलता के असली कुंजी है। यदि विद्यार्थी पूरा मनोयोग से अपन पाठ्यक्रम पर ध्यान दैत और अनुशासित ढंग से तैयारी करत, त ओ नहीं केवल ऑनलाइन परीक्षा में नीक अंक प्राप्त

0: यदि विद्यार्थी पूरा मनोयोग से अपन पाठ्यक्रम पर ध्यान दैत और अनुशासित ढंग से तैयारी करत त ओ नहि केवल ऑनलाइन परीक्षा में नीक अंक प्राप्त करता बल्कि अपन उज्ज्वल भविष्य के लेल मजबूत नींव सेहो रखता की
1: हाँ छैये कि
0: त बच्चा सब के केवल गपे सब नहि नीक लागै छै देवू भाई
1: बुझि रहल छी अहाँ गप आशुतोष भाई त केक नेकटा धियापुता के बालगीत सुना दियन
0: सुनल जाए

0: चंदा मामा आओ आओ। मृदुला मिश्रा और संगी सहेली के स्वर में अपना सभी सुंदर संगीत का आनंद ले लूं। और देवू भाई आब बेर भ रहा है जे बच्चा सब को लो चलिए स्कूल दिस
1: तो आओ। हमारा लोग सुने छे जे उत्कर्मित मध्य विद्यालय गौसा घाट दरभंगा के धियापुता के मुख से हमारा लोग कार्यक्रम सुने छे किसले
0: सुनल जाए
2: धियापुता जय।

0: बहुवा पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतं चौधनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में राखल विद्या आ दोसर के हाथ में गेल धन ई दुनू जरूरत के समय कखनो अपना सभा काज नहीं आबैत अछि। आजुक किसलय कार्यक्रम अछि उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौसा गौसाघाट से। एतो बहुत रास धियापुता बैसल छथि आ बहुत किछु सुनाबे चाहे छथि तो आब हिनके सबसे गपशप करी। बुआ की नाम छी अहाँ का?
1: श्वेता कुमारी।
0: आजुक कार्यक्रम अहाँ की सुनाबे चाहे?
1: गीत
0: सुनाओ।
1: हम आनंदे रहबैया बम्भो लाके दरबार।

चरिम मंगई छी रूप हम आनंदे रहबै कथी ले मंगनो अने।

0: पु त्रिहरि हरि दानि करैल अन्य धन लक्ष्मी कर्म करै लु धर्म करैल निर्मल काया धर्म करैल निर्मल काया देखबै स्वरूप हम आनन्दे रहबैया।
1: की नाम छी अहाँके?
2: राजिया परवीन।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
2: राष्ट्रीय गीत
1: सुनाओ।
2: मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन।

0: अरे वंदे मातरम।
1: बुआ की नाम छी अहाँ का?
2: मोहम्मद किस्मत।
1: आज कार्यक्रम अहाँ की सुनाबे चाहे छी?
2: राष्ट्रीय गीत
1: सुनो।
2: मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशान है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
1: बुआ की नाम छी यहाँ का?
3: एलम फातिमा।
1: आज कार्यक्रम अहाँ की सुनाबे चाहे?
3: ट्विंकल ट्विंकल
1: सुनो।
3: ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द

0: Nabi.
1: बुआ की नाम छी अहाँके?
2: गुलाबशाह परवीन।
1: आजुक कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबै चाहै छी?
2: राष्ट्रगीत
1: सुनो।
2: ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरी कदमों पे हम भेंट अपने सरों के चढ़ा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरी कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे।
1: बुआ की नाम छी अहाँके?
3: मुसहरा खातून।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबै चाहै छी?
3: राष्ट्रीय गीत
1: सुनो।

0: प्यारा।
1: वो की नाम छी अहाँ?
2: मोहम्मद सलमान।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबा चाहे छी?
2: कविता
1: सुनाओ।
2: जहाँ नहीं मैसूर वाला के गौन में गुथा जाऊ, जहाँ नहीं प्रेमी माला में प्यारी को लल चाहूँ, जहाँ नहीं देवो के सिर पर चटू भागे पर इटला, मुझे तेल लेना बनवाली देना उस पर तो तुम फेक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक।
1: वो की नाम छी अहाँ?
3: राजिया परवीन।
1: आज कार्यक्रम में अहाँ की सुनाबा चाहे छी?
3: राष्ट्रीय गीत
1: सुनाओ।
3: ए वतन।

0: जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रही तू।
1: बउआ श्रावस्ती का हाथी अपन ताकत बहादुरी आ लड़ाई के मैदान में अरल रहबाक लेल बहुत बेसी प्रसिद्ध छल। श्रावस्ती के राजा ओकर पीठ पर बैस के बहुत रास लड़ाई जीतलनि आ अपन राज्यक विस्तार कयलनि। एक दिन जंगल भ्रमण के दौरान पैर फिसलबाक कारणे ओ हाथी एकटा दलदल वाला डबरा में फंसि गेल। साँझ होते महल में हाथी के खोज प्रारंभ भ गेल। सैनिक सब ओकर पैरक

0: किसान ताकत ताकत डबरा तक पहुँचला आ ओत पहुँचला के बाद बाँसक फट्ठा आ रस्सी सभक सहायता से सब गोटे ओकरा निकालबाक बहुत प्रयास सेहो कयलनि, मुदा सब गोटे असफल भ गेला। हाथी सेहो फसल लाचारी के नोर बहाव लागल। जखन राजा तक ई समाज पहुँचल तखन ओ दौड़ले जंगल अला आ स्थित देखला के बाद आदेश दलन जे नगारा आ तुरही एहन बाजा सब आनि के जंगल के बाहर बजाओल जाए। अहिना कयल गेल। अपन आदत के अनुसारे हाथी जखन युद्धक रणभेरी आ नकारक तुमुल ध्वनि सुनलक जोर के चिंघार लगाबैत एकटा भारी प्रयासक संग दलदल के ओ बाहर आबि गेल। जखन राजा से पूछल गेल तखन ओ हंसत बजला जे बस हम ओकर मूल स्वभाव के ओकरा याद दिया देलिए। कहबाक तात्पर्य यह जे एकटा नीक आदर्शवादी व्यक्ति आ रोल मॉडल सेहो यह करै छथिन, ओ गुरु होत वा माता पिता या आनो कोनो विशिष्ट व्यक्ति, हुनकर यह कार्य छन जे अपना सबके मोन पारने रहत जे प्रत्येक मनुष्य में बेस क्षमता आ असीम शक्ति नुकायल रहे छे। हुनके सबक प्रेरणा अपना सबके उत्साहित करैत अछि आ संगहि सफलता प्राप्त करबा में सेहो सहायता करैत अछि।
1: एकरे संग हम आजू कार्यक्रम के विराम दै छी। एक बेर फेर एहि विश्वासक संग विदा लै छी जे फेर भेंट होयब अगिला शुक्र दिन अहिना कोनो आन विद्यालय के बच्चा के मुख सँ किस लायक सर
2: धियापुता जय।

0: हाँ आशुतोष भाई, अखन हमरा लोकन उत्कर्मित मध्य विद्यालय गौसाघाट के धियापुता के मुख्य ई हमरा लोकन किसले सुन रहा छल संकलन वाचन आ निर्माण में सहयोग छल आशुतोष कुमार झा और प्रस्तुति असद दाऊद के एक संग कार्यक्रम
1: और नन्हा मुंडा राही के बेर से हो आप संपन्न हो गया है। तो अपना सब आप जो बच्चा बुच्ची छथि हुनका से विदा ली और खेती गृहस्थी में अन्नदाता किसान लोकन के अपना सब स्वागत करियन। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: हमहू स्वागत करे छे, नमस्कार करे छे। अब आशुतोष भाई,
1: हाँ हाँ,
0: अब हमारा लोकन के तनी बात बंदी से हमारा लोकन के चलना
1: चाहिए। ठीक है, कहलो बिना एकरे गुजारो नहीं है यू।
0: हाँ हाँ, तो तें दुआरे हमार सबक जे देश है वो अर्थ पर माने कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में जे हमारा लोकन के जे अनेको तरह जे नाना प्रकार के तीमन तरकारी के अन्न पानी के जो भोग करे छी।
1: हाँ हाँ,
0: जे हमारे किसान श्रोता लोकन के ही पाके करे छी।
1: ठीक है कहलो।
0: तो आई हमारा लोकन सबसे पहने होना तो सब तरहक जे छे तीमन तरकारी अन्न पानी उपजाबे छी, मुदा समय समय पर जो छे हमारा लोकन के जो छे जे तीमन तरकारी के तो लगाबे छी, मुदा ओकरा रख रखाव कोना करबाक चाही, कोनो तरह कीट व्याधि से कोना बचाबी
1: बचाबी,
0: एहि पर आई हमारा लोकन जे गप करब जे शरद कालीन बैगन के उन्नत खेती ना समयो सेहो अछि जे खरीफ मास जो छे खरीफ मास में हमारा लोकन लगाबे छी, तो कोना एकर रख रखाव करी, कोना एकर देख रेख करी, आई एहि पर हमारा लोकन विशेष रूप से गपशप करब।
1: देवू भाई बड़ा नीक अहाँ चर्चा के विषय चलौ हँ। ओनहियो भाटा जे अछि यानी बैगन अपना सबके एक प्रमुख तरकारी फसल में से एक एकर खेती बर्ख भर विभिन्न मौसम में कैल जाता है, लेकिन शरदकालीन बैगन के खेती किसान भाई के लेल बेस लाभप्रद मानल जाए छन, कियाकि एही मौसम में पौध के वृद्धि निक होत और बाजार में एकर मांग सेहो बनल रहत। उन्नत तकनीक अपनिया किसान भाई कम लागत में बेसी उत्पाद और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त कऽ सकै छथि।
0: हाँ, गुणवत्ता तखने प्राप्त कऽ सकै छथि आशुतोष भाई जखन हाँ, हाँ। उन्नत प्रभेद जहन जे हमरा लोकन खेत पथार में लगाब तखने बुझू जे एकर उत्पादन
1: निश्चित निश्चित जे एकर अनुकूल चीज सब छै ओकर जानकारी अपना सबके पहले लेबो पड़त, माटि के जांच करबाओ पड़त और कृषि वैज्ञानिक से सेहो अपना सबके लगातार सलाह लेत रहो पड़त।
0: चाहे तो संग संग खेती करबा से पहिने जे हमरा लोकन के उन्नत प्रभेद के चुनाव करबाक चाही।
1: हाँ हाँ,
0: एकर उन्नत प्रभेद छै राजेंद्र भाटा दू, राजेंद्र अन्नपूर्णा, पंत भाटा, पंत ऋतु राज, अर्का निधि, काशी प्रकाश, काशी तरु, काशी संदेश
1: और संगे संग पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड और बहुतो रास अनुशंसित किस्म सब अछि, एकर चयन केनाय बेस लाभकारी रहित अछि।
0: संग संग आशुतोष भाई बाग जो छै किसान सुधा लोकन के भाटा के बिया बाग करबाक समय सेहो हमरा लोकन के ध्यान रखबाक चाही।
1: ई तो बहुत आवश्यक अछि।
0: लेल जो छै जून से जुलाई और मध्य लेल अगस्त से सितंबर धरि जो अखन समय उपयुक्त अछि
1: उपयुक्त अछि।
0: संग संग पिछात लेल पिछात भाटा के जो गप करी तो ओकरा लेल जो छै सितंबर से अक्टूबर धरि रोपनी करबाक समय सेहो हमरा लोकन के ध्यान रखबाक चाही। आगात लेल जुलाई।

0: सँ अगस्त आ मध्य लेल सितंबर सँ अक्टूबर आ पिछात अक्टूबर के अंत सँ नवंबर धरि एकर खेती
1: ठीके कहलौं देवू भाई। शरदकालीन फसल के लेल सामान्यतः अपना सब देखे छी जे जून जुलाई के बीच नर्सरी तैयार कयल जाइत अछि की, और जुलाई अगस्त जेना कहलौं हम एकर दौरान पौधा के रोपाई सेहो कयल जाइत अछि।
0: बीया दर के जो हमरा लोकन गप करी तो एहि लेल जो छै 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, संकर प्रभेद लेल 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीया के जो छे हमरा लोकन के व्यवहार करबाक
1: चाही। संगे संग रोपाई के समय कतार से कतार के दूरी के सेहो ध्यान अपना सबके रखबाक चाही।
0: ओहि लेल 60 × 50 सेंटीमीटर आ मुख्य फसल लेल 75 × 7 सेंटीमीटर रखबाक चाही। जो खाद उर्वरक के जो गप करी आशुतोष भाई,
1: हाँ हाँ,
0: तो कंपोस्ट 150 से 200 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम, पोटास 80 किलोग्राम।
1: यौ देवू भाई, अगर खेतक तैयारी के गप करी तो खेत के 3-4 बेर नीक जोताई कऽ माटि के भुरभुरा बना देबाक चाही। अंतिम जोताई के समय 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर नीक तरले सरलाह जो गोबर हुई ओकर खाद वा फिर कंपोस्ट का मिला दी। एकरा संगे संग माटि परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस आ पोटास का प्रयोग करवाक चाहिए। जना कि अपना सब पहले ही चर्चा केलौं जे माटि के जांच करवा, जना कृषि वैज्ञानिक अपना सबके सलाह देता ओही अनुरूप अपना सबके काज करो पड़त।
0: इत मेहनत कहकर अहाँ भाटा लगाबे छी आशुतोष भाई, संग संग खर पतवार नियंत्रण
1: बहुत बेसी आवश्यक
0: ध्यान रखे पड़े। एक तो पूँजी लगा कर मेहनत लगा खेती करे छी आ जो ये सब कैला के उपरांत तो सबटा पोषक तत्व तो खरे पतवार लो लेत
1: तहन तो बुझू
0: तहन जब बुझू जी ओकरा जो छे
1: फायदा की भेटत अपना सब ठीक है कहलो।
0: तो तें दुआरे हमरा लोकन के सदखन खर पतवार नियंत्रण लेल 3 से 4 बार निकौनी कमौनी करबाक चाही, खेत से खर पतवार से जो छे मुक्त रखबाक चाही,
1: और रोपाई के तुरंते बाद हल्लुक पटौनी करी, बरखा के स्थिति के ध्यान में रखैत आवश्यकता अनुसारे पटौनी करी, बाद में 7 से 10 दिन के अंतराल पर पटौनी केनाय लाभदायक रहे। और अहाँ जे कहलौं हँ समय समय पर निकौनी कमौनी, एहिसँ पौध के वृद्धि नीक होइत अछि और उत्पाद में वृद्धि होइत अछि।
0: उत्पाद के जब गप कहलौं हँ आशुतोष भाई, तो उपज क्षमता जो छै,
1: हाँ हाँ,
0: गरमा लेल 200 से 250,
1: अरे वाह,
0: मुख्य फसल 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भऽ जाइत अछि। जो एतर है जो हमरा लोकन मेहनत से परिश्रम
1: से करब, आ संगे संग एकटा गप और रही गेल जे कीट और रोग प्रबंधन पर सेहो अपना सबके ध्यान देनाय आवश्यक अछि,
0: माने समय समय पर देखरेख करत रहू।
1: हाँ, बैगन के फसल में फल आ तना छेदक कीट सबसे बेसी नुकसान पहुँचाबैत अछि, तो अपना सबके जे छै से एहि पर अवश्य ध्यान देबाक चाही। तो पहले अपना सब क्षणिक विराम ली, तकर बाद फिर हेतै गपशप।
0: हाँ हाँ,
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो बनवाए अपने पंचायत में, और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं, और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उसे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
4: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया, चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुन्ना पंचायत की जनता।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
1: क्षणिक विराम के बाद श्रोतागण के एक बेर फिर से स्वागत छन खेती गृहस्थी में। देवू भाई आब

0: पहिले अपना सब किया ने एकटा भेंट वार्ता पहिले सुन ली, तकर बाद फेर करब गपशप। भेंट वार्ता के विषय आय छे खरीफ मासक उन्नत खेती पर गपशप। भेंट वार्ताकार छथि चंदन कुमार यादव और हिनका संग गप कऽ रहल छथि देव नारायण यादव। तो सुनी हिनका सबक बीच भेल गपशप।
1: कार्यक्रम खेती गृहस्थी के अंतर्गत आज हम आयल छी सुन्हा गाम। ई गाम वासदेवपुर पंचायत के अंतर्गत सदर प्रखंड के अंतर्गत आबत अछि। एतौ के जे किसान के जे देख रहल छी काफी कर्मठ अछि, देख रहल छी जे चारू कात हरियाली छायल अछि चौरचाकर मे, और एतौ के किसान काफी जुझारू छथि, मेहनती छथि, परिश्रमी छथि। तऽ ओही क्रम मे एतौ के किसान से गपशप करी। श्रीमान अपने के की नाम भेल?
2: चंदन कुमार यादव।
1: चंदन कुमार यादव जी अपने खेती बाड़ी करे छे?
2: जी जी करते हैं।
1: कौन कौन फसल के खेती करे छे?
2: हम धान गेहूं मक्का अभी वर्तमान कर रहे हैं।
1: ठीक है, बहुत निक गप के यहाँ जो है समय के अनुकूल ओना तो देखे रहल छे। कभी तो छे कि समय से पहले चेत किसान, अखिनका जो समय है जहाँ एतो के जो किसान है काफी कर्मठ है और देख रहल छे जे बाद वन में जो अनेको तरहक जे बिया बाल जे एतो के किसान खसैने छे, तो बड़ा देख के बड़ा खुशी भाव भेट रहल है। श्रीमान अपने जो खेती जो करे छे तो अपने जो छे खेती के वास्ते पहिने तो अहाँ खेत के तैयारी सेहो करत होबे, तो खेत के तैयारी कोना की करे छे? हल बैल से करे छे कि ट्रैक्टर से करे छे?
2: अभी वर्तमान में हम ट्रैक्टर से कर रहे हैं, हल बैल सब नहीं कर इसीलिए
1: हल बैल से अहाँ कर रहल छे। ठीक छे, बहुत सुंदर। देखियो अखिनका दौर में जो छे भारतीय कृषि में ओना तो देखे रहल छे जे जे छे जे वैज्ञानिक दौर चल रहल छे, नव नव तकनीकी जे छे विज्ञान के तरफ से आ रहले है, नया नया जे छे खोज भ रहले है। तो अखिनका दौर में कम समय में कम लागत में जो छे यहाँ के जो छे बेसी से बेसी जे हमारे किसान श्रोता लोकन जो छे जे ट्रैक्टरे से खेती करे छथिन, किएक तऽ एहिमे लागत कम लगे छे और बेसी से बेसी मुनाफा सेहो होइ छे। तो बहुत नीक गप कहलो कि जहाँ जो छे खेती आ प्लस जो छे ट्रैक्टर से सेहो कहलो। ओना हल बैल के गप करल जाए तो आप तो देखे रहल छी जे हमर किसान श्रोता लोकन बहुत आलसी भऽ गेल छै, तो बेसी से बेसी जे छै अपन जे छै ट्रैक्टरे से काज लऽ रहल छै। श्रीमान खेती करबा से पहिने अहाँ तऽ खेत के तैयारी तऽ सेहो करत होबे?
2: जी हम अभी करते है खेत के पहिने जोताई कोराई का, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है इसलिए पहिने पटावन देते हैं, उसके बाद खेती का आगे बरसत बढ़त।
1: मैं ई तऽ अहाँ कहलिए कि जे माने अखन बरसात में जे छै हमरा लोकन जे छै खेती जे छै करबाक चाही, लेकिन देखियो श्रीमान हमर सबक जे किसान एतौ जे अछि ना ओ मानसून पर टिकल अछि। माने बरखा भेल तऽ खेती भेल, बरखा नहि भेल तऽ बुझू जे सुखाड़ पड़ि गेल। तऽ ताहि दुआरे एतौ के जो किसान छै कवितो छै कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मानसून के साथ जुआ कहल गेल अछि। जहन बरखा होइ छै मानसून वाला किसान के चेहरा पर हरियाली आबि जाइ छै, कहल जाइ छै कि बाबू खेती नीक जका है। बहुत सुंदर, माने अहाँ खेत के अपन जे छै जोत करके छोड़ देने छियै, मान ले एना ही खेत जोतला से होइ छै कि जे अखिनका समय में जो कोनो तरह खर पतवार जो रहै छै या कोनो तरह कीट व्याधि रहै छै तो ओ बुझू जे तापमान में जो छै नष्ट भ जाइ छै। तो श्रीमान अपने जो खेती करे छे तो खेती के समय में तो खाद उर्वरक के अहाँ से रखत, तो खाद उर्वरक में अहाँ कौन कौन खाद व्यवहार करे छे? जैविक खेत के ज्यादा बढ़ावा दे रहल छे या रासायनिक खाद बढ़ावा दे रहल छे?
2: हम जैविक खाद का अथी बढ़ावा दे छे, क्योंकि रासायनिक खाद के मात्रा कम है कन, माने नहीं आवे गाँव घर में, और जैविक खाद माने गोबर उबर लो के हम दे छे कन, और रासायनिक खाद हमारा घर पर नहीं पहुँचे है कन और बेसी महंगा भी पड़े है कन, एला हम जैविक खाद का उपयोग करे छे।
1: श्रीमान बहुत निक विचार है अहाँ के। देखियो देखियो जैविक खाद के जे बढ़ावा अहाँ दे रहल छे आ देबाको चाही, का दौर में जे देखे रहल छे कि अनेको तरह जे बीमारी जो छे रासायनिक खाद के व्यवहार कला से भ रहल छे, चाहे मानव स्वास्थ्य हुए बा कोनो तरह के जीव जंतु। जो रासायनिक खाद के व्यवहार नहीं क के जो जैविक खाद के व्यवहार करी तो मानव स्वास्थ्य लेल कल्याणकारी होइ छे। यौ अखन के ओना तो देखल जाए तो हमर सबक जे अर्थव्यवस्था रहे पहिने पहिने तो बुझू जे हमर सबक पूर्वज जे बेसी से बेसी गोबर के गदौस के जे खेत पथार में बाहर करे छ, मुदा दिन प्रतिदिन जो देख रहल छी जे हमर किसान श्रोता लोकन जो छे माल मवेशी के जो छे विलुप्त कर रहल छ, पाले नहीं चाहे छ, तै दुआरे हमरा लोकन के बेसी से बेसी नीम कोटेड यूरिया के व्यवहार करना चाहिए, जैविक खेती के व्यवहार करना चाहिए, जैसे मानव के स्वास्थ्य बनले रह संग संग आन भी जीव जंतु के सेहो ऐसे कल्याण भ सकत है। तो श्रीमान अपने जो जैविक खेती के जो व्यवहार करे छे तो ओय में जो छे हाट बाजार के मांग जो छे सतखने जो छे जे बनल रहे छे, तो अहाँ जे जैविक खाद के

0: व्यवहार केलियै आ रासायनिक खाद के जे व्यवहार नहि कऽ कऽ आ जैविक खाद के जे व्यवहार कऽ रहल छियै, तऽ आइ लेल जे छै अहाँ माल जाल तऽ सेहो अहाँ पालने होबै।
1: हाँ, माल जाल पालने छियै, कमाई उमाई ओते नहि छै ने, तऽ इसलिए माल जाल अथी पा के की कहै कऽ दरभंगा सबमे दूध पहुँचाबै छियै और जे गोबर बचे से हम खेती करै छियै।
0: कोन कोन माल जाल अहाँ पालने छियै?
1: गाय भैंसी पालने छियै।
0: देखियौ, ओना जो छै सरकार के सेहो जे आइ दिस जो छै बेसी से बेसी बढ़ावा आ अनेको तरहक योजना सेहो चलाओल जा रहल अछि, जे सरकार के जे व्यवस्था छै जे किसान के बेसी से बेसी जो छै सहायता भेटै, एहि लेल जो छै बहुत तरह योजना चलाओल जा रहल अछि, जाहिमे जे किसान लोन योजना सेहो देल जाइ छै। ओहि लेल जो भेड़ पालन बकरी पालन के लेल सेहो सरकार समय समय पर जो छै जे योजना सब दऽ रहल छै। आवश्यकता अछि जागरूकता के, हमर किसान श्रोता लोकनि जो अछि जागरूकता के बुझथिन समझथिन और योजना चला कऽ सरकार के जे छै ऋण सरकार से लोन लऽ कऽ जहन बेसी से बेसी माल जाल पालै छथिन तऽ और बेसी से बेसी लाभदायक भ सकत अछि। अच्छा श्रीमान, अपने जो माल जाल जो रखने छियै बथान पर, तो देख रहल छियै जे अखन प्रचंड सन रौद पड़ रहल छै, तो प्रचंड सन रौद मे अहाँ माल मवेशी के कोना रख रखाव करै छियै, मतलब की करै छियै मने गर्मी से बचाव के लेल?
1: अभी हम वर्तमान में की कहे कन जना घर बांध देलियै, ओइमे पथियालो स्टोर के घर छै, ओइ पर पानी दै छियै कन, ओइमे माल जाल रहै कन और खेत सब छै, तऽ ओइमे सुजान जान बहु को दिन छियै कन और के काट के खियाबै छियै कन, ऐसे चलै है कन।
0: वाह, बहुत सुंदर, मारा चारा करे कॉल छे आम के आम आ गुठली के दाम, कितना सुंदर अहाँ के विचार है खेती पथारी के प्रति अहाँ के लगाव है। देखियो, जना अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखे छे ठीक हो ना ही, जो हमरा लोकन के जे छे माल जाल के प्रति सेहो से न रखबाक चाहे, किएक त माल जाल छे निमू धन होय छे, उ नहीं बुझे छे कि गर्मी छे कि जाड़ छे कि बरसात छे। जना अपने रंग बिरंग के खाना खाय छे अपने स्वास्थ्य के रक्षा लेल, ठीक हो ना ही माल जाल के प्रति सेहो हमरा लोकन के ध्यान रखे पड़त, किएक त माल जाल से बहुत रास हमरा लोकन के जो छे लाभ भेटत अछि, जना दूध दही पनीर मक्खन एहि तरह के लाभ जो छे हमरा लोकन के समय समय पर भेटत रहे छे। ठीक हो ना ही जे हमरो लोकन के जे छे माल जाल के प्रति चारा फसल के प्रति हमरा लोकन के ध्यान रखबाक चाही। बहुत नीक गप कहलो हैं, यहाँ अपन जे छे माल जाल के लेल खेत पथार में जे छे जनेरा कहने छी, बरसीम कहने छी, बाजरा कहने छी, तो ये सब देखियो ये सब कैला से तो अहाँ के माल जाल के स्वास्थ्य नीक रहबे करत, संग संग जो छे ओकर दूध के जो छे सेहो बढ़ावा भेटे छे, तो ते दुआरे हमरा लोकन के सदखन ई प्रयास करबाक चाही, बेसी से बेसी जो छे मूंग के खेती के बढ़ावा देबाक चाही, बाजरा के बरसीम के आज तक चारा फसल के जो छे व्यवहार करे छी, तो ओइसे होय छे कि अहाँ के खेत के उर्वरा शक्ति सेहो बनल रहत, किएक त अखन कदवा के समय आबि रहल छै, भदबरिया के समय आबि रहल छै, चारा फसल त अहाँ माल जाल खिला दै छै, संग संग जे ओकरा जोति कोरि के जब कदवा विधि से जो ओकरा खेत में मिला दै छै, तऽ अहाँ के खेत के लेल सेहो रामबान भऽ जाइ छै, खेत के ताकत भेटै छै, तऽ बहुत नीक विचार अछि। श्रीमान, अपने जो माल जाल के जो छै दूध दही के तऽ सेहो अहाँ के देखै छी दरवाजा पर देख रहल छी जे अनेको तरहक जे जर्सी फ्रिजियन माल मवेशी सेहो पालने छी, तऽ एकरा जो छै गर्मी मास में छे दू से तीन बार अहाँ नहा दै छियै?
1: हाँ, दू से तीन बार नहाबै छियै।
0: आ खान पान में जो छै केना की करै छियै?
1: जनेरा दै छियै कन, की कहै घास सब दै छियै कंचे अथी में खेत में, तऽ ओ सब लाबै छियै आ सबके मिला के दज दै छियै, ओहिमे गुल्ली उल्ली सब मिला दै छियै तब दै छियै कन।
0: अच्छा, माने जे छै चारा के रूप में ओकरा दै छियै।
1: हाँ।
0: अच्छा, एकर जो गोबर कृषि जो होय छै, गोबर कृषि की करै छियै, माने ओकरा जलावन में काज करै छियै या खेत में पटाबै छियै?
1: कुछ जलावन में काम करै छियै आ कुछ खेतों में दै छियै कन, कियाकि घरों में जलावने पर खाना सब बनते ना,
0: मतलब अखिनका समय तो ओनाइयो देखे रहल छै कि सरकार के जे पोजीशन अछि अखिनका जे गैस के, ओना तऽ गैस के जे समस्या छै, तऽ हमरा लोकन पुनः जे हमर पूर्वज सब जे करै छला ओही स्थिति में आइ हमरा लोकन फेनो आबि गेलो हैं। बहुत नीक विचार जे अहाँ जो छै गोइठा पर लकड़ी पर जे अहाँ भोजन बनाबै छी, तो ओइसे जो छै गैस के सेहो बचत होइ छै, बहुत नीक विचार अछि। तऽ श्रीमान, अपने जो गोबर के दो जे खेत पटाबै छै, तऽ एहि लेल जे छै अपने व्यवहार करै छै कि एहि लेल आनो किसान के अहाँ सलाह दऽ सकै छी, एहिला से अपने सबके आओर किसान के की सलाह देबन?
1: किसान के ई सलाह देबै कि से जना खाद सब खाद नहि रासायनिक खाद नहि मिलै तऽ एहि खाद के उपयोग कऽ के अपना खेत मे दियो, अहाँ के खेत फसल आगे बढ़त कन।
0: बहुत सुंदर, जे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारा लोकन पुराना पद्धति के जो अपना के चली, तो बेसी से बेसी लाभ भ सकत अछि, तो ते दुआरे हमरा लोकन के सदखन आन किसान श्रोता लोकन के से सलाह देबन कि बेसी से बेसी रासायनिक खाद के व्यवहार नहीं कऽ कऽ जैविक खेती

0: के जे व्यवहार करथिन तो अवश्य अच्छे जे हमार सभक जो छे खेतक जे पोषक तत्व भेटबे करत संग संग जो छे मानव स्वास्थ्य लेल सेहो निक भ सकत अछि। श्रीमान ए खेती गृहस्थी विषय पर गपशप क के बहुत निक लागल, एहि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ ठीक है, धन्यवाद
2: देबू भाई। एखन अपना सब सुनि रहल छलहुँ खरीफ मास की उन्नत खेती पर गपशप। भेंट वार्ताकार छलथि चंदन कुमार यादव और हुनका से गप कऽ रहल छलथि देव नारायण यादव। बहुत निक गपशप छल। और आब किया नहीं पहले श्रोता बंधु के मौसम संबंधी जानकारी दो दिए।
3: हाँ हाँ दो दिए।
2: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 4 जुलाई से 8 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान के अनुसारे पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिला से आमतौर पर मौसम के शुष्क रहबाक अनुमान है। पूर्वानुमानित एहि अवधि में 5 से 7 जुलाई के दौरान उत्तर बिहार के किछ स्थान पर गरज चमक ठनका तेज हवा चलबाक संभावना है 5 से 7 जुलाई के मध्य। संगहि कतौ कतौ हलुक बरखा सेहो भ सकैत अछि। पूरा पूर्वानुमान अवधि के दौरान मेघ आंशिक रूप से आच्छादित रहबाक संभावना है। अधिकांश जिला में बेसी से बेसी तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान है। भोर में सापेक्ष आर्द्रता 75 से 80% आ दुपहरिया में सापेक्ष आर्द्रता 35 से 40% के लगपास रहबाक संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में हवा जे रहत से पूर्वावसात 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल सकैत अछि। त ई छल मौसम पूर्वानुमान।
3: त चेक ने चलत चलत आशुतोष भाई जे एकटा हमरा लोकन लोक गीत के आनंद ल ली
2: बरखा के गप केलौ ह त किया ने एकटा सुंदर सन पहले गीत सुनी।

0: आशुतोष भाई अखन हमार लोग लोकगीत सुनल छो
1: और
0: एक संग जो खेती गृहस्थिक समय सम्पन्न भ रहा है।
1: ठीक है,
0: आप किसान श्रोता लोग चले के आज्ञा ली। नमस्कार आशुतोष भाई।
1: नमस्कार देवू भाई।

अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर हुई चर्चा। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हडको के बीच समझौता। 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में 29 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। और राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में 18 राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों ने भाग लिया। मंत्रालय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत 2,76,000 ग्रामीण स्थानीय निकाय शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों को आयोग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उन्हें प्रदर्शन आधारित अनुदानों का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम बनाना था। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हडको के बीच 1,00,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक वित्त पोषण का समझौता हुआ है। पटना के संकल्प सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के शहरी विकास के इतिहास में ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताया। उन्होंने बताया कि लगभग 3,00,000 एकड़ क्षेत्र में टाउनशिप विकसित किए जाएंगे और किसानों को लैंड पुलिंग के माध्यम से इस परियोजना का भागीदार बनाया जाएगा। वहीं मुआवजे के लिए आवेदन करने वाले किसानों को 30 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप में आधुनिक सड़क नेटवर्क, पेयजल, हरित क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर आवास और विश्व स्तरीय शहरी जीवन उपलब्ध होगा। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्याडा की परियोजना समाशोधन समिति ने 29 नई औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के लिए सिकंदरपुर, हथुआ, फारबिसगंज, लोहट, बरियारपुर और फतुहा समेत अन्य औद्योगिक

0: क्षेत्रों में लगभग 38 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, प्लास्टिक उत्पाद निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन समेत अन्य औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग 6000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, साथ ही 3000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की भी संभावना है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड में 385 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दरभंगा के रैयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने के लिए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया है। इस कमिटी में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, एक पदाधिकारी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। यह समिति चीनी मिल को फिर से चालू कराने के उपायों का आकलन करेगी। राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नाबार्ड और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर हाट विकसित होने से ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा, जिससे जीविका दीदियों और किसानों की आय बढ़ेगी तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मंत्री ने अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक हाट विकसित करने, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने तथा महिलाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। राज्य सरकार 20 जुलाई से 1100 श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ यात्रा का आयोजन करेगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत इस यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा का शुभारंभ पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से होगा। श्रद्धालु सोमनाथ धाम के दर्शन के बाद 26 जुलाई को पटना लौटेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और पालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने हावड़ा और नटेसर के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह ट्रेन 5 जुलाई से 30 सितंबर तक सप्ताह में 3 दिन चलेगी। यह ट्रेन आसनसोल, जसीडीह, झाझा, किहुल, शेखपुरा, अस्थावा, बिहार शरीफ, नालंदा और राजगीर के रास्ते चलाई जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य

0: के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मुंगेर सदर में सबसे अधिक 20.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। केंद्र सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सीतामढ़ी पुलिस ने रीगा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र से हुई लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान एक अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टे, 1 देशी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उधर समस्तीपुर और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित पंगरा थाना क्षेत्र के बलीगांव के पास पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। वैशाली के पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने बताया कि पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें अमन कुमार को पैर में गोली लगी है। उन्होंने बताया कि मौके से एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कुमार आशीष ने सहरसा जिले के सलखुआ थाना में पदस्थापित 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पुलिसकर्मियों पर दलालों के माध्यम से केस प्रभावित करने का आरोप है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि मौके से एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया।
2: ये व्यक्ति सतीश कुमार जो है बहुअरवा गांव का रहने वाला है, जो इसके लैपटॉप पर विभिन्न केसों की फाइल मिली है। ये डायरी लिखने का भी काम करता है और डायरी दूसरे लोगों को बेचने का भी काम करता है। तो इस प्रकार से पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा था, जिसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत इस पर केस दर्ज करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ इसके सांठगांठ में काम करने वाले 10 ऐसे आईओ जिनकी फाइल मिली है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर करके लाइन हाजिर किया गया है। उन पर विभागीय कार्रवाई चलेगी और उनको कठोरतम सजा हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे।
1: भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक बालू लदा हाईवा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भेजा गया है। इधर कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के भिट्ठी गांव के पास ई रिक्शा पलटने से रिक्शा चालक और 1 बच्ची की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 265 प्रशिक्षु महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परेड के दौरान प्रशिक्षु महिला सिपाहियों ने आकर्षक मार्च पास्ट, अनुशासित कदम ताल और उत्कृष्ट ड्रिल का प्रदर्शन किया। समारोह में पुलिस उप महानिरीक्षक हरकिशोर राय और पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर जिले के जवनिया गांव में गंगा के कटाव से प्रभावित 57 परिवारों को बिलौटी गांव के पास 3-3 डिसमिल भूमि का आवंटन किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक कुल 127 गंगा कटाव पीड़ित परिवारों को पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसके साथ ही 40 पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त भी उपलब्ध करा दी गई है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसौना गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 105 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक और भारी मात्रा में शराब के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर मंडल कारा में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना

क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मणिया गांव में भूमि विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। समस्तीपुर जिले के तलसिंहसराय थाना क्षेत्र के चकलोमान गांव से पुलिस ने लूट के मामले में 7 साल से फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। दरभंगा में पिछले दिनों एक आभूषण दुकान से लूट के मामले में एसटीएफ की टीम ने मधुबनी जिले के पंडोल से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लखीसराय जिला आज अपना 33वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर हुई चर्चा। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हडको के बीच समझौता। 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में 29 औद्योगिक परियोजना

0: अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लखीसराय जिला आज अपना 33वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर हुई चर्चा। राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग और हडको के बीच समझौता। 1,00,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के MOU पर हुए हस्ताक्षर। प्रदेश में 29 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। और राज्य सरकार पर्यटन स्थलों पर जीविका समूहों और किसानों के उत्पादों की बिक्री के लिए आधुनिक हाट बाजार विकसित करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
2: पूर्ण टीकाकरण अभियान में कटिहार जिले ने विशेष उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग की HMIS रिपोर्ट के अनुसार जिले ने 87% टीकाकरण कवरेज के साथ राज्य के शीर्ष 10 जिलों में स्थान बनाया है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मनसाही प्रखंड ने 126% उपलब्धि के साथ जिला में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि बारसोई ने 102 और आजमनगर ने 101% उपलब्धि दर्ज की है।
3: कटिहार जिले ने टीकाकरण में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें से जो 3 ब्लॉक है मनसाही, बारसोई और आजमनगर, उन लोगों ने विशेष अच्छा प्रदर्शन किया है। जो अपने लक्ष्य जो ELA होता है उससे भी ज्यादा लोगों का इन्होंने टीकाकरण किया है, तो हम लोग आगे भी इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं लोगों को समुचित तरीके से मिले, यही हम लोग का प्रयास है।
2: जिले के PM श्री विद्यालयों में पढ़ रहे दिव्यांग बालिकाओं को अब केंद्र प्रायोजित योजना के तहत विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। जिले के 23 PM श्री विद्यालयों में नामांकित छात्राओं को 2,000 रूपए प्रतिमाह की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
4: कटिहार जिला अंतर्गत 23 PM श्री विद्यालय हैं, जिनमें अध्ययनरत दिव्यांग छात्र छात्राओं को विशेष भत्ता देने का इस शैक्षिक सत्र से प्रावधान किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने PM श्री विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूची बनाने का निर्देश दिया है।
2: जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त छात्राएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। मनिहारी प्रखंड के धुरियाही मड़गाहा में गंगा किनारे कराए गए कटावरोधी कार्य का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल ने कार्य को मानकों के अनुरूप बताते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त एप्रोन का पुनर्स्थापन करा दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।
3: विभाग स्तर से एक विशेष टीम गठित करवा रहे हैं।

0: जो सारे बिंदुओं पर, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हो चाहे जैसे इश्यूज हो, विभाग स्तर की एक टीम, उच्च स्तरीय टीम आकर के इसकी जांच करेगी और उसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: कटिहार के जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 450 से अधिक सरकारी कर्मियों का स्थानांतरण किया है। इनमें समाहरणालय, विकास भवन, अनुमंडल एवं प्रखंड कार्यालयों के अलावा स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, ICDS और पंचायती राज विभाग के कर्मचारी शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानांतरण निर्धारित मानकों और कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है।
0: लगभग 450 के आसपास कर्मियों का हम लोगों ने ट्रांसफर किया है और जिसमें स्वास्थ्य विभाग के, ICDS के, पंचायत के लोगों का किया गया है ट्रांसफर और इसमें जिला स्तर पे अलग अलग की रैंकिंग कराई और उसके बाद उस रैंकिंग के आधार पर उनसे प्रेफरेंस लेकर ट्रांसफर किया गया है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है।
1: कटिहार बारसोई रेलखंड के अंतर्गत कटिहार सोनौली और कटिहार कोरेठा के बीच लगभग 30 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण का पहला चरण पूरा हो गया है। रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा सफल हाई स्पीड निरीक्षण के बाद इस रेलखंड पर तेज गति से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। मंडल रेल प्रबंधक किरेंद्र नारा ने बताया कि परियोजना के दूसरे चरण का कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2: ये एक्चुअली प्रोजेक्ट जो है दो प्रोजेक्ट है, टोटल 64 किलोमीटर का है और इसका कंप्लीशन टारगेट रखा हुआ है कि इसी साल का दिसंबर तक, हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब एक्सटेंड होगा लेकिन टारगेट जो है वो मतलब इस साल का ही है। अभी कुल 30 किलोमीटर 50% हो गया है।
1: राज्य सरकार के निर्देश पर गरवेली पंचायत सरकार भवन में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री एवं कला एवं संस्कृति और खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने किया। उन्होंने कहा कि महिला हितैषी ग्राम पंचायत थीम के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और पंचायत स्तर पर जन समस्याओं के त्वरित समाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
4: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। पेश है फिल्म संगीत।
5: ओके, आई विल टेल यू स्टोरी बट एवरीबडी विल सिंग विथ मी।
6: Okay,
5: ready? Come on. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

आखिरी रास्ता, इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और एस जानकी के आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पति पत्नी और तवायफ। इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और सलमा आगा की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था

अमित कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बालिका वधु में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

लव स्टोरी फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार और लता मंगेशकर के आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम

अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार बंधु लोकनि, स्वागत अछि अपने सब गोटे के मैथिली साहित्यिक आ संस्कृति कार्यक्रमक आजुक अंक में। अपने लोकनि जनित छी जे आधा घंटाक एक कार्यक्रम में हम सब साहित्यिक गपसप करै छी, कथा आकि कविताक पाठ सुनै छी, तऽ मैथिली गीतक आनंद सेहो लैत छी। एहि सबक संग संग अपन किछु ठेठ शब्द पर सेहो गप करै छी, ओहन शब्द जकर उपयोग चाहे तऽ रह रहा नहि होइत अछि वा ओहि शब्दक अर्थ आजुक नव पीढ़ी नहि बुझि पबैत छथि। से ई सबटा कार्यक्रम अहाँ अपन रेडियो सेटक संग संग मोबाइल फोन पर सेहो सुनैत छी न्यूज ऑन AIR ऐपक माध्यमसँ। बंधु लोकनि, पहिने तऽ स्वीकार करू ने सोनूक नमस्कार। हमरा सब जनित छी जे रचना जे कोनो होइत अछि से देश कालकेँ ध्यानमे राखि कऽ तदनुरूप रचल जाइत अछि, तखन से एकर प्रभाव साहित्यक पाठक, ओकर श्रोता वा कि आन जे कोनो सामान्य लोक होइ छथि तिनका पर सेहो असर पड़ैत अछि आ ओ प्रचलित सेहो भऽ जाइत अछि। कारण जे हमसब जनैत छियै, कहैत छियै जे साहित्य समाजक दर्पण होइत अछि, मने समाजमे जे कोनो घटना घटै छै से साहित्यमे अबैत अछि, तैँ साहित्य पढ़लासँ ई बातके बुझबामे कोनो कसैर नहि रहि जाइत अछि जे ओहि समयक, ओहि क्षेत्रक की स्थिति छलैए, ओतुका रहन सहन केहन छलैक, ओतुका से सामाजिक स्थिति केहन छलैए, ई सब बुझबामे आबि जाइत अछि। कारण जे साहित्यमे देश काल नाममे अंतर भऽ सकैत अछि, किंतु बात यथार्थ रहैत अछि, तैँ साहित्य बेसी कहि सकैत छियै जे अस्पष्टताक सङ्ग रहैत अछि, साहित्य बेसी विश्वसनीय होइत अछि। से एहने सन एकटा साहित्य साधक भेला जे अपन सहज शब्दमे संपूर्ण मैथिली संस्कृतिकेँ उजागर कयलनि। मैथिलीमे या मिथिलाक जे सभ्यता छलै, जे संस्कृति छलै, जे रहन सहन छलै, जे बात विचार छलै, जे एतुका सामाजिक स्थिति परिस्थिति छलैए तत्कालीन, तकरा से ओ अपन साहित्यमे अनबाक प्रयास कयलनि आ हुनक जे बादक पीढ़ी अछि

हुनक जे बादक लोक अछि, जे साहित्य साधक अछि, साहित्य श्रोता अछि वा आम जे लोक अछि, से हुनक ओहि साहित्यके पढ़ि कऽ, हुनक ओ काव्य कथाके पढ़ि कऽ, एतुका जे ओहि समयक परिस्थिति छलैए, स्थिति छलैए, तकरा बुझैत अछि आ से बुझबामे कनिको भांगट नहि रहैत छैक। कारण जे ओ ततेक नीकसँ लोक भाषामे आ कही जे जन सामान्यक जे बोधगम शब्द छै ताहिमे अपन साहित्यक रचना कयलनि, से भनहि हुनक काव्यमे मुख्य रूपसँ जगदम्बाक गप कयल गेल छै। ओ जगदम्बाक गप कयलनि अछि, किन्तु हुनक मने जगदम्बाक चरित्र लिखैत काल मिथिलेक स्थिति परिस्थिति, मिथिलाक नारीक बात लिखलनि अछि, से एकदम बोधगम्य भाषामे। हम जे गप कहऽ चाहि रहल छी से अपने लोकनि बुझि रहल हैब जे हम गप कऽ रहल छी अम्ब चरितक विषयमे। अम्बचरित जकर लेखक छथि कविवर सीताराम झा, ओना तहिनक कतेको रचना अछि, किन्तु आइ हम हिनक अम्बचरित पर गप करब। अम्ब मने भगवती मने सीता, तऽ से हम गप करब हुनक एहि अम्बचरितक माध्यमसँ, जे ओ सीताके केन्द्रमे राखि कऽ कोना मिथिलाक नारीक बात करै छथि, मिथिलाक संस्कृतिक गप करै छथि, से सबटा गप हम एतऽ करब। किन्तु किएक नहि, गप करबासँ पहिने जहन हम सीताक गप करै छी तऽ राम अक्षुण कोना रहि सकै छथि, कोनो ने कोनो रूपे तऽ हुनक नाम लेबै पड़त।

राधा मोहन मिश्र सँ एखन सब अपने सब ई कर्णप्रिय मैथिली गीत सुनै छलहुँ हैं। हम गप कऽ रहल छलहुँ हैं आइ अम्ब चरित परमे, जकर लेखक छथि कविवर सीताराम झा।

ई जे महाकाव्य अछि अमरचरित, से सीताराम झाक जे जते कीर्ति छनि ताहिमे सबसँ बेसी महत्वपूर्ण कीर्ति इएह छनि। ई 15 सर्गमे विभाजित एहि महाकाव्यमे सीताक जन्मसँ लऽ कऽ हुनक दुरागमन धरिक कथा कहल गेल अछि। से भने ही ओ अपन महाकाव्यमे सीता रामक गप कयलनि अछि, किंतु हुनक उद्देश्य राम कथा लिखब नहि छलनि। ओ तो मातृभाषा सेवी छला, मातृभाषा अनुरागी छला, अपन मिथिला मैथिलीक प्रति समर्पित लोक छला, तैं ई लिखबाक हुनक उद्देश्य छलनि। अम्ब मने मै आ मैक भाषा मने मैथिलीक संस्कार संस्कृति ओकर सभ्यता बखान करब। जाहि तरहें एहिमे सीताक कथाक बखान कयल गेल अछि, से सम्पूर्ण मैथिलीक नेनाक जन्मसँ लऽ कऽ आ ओकर उत्तरोत्तर विकास जेना जेना होइत अछि तकर कथा कहल गेल अछि। लगैत अछि जे

0: अम्बचरित मैथिली संस्कारक दस्तावेज जकाँ अछि। अछि एहि महाकाव्यमे कविवर काव्य प्रतिभाक चमत्कार तऽ देखाइते अछि, सङ्गहि सङ्ग हिनक जे गम्भीर पाण्डित्य प्रभा अछि सेहो देखबामे अबैत अछि। एहि महाकाव्यमे कवि शेखर कोना कऽ मिथिलाक संस्कृति मैथिल मानसिकताकेँ उकेरबाक प्रयास कयलनि अछि से हम अपने लोकनिकेँ कहब बुझायब, जकरा सुनि कऽ अहाँ एहि बातके स्पष्ट रूपसँ बुझि सकैत छियै जे ओ कोना एतुक्का मने मिथिलाक जे संस्कृति अछि तहियाक जे सामाजिक ताना बाना छल से केहन छल, कोना लोकक दिनचर्या छल, से सब बात हम करब। मुदा ताहिसँ पहिने किएक ने एकटा काव्य पाठक आनन्द हमरा सब लऽ ली।
1: भखरल मन केर उड़ल रंग सन क्षण क्षण जीवे प्राण, अहि बातक पातिल में मूनल आलोकित दिन मान। भखरल मन केर उड़ल रंग सन

अंग शिखर पर लागल किरणक धाही, हिमबानक उत्तुंग शिखर पर लागल किरणक धाही, चिंतन केर कागत पर उखरल लोकक आवाजाही, बिसरल जग शोणित केर तर्पण बिसरल।

पुर में मन ममता बरसैये, टक टक तकैत वेदन व्यथा में मन केर मन बदलैये। सिहिरल गामक भिजल भोर में मन ममता बरसैये, टक टक तकैत वेदन व्यथा में मन के मन बदलैये। दुभिक टुस्सी पर अछि डग डग

मारिके कृष्ण सुतल छथि बिसरल जग के कलवल। फूल डाली केर फूल उदासल

0: Hunting.
1: एखन महेंद्र झासँ काव्य पाठक आनंद लऽ रहल छलहुँ हैं। हम गप कऽ रहल छलहुँ हैं कविवर सीताराम झाक

अम्बुचरित पर में। कई वर्ष सीताराम झा अम्बुचरित में मिथिला में जे कन्यादानक मानदंड छल से की छल, ताई समय में केना छल से सुनल जाए। वो लिखे छथि, बाल गुण रूप अधिक हो जकरा, बल गुण रूप अधिक हो जकरा, कन्या सौ कन्या दी तकरा, बर्थिक बर यदि बैस सवैया, द्विगुण बैस सम अधम अढ़ैया, ताहि सौ अधिक बैस बर त्यागी, नहीं तो दाता नरकक भागी, प्रथम बरक गुण बैस परीक्षा, तखन करक थिक अपर समीक्षा। ई कते नीक जका से अपन शब्द में कन्यादानक जे उम्र सीमा छे तकरा रखलेन अछि, इतै समयक छल। ओ कहै छथिन जे कन्या सँ जकरा रूप गुण बल अधिक होय, जाहि बर के तकरे दी, से ई तहिया जे कहलखिन आइयो कोनो ओ अप्रासंगिक नहि भेल अछि। वास्तविकता छै जखन हमरा सँ केकरो बेसी रहति तखने ओ हमरा लेल सुटेबल छै। आ से ई परम्परा पूर्वेसँ रहल छै ने, जहिया स्वयंवर होइत छलैए तहियो तऽ सह छलैए जे सीता जे धनुषके उठाकर निपै छली है, तक से हुनका वह विवाह कऽ सकै छल जो धनुष के तोड़ सकै छलै, माने हुनका से अधिक जकरा में शक्ति छलै है। से परंपरा मिथिला में सब दिन रहल, से अई अम्बुचरितक जे वाक्यांश अछि ताहि सँ अस्पष्ट बुझना जाइत अछि। बेस तो बंधुगण, हम सब अम्बुचरित पर आर गपशप करब, मुदा जखन हम एहिठाम अबै छी तऽ आर बहुत रास कार्यक्रम सब रहैत अछि, जाहिमे शब्द विमर्श सेहो हमरा सबके करबाक रहैत अछि। से शब्द विमर्श सेहो करब, मने किछु शब्द पर गपशप करब, किंतु ताहिसँ पहिने एकटा सन्देश अछि सेहो अपने लोकनिके सुना दी। वन संरक्षण के बिना पर्यावरण संतुलन पर में तक खतरा रहते अछि, असे दिन प्रतिदिन हमर जीवन जे इससे आसान नहीं भ सकैत अछि। जँ पर्यावरण पर खतरा बनल रहत तो वन संरक्षण आ ओकर महत्व आ हमर जिम्मेदारी की अछि, ई अछि आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगीक अगला अंकक विषय विशेषज्ञ हेता डॉक्टर मुकेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर पर्यावरण विज्ञान मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा, प्रसारण के समय में कार्यक्रम से अहाँ सब जुड़ सकैत छी। ताहि लेल हमर फोन नंबर अछि 0627224281, मोबाइल नंबर अछि 9430029353। समय ध्यान में राखी, रवि दिन माने 5 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे से ये सूचना छले कार्यक्रम संबंधी से संपन्न भेल। आब हमरा लोकनि अपन जे शब्द विमर्श अछि ताहि पर आओ किछु गपशप कऽ ली। एकटा शब्द अछि हत्ता। हत्ता माने होइत अछि खेत सँ ऊंच जे चौड़गर आरि जकाँ देल रहैत अछि, जकर एक कात खेत रहैत अछि आ दोसर कात से नाला जकाँ रहैत अछि, तकरा हत्ता कहल जाइत छैक। आ रोड़ा रोड़ा कहल जाइत अछि ईंटाक

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: Prime Minister will also be visiting.
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में

0: बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

0: न्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7:00 घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ख्याल करने की गरज से आज नई दिल्ली में रियासती पंचायत राज वुजरा की एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पंचायत राज के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने कहा कि 16वें मालियाती कमीशन ने पंचायतों के लिए 80% बुनियादी ग्रांट्स और 20% कारकर्दगी पर मबनी ग्रांट्स की तजवीज पेश की है। वजारत ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात के तहत 2,76,000 देही बल्दियाती इदारों का इहाता किया गया है।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का मुकम्मल सरकारी नुक्ता नजर मुतनवे इनफरादी और इदाराजाती सलाहियतों को यकजा करने पर जोर देता है, जहां इदारे और पेशावर अफराद मुश्तरका कौमी मकासद के लिए अपनी कुव्वत और महारत के साथ तआवुन कर रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तूतापरी आम के किसानों को दरपेश चैलेंजों का मुताला करने के लिए ज़रई तहकीक की भारतीय कौंसिल के तहत एक आला सतही माहरीन की कमेटी तशकील देने की हिदायत की है। ये फैसला मरकजी वजीर के आंध्र प्रदेश के हालिया दौरे के बाद किया गया है, जहां किसानों ने हालिया महीनों में तूतापरी आम की कीमतों में नुमाया कमी के बारे में उन्हें मुतला किया था। फ्रांस ने पिछले महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के गर्म तरीन हफ्ते के दौरान होने वाली अमवात में तेजी के साथ इजाफे की खबर दी है। पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक 22 से 28 जून के दरमियान तकरीबन 9,000 अमवात रिकॉर्ड की गई। यह तादाद गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 29% ज्यादा है, जिनसे कम अज कम 2,000 इजाफी अमवात का एंदिया मिलता है। एजेंसी ने कहा कि यह आदादोशुमार नामुकम्मल है और तवक्को है कि हतमी तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। पानी की कमी, इख्तलाज कल्ब, गुर्दे की बीमारियों और दिल से ताल्लुक रखने वाली दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रात में किए गए हमलों के बाद यूक्रेन की फजाई हदूद के तहफ्फुज़ पर जोर दिया है। खबर है कि इन हमलों में 30 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए थे। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में यूक्रेन के सदर ने राजधानी कीव में रूसी हमलों से होने वाले नुकसान की तस्वीर शेयर की, जबकि हंगामी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि बम्बारी उसके शहरी बुनियादी ढांचों पर यूक्रेन के तवील दूरी से किए जाने वाले हमलों में जवाबी तौर पर की गई। फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन शहर में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल सुबह मियामी गार्डन्स में अर्जेंटीना का मुकाबला काबोवर्डी से और कंसास सिटी स्टेडियम में कोलंबिया का मुकाबला घाना से होगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, अमरीका, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मराकश, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सुबह प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबलों में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने अमरीका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। गुजरात एटीएस ने कलदम दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स अब्दुल्ला और मोहम्मद उमर के साथ राब्ते में थे। ये अफराद दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के लिटरेचर का गुजराती जबान में तर्जुमा करने और उसके नजरिए को फैलाने का काम कर रहे थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हौसलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपये मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है साहित्य की।

0: साहित्य की। श्रोताओं नमस्कार, इस अंक में आप सुनेंगे सतीश कुमार की वार्ता नागार्जुन का गद्य साहित्य। राजकमल चौधरी की कहानी एक चंपाकली एक विषधर का पाठ करेंगे केसी सिन्हा। अंत में सुनिएगा नरेंद्र से उनकी कुछ गजलें, लेकिन पहले संपादकीय। श्रोताओं, यदि प्रश्न उठे कि समय प्रबल होता है कि साहित्य, तो सामान्य धारणा समय पलटे सबई की ही है और साहित्य को समय की देन मानने से भी संकेत यही मिलता दिखता है कि समय ही प्रबल या बलवान है। कुछ अंशों में ये सत्य भी है, परंतु यही पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता है। माना कि समय प्रवाह में बह जाने वाले साहित्यकारों की संख्या कम नहीं है, लेकिन इसके विपरीत सत्य ये भी है कि अनुकरणशील और समय के चारणी साहित्य को दरकिनार करके धारा के विरुद्ध भी साहित्य चलता है और काल पर अपनी जीवंतता सशक्तता की अमिट छाप छोड़ जाता है। यही वह साहित्य है जो कालजयी कहलाता है, जन चेतना में युगों युगों तक यही निवास करता है। श्रोताओं, समय स्थायी नहीं रहता, परिवर्तनशीलता ही इसका गुणधर्म है, परंतु साहित्य काल को चुनौती देता हुआ दीर्घ काल जीवी होता है। वास्तविकता ये है कि काल की सामान्य अथवा ऐतिहासिक कही जाने वाली धारणा से साहित्य का काल धारणा भिन्न होती है। श्रोताओं, साहित्य का मूल स्वभाव है संस्कृति अथवा परिष्कृति की भावना का प्रसार करना, मनुष्य को सुसंस्कृत बनाना, हीनता द्वेष निराशा आदि जैसे नकारात्मक पक्ष की उपेक्षा करके वह जीवन विकास एकता समानता सद्भावना आदि सकारात्मक पक्ष की स्थापना करता है। अभी आप सुन रहे थे संपादकीय साहित्यिकी में। लीजिए अब प्रस्तुत है सतीश कुमार की वार्ता नागार्जुन का गद्य साहित्य।
1: नागार्जुन गांवों में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध रचनात्मक जिहाद छेड़ते हैं। वे लोक जीवन में व्याप्त विसंगतियां, अन्याय, अनाचार, पापाचार, सामंतवाद, मजदूरों की पीड़ाओं से होते हुए साम्राज्यवाद आदि अनेक तरह की बुराइयों पर गंभीर विमर्श करते चलते हैं। बड़ी बेवाकी और हिम्मत के साथ उन्होंने गांव की व्यथा कथा कही है। ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और अनेक तरह के पाखंडवादों के खिलाफ नागार्जुन की कथाएं एक तरह का आंदोलन है। तभी तो नागार्जुन जैसे लेखक रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वरनाथ, बलचनमा, हीरक जयंती, वरुण के बेटे, नई पौध, दुखमोचन, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, कुंभीपाक, गरीबदास और पारो जैसी कालजयी कलात्मक कृतियां रच पाते हैं। यह कहना ज्यादा सच होगा कि उनका कथा साहित्य अपने युग की परिस्थितियों की भावभूमि पर ही सृजित है। उन्होंने अपने उपन्यासों में ग्रामीण कथा भूमि के आधार पर अपनी राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति दी है। अपनी रचनाओं में नागार्जुन ने ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत समेत समस्त सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक बुराइयों पर नस्तर चलाया है। अपनी रचनाओं में नागार्जुन ने परंपरा और धार्मिक आडंबर के नाम पर गरीबों, दलितों और महिलाओं के शोषण को हमेशा निशाने पर रखा है। उनके उपन्यासों में 1930 से 1975 तक के भारत का राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहास एवं चेतना मुखर हुई है। उनका कथा साहित्य राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही सर्वहारा वर्ग के अंत

0: विरोधों तक फैला है। रतिनाथ की चाची बलचनमा वरुण के बेटे तथा बाबा बटेश्वरनाथ में कृषक आंदोलनों का जीवंत चित्रण हम पाते हैं। नागार्जुन रतिनाथ की चाची में लिखते हैं, मंत्रियों ने अपनी पीठ कर ली थी किसानों की ओर और मुख कर दिया जमींदारों की ओर। नागार्जुन का पात्र बलचनमा कहता है, किसानों की आज़ादी आसमान से उतर कर नहीं आएगी, वह प्रकट होगी नीचे धरती के भुरभुरे ढेलों को फोड़कर। बाबा बटेश्वरनाथ उपन्यास में नागार्जुन ने राष्ट्रीय आंदोलनों का चित्र प्रस्तुत करते हुए सर्वहारा वर्ग को संघर्षों के लिए उत्प्रेरित किया है। इस उपन्यास में नागार्जुन जनसंघर्ष के समर्थक के रूप में सामने आते हैं। इस उपन्यास का जय किशुन, जीवनाथ, वीरभद्र और श्याम सुंदरदास वकील उस प्रगतिशील चेतना का पक्षधर है जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए उत्प्रेरित और संगठित करता है। वरुण के बेटे उपन्यास जमींदार और मछुआरों के बीच वर्ग संघर्ष की कहानी है। मलाही और गुढ़ियारी गांव की गरीब जनता का संघर्ष इसका केंद्र बिंदु है। सतघरा के बाबू लोग पोखर के मलाहों को बेदखल करना चाहते हैं। जमींदारों की इस चाल के विरुद्ध मछुआरे संगठित होकर लड़ते हैं। एक पात्र गोनर बाबा कहता है, यह पानी सदा से हमारा रहा है, किसी भी हालत में हम छोड़ नहीं सकते। पानी और माटी न बिका है और न कभी बिकेगा। दलित मुक्ति तथा विधवा विवाह को नागार्जुन ने उपन्यासों में मुखरता से उठाया है। दुखमोचन उपन्यास में नागार्जुन ने विधवा विवाह तथा दलितों की स्थिति पर फोकस किया है। माया विधुर कपिल से विवाह करना चाहती है, समाज को यह कबूल नहीं है। लड़की ब्राह्मण और लड़का राजपूत है। एक पात्र कहता है, विधवा लड़की ने रंडुआ लड़के से संबंध कर लिया तो क्या बुरा किया, इधर उधर भटकती और भ्रष्ट होती तो गाँव कुल का नाम डुबोती। वह अच्छा होता कि यह अच्छा हुआ। वरिष्ठ आलोचक मैनेजर पांडे के अनुसार नागार्जुन ने अपने कथा साहित्य में स्त्रियों और दलितों के सवार पर तब ध्यान दिया था जब प्रायः इस देश के वामपंथी आंदोलन और उससे जुड़े हुए रचनाकार स्त्रियों और दलितों को गैर जरूरी मानते थे। आज के भारतीय समाज और उसकी राजनीति की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों और दलितों के संबंध में नागार्जुन की दृष्टि अधिक सार्थक, संभावनापूर्ण और दूरदर्शी साबित हुई है। रतिनाथ की चाची में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में घर के भीतर विधवा के यौन शोषण का विषय है, तो कुंभी पाक में आश्रम में रहने वाली विधवाओं एवं अन्य पीड़ित स्त्रियों के यौन शोषण को विषय बनाया गया है। वरुण के बेटे में स्त्री पुरुष संबंधों पर माधुरी की टिप्पणी अभिजात वर्गीय उच्छृंखलता पर करारा व्यंग्य है। वह एक अन्य पात्र मंगल से कहती है, सुनती हूँ बड़े आदमी का जब और कामों से मन भर उठता है तो दिल के टुकड़े इधर उधर फेंका करते हैं और दसियों घर बर्बाद कर छोड़ते हैं। नागार्जुन का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास बलचनमा बाबुओं की निचता, स्वार्थपरता और ढोंग का पर्दाफाश करते हुए गांधीवादी राजनीति पर करारा प्रहार करने से नहीं चूकता। लेखक उपन्यास में यह दिखाने में सफल रहा है कि उच्च वर्ग का व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए वर्गावरोहित होकर सामूहिक हित के लिए समर्पित होना तो दूर, अपनी सामान्य आदतों को भी नहीं बदल सकता। चर्चित आलोचक डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर लिखते हैं, बलचनमा फूल बाबू के साथ शहर में रहा। फूल बाबू स्वाधीनता संग्रामों में भाग लेकर जेल भी गया है। स्वाधीनता की चेतना यही से बलचनमा के दिमाग में समा गई और गांव लौटकर उसने देखा कि मजदूरी कम मिलती है, कच्ची तौल से दो चार सेर धान। उसकी छोटी बहन के साथ छोटे मालिक दुराचार की कोशिश करते हैं। नागार्जुन ने इनाम और मेहनत का फल आदि कुछ एक लघु कहानियां भी लिखी है। इनकी अधिकतर कथाएं बोध कथाओं सा आस्वादन देती है। नागार्जुन की कथाएं सौदस्य हैं। वे अपनी संक्षिप्त कथाओं का समापन निष्कर्ष के तौर पर एक दो खास पंक्तियों के साथ ही करते हैं। नागार्जुन का कथा साहित्य अपने समय का जीवंत दस्तावेज है।
1: अभी आप सुन रहे थे सतीश कुमार की वार्ता नागार्जुन का गद्य साहित्य। अब प्रस्तुत है राजकमल चौधरी की कहानी एक चंपाकली एक विस्तर। पाठ कर रहे हैं केसी सिन्हा।
2: दशरथ झा का परिवार बहुत छोटा है पर आंगन बहुत बड़ा। पहले सभी भाई साथ ही रहते थे। अब दशरथ झा इस पुराने बड़े उजड़े भंग धतूरे के जंगल से भरे आंगन में अपनी स्त्री और अपने बच्चों के साथ अकेले रह गए हैं। दशरथ की जीविका है भैंस चराना। बस उनके पास भैंस रह गई है। दोनों शाम मिलाकर 8-10 किलो दूध का प्रबंध इसी एक भैंस से होता है। पत्नी रामगंज वाली घर आंगन में व्यस्त रहती है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, दूसरा भैंस में, और 12वें वर्ष के अंतिम चरण में सुशील, आज्ञाकारिणी, प्रसन्नमुखी, मात्र एक ही पुत्री चंपा। शशि बाबू अपने 62 साल के जीवन में जब पहली बार अपने निकटस्थ पड़ोसी और दूरस्थ संबंधी दशरथ झा के घर में बीच आंगन में आकर खड़े हुए तो चंपा दीवार पर कंडा सहेज रही थी। रामगंज वाली थी कुआं के पास। शशि बाबू को देखते ही पानी से भरी बाल्टी उठाकर रस

कोई घर में घुस गई। गांव के रिश्ते में शशि बाबू रामगंज वाली के ससुर लगेंगे। दशरथ झा हंसते हुए खुशामद तरंगित स्वर में बोले, शशि बाबू तो अपने परिवार के ही आदमी हैं। चंपा, माँ को बोलो एक लोटा गर्म पानी का इंतजाम करे। गर्म पानी क्यों बाबूजी? संयत स्वर में चंपा ने पूछा। धीमे स्वर में रसोई घर से चंपा की माँ बोली, गर्म पानी का मतलब चाय। चंपा तुम दुकान से चाय और चीनी ले आओ, मैं पानी चढ़ा देती हूँ। दुकान जाने से ज्यादा कष्ट चंपा को और किसी काम में नहीं होता है। हर बार बाजार की किसी दुकान से लौटते वक्त चंपा कसम खाती है कि मर जाऊंगी, लेकिन अब दुकान कभी नहीं जाऊंगी। कोई भी वस्तु उधार लानी हो चंपा ही दुकान भेजी जाएगी। चंपा विरोध करेगी, मैं नहीं जाऊंगी, जुगेसर का 125 बाकी है, वो मुझे उधार नहीं देगा। लेकिन माँ कहेगी या दशरथ बोलेंगे, तुम नहीं जाओगी तो दूसरा कौन जाएगा? जुगेसर को बोलना कि उसका रुपया मैं पचा नहीं पाऊंगी, कल ही मेरा आलू उखड़ेगा, हम आलू बेचकर उसको रुपया दे देंगे। चंपा जानती है कि बाबूजी ने एक कट्ठा भी आलू नहीं रोपा है। चंपा का ये जाना हुआ है कि बाबूजी ऐसे ही जब तब छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ। लेकिन दक्षिण बरिया टोले के सबसे प्रतिष्ठित लोग आंगन में आ गए हैं और पहली बार आए हैं। बाबूजी को शशि बाबू से निश्चय ही कोई बहुत जरूरी काम है, इतनी बात जानने की स्त्री सुलभ क्षमता है उसमें। चंपा माँ को बिना कोई उत्तर दिए ही जुगेश्वर बनिया की दुकान की तरफ चली गई। भगवती की प्रतिमा जैसी सुंदर, बुद्धिमान और सुशील कन्या चंपा और शशि बाबू के साथ पूरब के कमरे में चले गए दशरथ। चंपा, चंपा की माँ और दशरथ इसी घर में रहते हैं। दीवार पर एक पुराना कैलेंडर टंगा है। शशि बाबू मानो दशरथ से कोई महत्वपूर्ण गप सुनने की प्रतीक्षा करते, बहुत देर तक इस कैलेंडर की तरफ ताकते रह जाते हैं। द्रौपदी विवस्त्र है, क्रोध से उन्मत्त दुःशासन, गर्व से अंधा सुयोधन, ग्लानी और संताप से सर झुकाए लज्जित पांचों पांडव, द्रौपदी की देह पर थान के थान साड़ी गिराते श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कैलेंडर के चित्र में मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। शशि बाबू भी मन ही मन मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं, लेकिन दशरथ को इतना समझने में कोई त्रुटि नहीं हुई कि मेरे आंगन में आकर मेरे कमरे में इस पुराने पलंग पर बैठकर शशि बाबू प्रसन्न है। इसी प्रसन्नता की आवश्यकता दशरथ झा को है। शशि बाबू पूर्णिया जिला कचहरी में हेड किरानी थे, अब स्थायी रूप से गांव में ही रहते हैं। शशि बाबू का परिवार बहुत बड़ा, दो विधवा बहन, तीन पत्नी से चार पुत्र और चारों पुत्रों के अपने अपने छोटे छोटे परिवार। आपसी बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। शशि बाबू जब तक जीवित हैं बंटवारा असंभव। तीन बार शादी करने के बाद भी शशि बाबू फिलहाल स्त्री विहीन है। तीसरी पत्नी 5 ही साल पूर्व स्वर्गवासिनी हुई है। अब शशि बाबू बूढ़े हो गए हैं, फिर भी परिवार का और रुपये पैसे का सारा हिसाब किताब वे करते ही रहते हैं। स्टील संदूक की चाबी वे अभी भी अपने ही जनेऊ में रखते हैं। आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? इसी प्रेम वाक्य से दशरथ ने अपनी बातें शुरू की। शशि बाबू पॉकेट से पनबट्टी बाहर कर पान जर्दा खा रहे थे। पनबट्टी बंद कर पॉकेट में रखने के बाद बोले, मुझसे जो सहायता हो सकेगी मैं अवश्य करूंगा, लेकिन आप स्पष्ट बोलिए आपको कितने रुपए चाहिए। दशरथ झा मन ही मन हिसाब लगाते हैं, चंपा की शादी का हिसाब। शशि बाबू से कितने रुपए कर्ज मांगने चाहिए? 700, 1000। दशरथ झा को अपनी बेटी की शादी किसी साधारण परिवार में करने के लिए भी अंततः 2000 रुपया चाहिए। हिसाब जोड़ लेने के बाद दशरथ बोले, पहले चाय पी लीजिए। मैं क्या कहूंगा, रामगंज वाली स्वयं आपसे गप करेंगी, आपसे क्या छिपा है, आप मेरे लोग हैं। चंपा के लिए एक परम उपयुक्त लड़का दशरथ झा ने देखा हुआ है। लड़का के पिता से दशरथ झा की मित्रता है। लड़का सहरसा कॉलेज में बीए में पढ़ता है। रामगंज वाली शादी का सारा खर्च मन ही मन जोड़ चुकी है। यदि 10 कट्ठा बेच दिया जाए तो 1500 रुपए अवश्य मिलेंगे। 300 असरफी, सोने का गहना घर ही में है। यदि शशि बाबू 500 की भी व्यवस्था कर दें तो बहुत है। चाय और चीनी की पुड़िया माँ के पास रखकर चंपा बरामदे में खड़ी है। शाम होने में अब कम ही देरी है। आज दोपहर में पानी बरसा था, मूसलाधार बारिश, आंगन में कीचड़, सड़क पर कीचड़। चंपा दुकान जाते वक्त फिसल कर गिर गई थी। माँ बोली, तुम साड़ी बदलकर केश बांध लो, जल्दी करो, शशि बाबू ज्यादा देर बैठेंगे नहीं, जल्दी करो, शशि बाबू को चाय और पान दे आओ। चंपा कुएं के पास चली गई, बाल्टी में पानी भर लिया, काफी देर तक हाथ पैर धोती रही। कनपट्टी के पास का मैल भौं का मैल, लेकिन चंपा की देह में मैल कहीं नहीं है, मात्र मैल का भ्रम है उसके मन में। थोड़ी देर

पहले दुकान के पास गिर गई थी तो अभिमन्यु चौधरी का भतीजा परीक्षित इतनी जोर से हंसा था, लाज के मारे रंग गई थी चंपा। लाज से, क्रोध से, अपमान से आरक्त हो गई थी। संदेह हुआ था कि परीक्षित कोई अपशब्द भी बोला है। यद्यपि परीक्षित मात्र हंसा ही था, बोला नहीं था। चंपा ऐसे ही इसी अल्प वयस में सतत मैल के भ्रम से, अपशब्द के संदेह से, अपमान के संदेह से व्यथित और चिंतित होती रहती है। हाथ पर धोलने के बाद बाल सींचकर लाल साड़ी पहनकर शशिबाबू के हाथ में चाय की प्याली देनी ही

के संदेह से, अपमान के संदेह से व्यथित और चिंतित होती रहती है। हाथ पर धोलने के बाद बाल सीट कर लाल साड़ी पहनकर शशि बाबू के हाथ में चाय की प्याली देनी ही होगी। माँ जो कहे वो करना चाहिए, वही करती है चंपा। इच्छा नहीं भी रहती है तो भी करती है, जैसे दुकान से उधार लाना, जैसे ललितेश के आंगन जाना। चंपा उस कमरे में प्रवेश करना नहीं चाहती है जिसमें पलंग पर बैठे हैं शशि बाबू और खुशामद मिन्नत की मुद्रा में एक ठो पीढ़ी पर नीचे बैठे हैं चंपा के पिताजी दशरथ झा। चंपा को शर्म नहीं होती है, होती है ग्लानी, आत्मवेदना कि बाबूजी ऐसे क्यों हैं, ऐसे दरिद्र और ऐसे क्षुद्र बाबूजी पलंग पर क्यों नहीं बैठे हैं, कौन से स्वार्थ के कारण अभी शशि बाबू के लिए चाय बनाई जा रही है, माँ इतनी अस्त व्यस्त क्यों है, आप बैठे मैं दो मिनट में आता हूँ। इतना कहकर दशरथ कमरे के बाहर बरामदे में आए, लोटा हाथ में लिया और आंगन से बाहर हो गए। शशि बाबू द्रौपदी चीर हरण का कैलेंडर देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि दशरथ झा को रुपया दिया जाए या न दिया जाए। विशेष संभावना तो इसी बात की थी कि रुपया डूब जाएगा, लेकिन रुपया नहीं दिया जाए तो चंपा की शादी कैसे होगी, और दशरथ चले कहाँ गए, वे कहते थे कि रामगंज वाली खुद हमसे बात करेगी, वो क्यों करेगी गप। आगे आगे रामगंज वाली एक हाथ में हलवे की तश्तरी, दूसरे हाथ में पानी का लोटा गिलास लिए और उसके पीछे में छिपी सी लाल साड़ी और लाल ही ब्लाउज पहने काफी सकुचाई हुई अति लजबिज्जी चंपा। रामगंज वाली घूंघट नहीं डाले है, बड़ी बड़ी आंखों में सुंदरता तो अवश्य है लेकिन स्त्री सुलभ लज्जा नहीं, लज्जा स्त्री आंख की आंतरिक ज्योति है। रामगंज वाली की आंखें जैसे पत्थर से बनाई गई हों, सुंदर किंतु जिसमें कोई आकर्षण शक्ति नहीं। चंपा के हाथ से चाय की प्याली लेते वक्त शशि बाबू ने अनुभव किया कि चंपा का हाथ थर थरा रहा है, चंपा का अंग अंग कांप रहा है, समूचा ललाट पसीने से भीगा, दोनों आंखें जैसे आंसू से झलमलाती हुई। शशि बाबू अनुभव किए यदि क्षण भर भी चंपा यहाँ खड़ी रहे तो इसी जगह तिलमिलाकर गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी। माँ की किसी नई आज्ञा की प्रतीक्षा चंपा ने नहीं की। चाय की प्याली शशि बाबू के हाथ में देने के बाद चंपा माँ की तरफ उपेक्षा की तीक्ष्ण दृष्टि से देखती हुई चुपचाप कमरे से बाहर हो गई। आंगन में एक क्षण खड़ी रही और आंगन से बाहर होकर अपनी सहेली अन्नपूर्णा के आंगन की तरफ चली गई। चंपा जब काफी दुख में डूबी रहती है तो चुपचाप अन्नपूर्णा के घर जाकर सो जाती है। दशरथ रुपए के विषय में कुछ नहीं बोले, कितने रुपए चाहिए और क्या क्या चाहिए। शशि बाबू ने चंपा के तीव्र पलायन से थोड़ा निश्चिंत होते हुए समीप में खड़ी रामगंज वाली से पूछा, दशरथ कहाँ हैं? रामगंज वाली बोली, वे तो बथान की तरफ गए हैं, आते ही होंगे, लेकिन उनके रहने से क्या और उनके न रहने से क्या, वे नहीं कहेंगे, मैं ही कहूंगी। चंपा मेरी बेटी है, बेटी पर मात्र माँ का ही अधिकार रहता है, पिता का कोई अधिकार नहीं। माँ अपनी बेटी के लिए प्राण देती है, मैं भी देती हूँ, इसलिए मैं ही आपसे बात करूंगी। रामगंज वाली के इस निर्द्वंद ओजस्वी और स्पष्ट भाषण से शशि बाबू मन ही मन सशंकित होते हैं। क्या कहना चाहती हैं दशरथ की स्त्री? शशि बाबू थोड़ा संभल कर बैठते हैं। दशरथ क्यों चले गए? चंपा क्यों भाग गई? क्यों रामगंज वाली इतनी निकटता से और इतनी भूमिका बांधकर गप कर रही है? शशि बाबू गांव के नहीं है, सब दिन शहर बाजार में ही रहे, गांव के रीति रिवाज, गांव की राजनीति, गांव के लोगों के आचार, भाषा और व्यवहार उनका जाना हुआ नहीं है, इसलिए रामगंज वाले की भूमिका को जानने की उचित क्षमता शशि बाबू की नहीं है। रामगंज वाली मुस्कुराई, बोली, चंपा की शादी में कुछ नहीं तो 2,250 रुपए लगेंगे, हम लोगों के पास मात्र 1 बीघा 10 कट्ठा खेत है और एक भैंस है, यदि 10 कट्ठा खेत बेचूं तो मिलेंगे 500 रुपए। शशि बाबू ने बीच में ही टोका, भैंस क्यों बेचिएगा, खेत क्यों बेचिएगा, और बेच लीजिएगा तो जीवन कैसे चलेगा। रामगंज वाली संभवतः यही प्रश्न सुनना चाहती थी, अतः ये प्रश्न सुनकर हंसी, जैसे किसी सुखांत नाटक की नायिका और अभिनेत्री हंसती है। उसी तृप्त मुद्रा में हंसकर रामगंज वाली बोली, आपने ठीक कहा, जब ये सब बेटी की शादी में बेच ही लूंगी तब जीवन कैसे चलेगा, अपनी ही लात अपने ही पेट पर मारना उचित नहीं, इतना मैं जानती हूँ, इसीलिए हम लोग आपके शरण में आए हुए हैं, आप ही, मात्र आप ही हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं। रामगंज वाली के मुंह से ये गप सुनकर शशि बाबू विरक्त हो गए, गुस्सा हुआ कि हम क्यों यहाँ समय नष्ट कर रहे हैं। कल परसों से ही दशरथ झा 1,000 बार इस वाक्य की आवृत्ति कर रहे हैं कि शशि बाबू उनका और उनके परिवार का

0: पर कर सकते हैं, जबकि उद्धार करने हेतु नहीं एक दूसरे स्वार्थ से शशि बाबू इस असमय में ऐसे एकांत में दशरथ झा के आंगन में आए हैं। शशि बाबू का घर डीह का स्थान बहुत कम, परिवार बहुत बड़ा और दशरथ झा का आंगन शशि बाबू के दीवार से सटा ही है पश्चिम की तरफ। यदि दशरथ झा अपने आंगन के पूरब के हिस्से में 12 धूर जमीन शशि बाबू के हाथ बेच लें तो उनके मूल्य रूप में चंपा की शादी में 1200 रुपए देने में शशि बाबू को कोई कष्ट नहीं होगा। शशि बाबू उद्धार करने नहीं 12 धूर घर डी खरीदने के लिए दशरथ झा के आंगन आए हैं। वे विरक्त हुए कि रामगंज वाली मूल कथा पर नहीं भूमिका पर इतना समय नष्ट कर रही है। लोग मुफ्त में संदेह करेंगे कि शशि बाबू क्यों अपने पड़ोसी के आंगन में इतनी देर तक एकांत कमरे में बैठे हैं। काफी देर बाद अपने मन को स्थिर करके किंचित गंभीर मुद्रा बनाकर थोड़ी हतप्रद जैसी रामगंज वाली बोली, मैं खेत नहीं बेचूंगी, घर भी नहीं बेचूंगी, भैंस नहीं बेच सकती हूँ, मुझे एक चंपा ही नहीं है और संतानें भी हैं, उन लोगों के मुंह में चाबी नहीं लगाई जा सकती है। शशि बाबू बोले, घर भी नहीं बेचिएगा तो क्या कीजिएगा, कितना रुपया लीजिएगा हमसे। रामगंज वाली ने उत्तर दिया, आपसे ज्यादा नहीं 1500 रुपये हम लोग लेंगे, 1500 रुपया नगद और अपने मन से चंपा को आप जो गहना कपड़ा साड़ी जो दीजिएगा वो अपने मन से, आप जैसे धनी समझदार और विद्वान लोगों के साथ चंपा जीवन भर सुखी रहेगी, जीवन भर आनंद करेगी, आप ही हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं। शशि बाबू अब इस बात का असली अर्थ समझ गए, इसी कारण से इतनी भूमिका बांधी जा रही थी शशि बाबू स्वयं चंपा से शादी करें, ये दशरथ झा और रामगंज वाली का उद्देश्य यही था। योजना स्वयं रामगंज वाली ने बनाई है, यदि 60 साल का सुंदर स्वस्थ पराक्रमी वृद्ध शशि बाबू 13 साल की आत्ममुग्ध लज्जामयी स्पर्शहीन नवीन चंपा कली से शादी करें तो शशि बाबू के संपूर्ण राजकाज संपूर्ण धन संपत्ति पर रामगंज वाली का और दशरथ का पंजीकृत अधिकार अर्थात एकाधिकार हो जाएगा और महारानी जैसी वृद्ध शशि बाबू के संसार में पट रानी सी राज करेगी मेरी चंपा। मेरी चंपा कली चाय देते वक्त चंपा आई थी, शशि बाबू को अवश्य ही पसंद आई होगी, मेरी बेटी मेरी प्यारी सुकुमारी बेटी, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा सरल निश्चल स्वभाव, ऐसा बुद्धि विचार गांव भर में दूसरी किसी की बेटी का नहीं है। एक बार अपने दालान पर अपनी मित्र मंडली के समक्ष परिहास अवश्य किया था, शशि बाबू ने कहा था, मन होता है कि फिर एक शादी कर लूं, लेकिन ये विनोद ही था सत्य नहीं। 62 साल की इस विचित्र उम्र में शादी करने की कोई आकांक्षा शशि बाबू नहीं रखते हैं, मुक्त हृदय हैं वे, अब किसी जाल जंजाल में नहीं पड़ेंगे। पलंग से नीचे उतरकर धरती पर खड़े होते ही शशि बाबू कठिन स्वर में बोले, आपकी बात मैंने सुन ली, दशरथ झा से आप ये कह दीजिएगा मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, बहुत नहीं, चंपा मेरी बेटी कल्याणी से 22 साल छोटी है और मेरी बेटी की बेटी मुन्नी से 4 साल छोटी है, मैं चंपा से कितने साल बड़ा हूँ, आपके पति देव दशरथ झा हमसे कितने साल छोटे हैं, रामगंज वाली आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया। रामगंज वाली ने परम विषाक्त और परम विरक्त दृष्टि से एक बार शशि बाबू की तरफ देखा, शशि बाबू आतंकित हो गए, जैसे उनके सामने कोई स्त्री कोई रामगंज वाली बहू नहीं खड़ी हो, जैसे उसके सामने फन काढ़े कोई विषधर खड़ा हो, कोई भयावह विषधर। रामगंज वाली ने शशि बाबू को कोई उत्तर नहीं दिया, कोई वाक्य नहीं, कोई शब्द नहीं। विषधर का उत्तर होता है उसका विष, उसका विषदंत। लेकिन विधि का यह कैसा विधान है कि इस सामाजिक घटना में शशि बाबू विषधर नहीं है, विषधर है चंपा की माँ रामगंज वाली।
1: अभी आप सुन रहे थे राजकमल चौधरी की कहानी एक चंपा काली एक विषधर, पाठ कर रहे थे केसी सिन्हा। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए नरेंद्र से उनकी कुछ गजलें।
2: कुछ गजलें पेश कर रहा हूं। घरों को बांट दो, तकसीम कर दो घर के चूल्हों को, घरों को बांट दो, तकसीम कर दो घर के चूल्हों को, मगर यादों का क्या होगा, बसी हैं जो दीवारों में। घरों को बांट दो, तकसीम कर दो घर के चूल्हों को, मगर यादों का क्या होगा, बसी हैं जो दीवारों में। कभी हम खोजते थे जिंदगानी को सितारों में, कभी हम खोजते थे जिंदगानी को सितारों में, बदलते वक्त ने

0: को भी बदला इश्तिहारों में। सुना गांवों में पहले लोग रहते थे मोहब्बत से, सुना गांवों में पहले लोग रहते थे मोहब्बत से, मोहब्बत खोजते हैं लोग जाकर अब बाजारों में। हवा भी तेज है और ना खुदा भी बेखुदी में है, हवा भी तेज है और ना खुदा भी बेखुदी में है। सफीने मौज से लड़कर लगे हैं अब किनारों में, वही किरदार चेहरे को बदल हर बार आता है, वही किरदार चेहरे को बदल हर बार आता है। चलो क्या देखना है, क्या रखा है इन नजारों में, चलो क्या देखना है, क्या रखा है इन नजारों में। अगली रचना है, लगाओ भीड़ ऐसी जिसमें केवल सर नजर आए, लगाओ भीड़ ऐसी जिसमें केवल सर नजर आए, कोई रहबर नहीं हो भीड़ ही रहबर नजर आए। लगाओ भीड़ ऐसी जिसमें केवल सर नजर आए, कोई रहबर नहीं हो भीड़ ही रहबर नजर आए। नई तहजीब में पोशाक की यह बानगी आई, नई तहजीब में पोशाक की यह बानगी आई कि पर्दा भी रहे और जिस्म भी खुलकर नजर आए, कि पर्दा भी रहे और जिस्म भी खुलकर नजर आए। तराजू है मगर वह तोलते हैं इस नफासत से, तराजू है मगर वह तोलते हैं इस नफासत से, खरीदारों को पासंग में भी सब बेहतर नजर आए। और गरीबों के लिए सरकार जो खोली बनाती है, गरीबों के लिए सरकार जो खोली बनाती है, वो ऐसा घर है जो बस देखने में घर नजर आए। यहां फुटपाथ पर ऐसे हजारों लोग सोए हैं, यहां फुटपाथ पर ऐसे हजारों लोग सोए हैं जिन्हें देखो तो अपने मुल्क का स्तर नजर आए। जरूरी ये नहीं कि शायरी का इल्म हो सबको, जरूरी ये नहीं कि शायरी का इल्म हो सबको, जरूरी है कि वह अंदाज से शायर नजर आए, जरूरी है कि वह अंदाज से शायर नजर आए।
1: अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र से उनकी कुछ गजलें। इसी के साथ साहित्य के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब समाप्त होता है। प्रस्तुतकर्ता शंकर कैमोड़ी के साथ अमलनाथ ठाकुर को दीजिए विदा, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य की, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,

0: मैं भवेश आपका रेडियो मित्र और आज के इस सुहाने सफर में आपके साथ मुखातिब हूँ। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल करें, हमारे नंबर 9430023533 पर, और सुने अपने पसंद के पुराने फिल्मी गाने अभी से लेकर रात के 11 बजे तक। आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन हैं। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कौन साहब बोल रहे हैं, कहां से?
1: मैं आनंद कुमार चौधरी बोल रहा हूं, मकरमपुर गांव से, देनीपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है।
0: अच्छा, आप हमारे साथ मकरमपुर गांव से जुड़े हैं जो बेनीपुर प्रखंड में आता है। चलिए बहुत ही अच्छी बात, खुशी की बात, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: और सब कहिए सर, कहाँ रहते हैं सर, गायब हो जाते हैं, आते हैं बहुत दिन के बाद इस प्रोग्राम में आते हैं सर।
0: जब आप लोग दिल से मुझे याद करते हैं तो आप सबों के समक्ष मैं उपस्थित हो जाता हूँ। जी फरमाइश हमें बता दीजिए, फरमाइश हमें बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश आपने की है, आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे। और आनंद जी कुछ बातें कर लें। जी आनंद जी, एक बात बताइए, रेडियो पर फरमाइश करने का सिलसिला कब से चल रहा है आपका, कब से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं?
1: 2008 से चल रहा है सर, उदी से सुनिए रहे हैं। पहले प्रभात जी आते थे, उसका संजय जी तो भैया है, तो उसी समय से सुनते आ रहे हैं।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और हम चाहेंगे कि आपका लगाव, आपका प्यार हम सबों को यूं ही मिलता रहे, आप कार्यक्रम से जुड़े रहें।
1: यही एक ऐसा कार्यक्रम है सर जो रात में आदमी फ्री हो जाता है, 10 बजे के
0: जी,
1: तो 9 बजे से पहले तक जो होता है एंगेज रहता है, 10 बजे होता है, और प्रोग्राम में तो सर आदमी अपना जो है रोजी रोटी लगा रहता है, इसलिए जो है सो इसमें एक ही चीज है सर, इतना जो कॉलर है ना सर लगभग नहीं करता है, लगाते लगाते घंटों भी जाता नहीं लगता है।
0: चलिए जानकर बहुत जी आनंद जी, जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी शिद्दत से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, और हम चाहेंगे कि यूं ही आप कार्यक्रम में फोन लगाते रहें, अपनी फरमाइश सुनते रहें। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पसंद का ही। जी बोला जाए।
1: जी लगने से पहले सोचते हैं कुछ बात और अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन जब लग जाता है तो नर्वस हो जाते हैं, क्या बात करें, नहीं करें।
0: नर्वस होने की कोई
1: खुशी से हो जाते हैं सर।
0: चलिए खुशी से हो जाते हैं तो चलिए अच्छी बात है। अपनी पसंद का ये गीत सुनिए और अपने संतुलन को बना के रखिए, नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। आनंद जी आप कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी
1: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार।

0: हेलो हेलो।
1: हाँ हेलो,
0: जी अपना नाम बताएं।
1: हम बोल रहे हैं, कादिर अली बोल रहे हैं, नार मंटोला जिला मधुबनी बिहार से बात कर रहा हूँ।
0: कादिर अली जी, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं?
1: हम तो अच्छे, अपना बताइए।
0: बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबों के साथ हूँ कार्यक्रम में। और फरमाइश बता दीजिए, बातचीत होती रहेगी।
1: लैला मजनू सुना दीजिए। हाँ,
0: लैला मजनू का?
1: कोई पत्थर सुना वाले भाई दीवाने को।
0: बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत ही शानदार पसंद है आपकी। और
1: जी
0: लैला मजनू का ये गाना आप सुनना चाहते हैं, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। और कादिर अली जी बताइए, आस प आस पड़ोस आस
1: अपना
0: पड़ोस और घर परिवार का हालचाल बताएं, सब कैसे हैं?
1: अच्छे हैं, अपना बताइए सर।
0: बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सबों के साथ हूँ, कार्यक्रम से जुड़ा हूँ। जी, और क्या क्या करते हैं कादिर अली जी, कुछ अपने बारे में बताएं।
1: हम तो ड्राइवरी करते थे, अभी घर बैठे हुए हैं। अभी प्रोग्राम लगाया, आपका कॉल लग गया मेरा।
0: अच्छा, और आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित और कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं, कुछ कुछ
1: बहुत
0: बताएंगे?
1: कार्यक्रम सुनते हैं
0: जी, कुछ
1: मैं आपके अनुरोध पर, आपकी फरमाइश,
0: जी
1: आपके
0: जी
1: अनुरोध पर, आप फरमाइशी वाला जो होता है।
0: अच्छा, फिल्म संगीत से जुड़े लगभग सारे कार्यक्रम आप सुनते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा जानकर। और आपकी पसंद का ये गीत बिना देर किए आपके रेडियो सेट तक हम पहुंचा रहे हैं।
1: 2008 से आपका प्रोग्राम हम लोग सुन रहे हैं।

0: चलिए, अच्छा लगा जानकर, बहुत खुशी हुई जी। आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार भैया। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। मैं हूं आपका रेडियो मित्र भवेश। आइए सुनते हैं अगली फरमाइश। हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला नमरवा ग्राम दूरा प्रतिनिधि मुकेश कश्यप बात कर रहा हूं सर आपसे।
0: मुकेश कश्यप
1: जी सर।
0: जी मुरादाबाद यूपी से बोल रहे हैं।
1: जी सर। जी सर।
0: बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं कश्यप जी?
1: सर मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहे थे और आपको कॉल भी लगा रहे थे, इसके बाद मेरी कॉल लगी, बहुत ही खुशी हो रही है।
0: चलिए, हमें भी बहुत खुशी होती है जब नए कॉलर शामिल होते हैं, अच्छा लगता है।
1: जी सर।
0: जी फरमाइश हमें जल्दी से बता दें।
1: सर जाना
0: जी
1: बोले के गीत।
0: चलिए बहुत खूब, बारिश से संबंधित गाने की फरमाइश आपने की है। और मौसम का हाल बताएं, कैसा है उधर उत्तर प्रदेश में? कैसा
1: सर, हमारे यहाँ काफी काफी गर्मी थी लेकिन कल हमारे यहाँ बारिश पड़ी है, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था, रात से बहुत ज्यादा गर्मी थी।
0: चलिए आज दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी लेकिन
1: बहुत ज्यादा।
0: हाँ, इधर भी हम लोगों के इधर भी काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और बीच बीच में एक आध दिन बारिश होने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन मिला जुला कर कहें तो गर्मी का बहुत तपिश है, झेल रहे हैं हम सब भी। जी
1: जी सर।
0: मुकेश जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर। जी
1: नमस्कार।
0: जी धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम में अपनी फरमाइश सुनने के लिए आप हमें कॉल करें हमारे नंबर 9430023535 पर और सुने अपनी पसंद के पुराने फिल्मी गाने अभी के अभी अपने रेडियो सेट पर। हेलो
1: आजाद सर
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: हम मोहम्मद इस्लाम बोल रहे हैं।
0: जी मोहम्मद इस्लाम, बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं?
1: ठीक है सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: महाराजगंज से।
0: आप दरभंगा लहरियासराय से बोल रहे हैं?
1: लहरियासराय से।
0: बहुत खूब, आप तो एकदम हमारे करीब से बोल रहे हैं, एकदम दिल के करीब हैं। और जी इस्लाम साहब, फरमाइश बता दीजिए।
1: का गाना है सर मोहम्मद रफी की आवाज में
0: जी,
1: क्या मिले ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी गए हैं।
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश आपने की है। और आपको मैं बतला दूं कि इस गीत के बोल शाहिर लुधियानवी ने लिखे हैं और जी, और इस गाने को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश आपने की है
1: जी। सुनने के बाद मन को रंगी हो जाता है
0: जी, बिल्कुल। और हम भी चाहते हैं कि हमारे श्रोता हमेशा खुश रहें जी, अच्छे रहें जी। तो इस्लाम साहब, आपका

0: हेलो
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: जी, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात है, मध्य प्रदेश से। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं?
1: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आकाशवाणी से जुड़े हुए रहते हैं। और अभी आपका प्रोग्राम में प्रसार भारती मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन रहा हूँ। काफी अच्छा प्रोग्राम जाता है और हमेशा रात के समय में मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ, जुड़ जाता हूँ। खैर, कोशिश करने की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की
0: जीत होती है,
1: जीत होती है सर जी।
0: बिल्कुल। और आप कार्यक्रम में जुड़े, सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामना। फरमाइश हमें
1: धन्यवाद
0: बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, बातचीत होती रहेगी।
1: जी
0: जी
1: सर जी, आज गाना सुनना ही है। राजकुमार जी जो अभिनेता है पुराने,
0: जी जी आज
1: उनकी
0: आज
1: पुण्यतिथि
0: उनकी पुण्य
1: है।
0: पुण्यतिथि है। जी जी
1: पुण्यतिथि है उनकी,
0: जी जी
1: तो उनको ही एक सॉन्ग मेरा समर्पित रहेगा।
0: बहुत खूब,
1: फिल्म
0: बहुत
1: का
0: खूब।
1: नाम है नीलकमल,
0: जी। और लोग,
1: नीलकमल ने
0: और
1: गाया है।
0: वर्मा जी, आपको आपको मतलब आपको और सारे श्रोताओं को बता दें कि राजकुमार साहब भले ही 3 जुलाई 1996 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका अभिनय और उनका रुतबा हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: सर,
0: और
1: और
0: जब
1: उनका गाना
0: आपने,
1: है ये
0: जी
1: नीलकमल
0: जी
1: फिल्म का।
0: बिल्कुल, और महान कलाकार को उनकी पुण्यतिथि पर हम नमन करते हैं, और जिस गीत की आपने फरमाइश की है, श्रद्धांजलि के रूप में हम उन्हें समर्पित करते हैं। लोकेंद्र वर्मा जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का ये गीत आप तक हम
1: जी
0: पहुंचाने
1: सर,
0: की कोशिश कर रहे हैं। जी
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, अपना नाम बताएं।
1: मैं राम कुमार साह सिमरिया भिंडी पंचायत कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। जी,
0: जी, राम कुमार साह जी, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं?
1: कृपा है आप लोगों की और ऊपर ईश्वर वालों की। मैं सानंद हूँ और मनाता हूँ कि आप लोग भी सानंद होंगे।
0: साह जी, कहना चाहूँगा कृपा ऊपर वाले की होती है और उनकी कृपा से ही हम सब ठीक मतलब रहते हैं। जी
1: खैर, शुभकामना तो होता है
0: जी जी
1: नसीबान।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी सर,
0: शुभकामना
1: जी
0: आपको
1: सर,
0: भी जी। और
1: जी सर।
0: राम कुमार साह जी, फरमाइश पहले बता दें।
1: फरमाइश, खानदान है वो पुराना है, नील गगन पे उड़ते बादल,
0: जी,
1: है ना।
0: मोहम्मद मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में सुनना चाहते हैं। बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश आपने की है। राजेंद्र कृष्ण ने इनके बोल लिखे थे इस गीत के, और संगीत रवि ने दिया था। जी, बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश की है।
1: जो मुझे बहुत पसंद है।
0: जी जी
1: और दूसरी बात कि
0: जी
1: आज जो राजकुमार जो माने महान अदाकारा हैं,
0: जी जी
1: उनका जो उनकी जो पुण्यतिथि है, इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना
0: जी
1: चाहता हूँ।
0: जी
1: राजकुमार
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और राम कुमार साह जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, और एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कार्यक्रम अभी आप तक कैसा पहुँच रहा है?
1: बहुत स्पष्ट आवाज है
0: जी,
1: और सब व्यवस्थित रूप से चल रहा है ये प्रोग्राम।
0: कार्यक्रम को आप अपने रेडियो सेट के माध्यम से सुन रहे हैं या मोबाइल ऐप पर?
1: नहीं, रेडियो मेरे पास है, बहुत पुराना सा छोटा सा रेडियो है,
0: जी जी
1: उसे मैं मरम्मत करा कर सुन रहा हूँ, है
0: चलिए
1: ना। वो बहुत पसंद करते हैं, फिलिप्स
0: चलिए
1: का है, बड़ा अच्छा दे रहा है साउंड।
0: जी, जानकर
1: जी
0: बहुत
1: सर,
0: जी, जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो को मरम्मत करा के और रेडियो के माध्यम से हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा।

0: जी जी
1: जी आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद मोबाइल ऐप पर भी ले सकते हैं।
0: जी सर,
1: आपकी पसंद का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद श्रीमान को भी।

अगला कॉल लेने से पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। श्रोताओं, वन संरक्षण के बिना पर्यावरण संतुलन तो खतरे में है ही, दिन ब दिन हमारा जीवन भी आसान नहीं रहने वाला। वन संरक्षण का महत्व और हमारी जिम्मेदारी, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06272 222481 एवं

0: 9430023953। समय याद रखें रविवार 5 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं, कौन सा आप बोल रहे हैं, कहां से?
1: जी मैं श्रीपाल गोयल हरियाणा बहादुरगढ़ से बात कर रहा हूं सर।
0: श्रीपाल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं?
1: ठीक है सर, बताइए कैसे हो? काफी टाइम बाद फोन लगे सर।
0: काफ़ी टाइम बाद फ़ोन लगी है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आपने प्रयास जारी रखा और आज कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है, फरमाइश जल्दी से बता दें।
1: फिल्म का नाम राजकुमार, तुमने पुकारा हो हम चले आए।
0: बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश की है, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में।
1: जी सर
0: जी, हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।
1: जी।
0: चलिए बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश की। और गोयल जी, हरियाणा में क्या करते हैं आप?
1: सिविलियन काम करते हैं सर, अभी करते हैं और सुबह शाम ट्रेन से अप डाउन करते हैं।
0: अच्छा, और
1: हाँ जी।

0: की है, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में।
1: जी सर
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। जी
1: जी
0: जी
1: जी सर,
0: चलिए, बहुत ही अच्छे गाने की फरमाइश की। और गोयल जी, हरियाणा में क्या करते हैं आप?
1: दिल्ली में काम करते हैं सर, अभी रहते हैं और सुबह शाम ट्रेन से अप डाउन करते हैं। हाँ
0: अच्छा, और
1: जी,
0: रात में फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम सुन के दिन की
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: थकान को
1: बिल्कुल सर,
0: मिटाते हैं। चलिए, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा जान के।
1: बिल्कुल सर।
0: जी
1: सोमवार को या शुक्रवार को दोनों दिन सुनते हैं।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप हमसे जुड़े हैं और इतनी शिद्दत से कार्यक्रम को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा जान के। यूं ही आप कार्यक्रम में शामिल होते रहिए, हमें आपके
1: हाँ जी
0: कॉल्स का
1: जी
0: इंतज़ार रहेगा। जी
1: धन्यवाद
0: जी
1: आपका।
0: गोयल जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का ये गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: हेलो हेलो
1: हेलो प्रणाम भैया। हम
0: जी प्रणाम, अपना नाम बताएं।
1: मुबारकपुर दिल्ली से अक्रम बोल रहे हैं, गांव कुटवरना जिला दरभंगा वाले भैया, पुराने श्रोता है आपके। हम
0: जी बिल्कुल अक्रम जी, कैसे हैं?
1: हाँ सब ठीक है भैया।
0: हम जानते हैं कि आप हमारे नियमित श्रोता हैं जी।
1: हाँ जी
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: गर्मी का टाइम है
0: जी,
1: जितना बारिश होगा उतना गर्मी पड़ेगा, ये तो मौसम है
0: जी जी
1: बदलता रहता है मौसम।
0: गर्मी का मौसम है और गर्मी के बाद जाहिर सी बात है कि बरसात
1: आएगी।
0: जी
1: बरसात तो होंगे, इतना होंगे, ये मौसम ही ऐसा है, ये तो
0: जी
1: हर
0: जी
1: साल की कहानी है, कोई पहले दफे नहीं है
0: जी और पानी का बरसना बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए जी। अकरम हुसैन साहब, अपना फरमाइश हमें अपनी बता दें, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: गाना भैया रफीक साहब की आवाज में है
0: जी जी
1: हाँ, ये माना मेरी क्या मोहब्बत सजा है, तो का गाना है
0: जी जी,
1: थोड़ा लंबा भी नहीं है, इसीलिए मेरे ख्याल से आप दूसरा कॉलर का भी नंबर नहीं आएगा, ये गाना बहुत ही लंबा है भैया।
0: हेलो
1: हाँ हाँ भैया
0: जी जी अकरम हुसैन साहब, आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे और बिना देर किए ये गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: हाँ, प्रणाम भैया, सुनने
0: जी
1: वाले को भी प्रणाम,
0: जी
1: आपको भी सभी को।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

0: श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि आपसे विदा लेने का समय हो गया है। आज के इस फरमाइशी कार्यक्रम में आपके पसंदीदा गीतों के साथ मैं भवेश यहीं लेता हूं विदा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा और संयोजक असद दाऊद के साथ। अगले अंक में फिर होगी आपके साथ मुलाकात नए गीतों और नई फरमाइशों के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
1: हेलो आकाशवाणी,
0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को

0: वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।